0: ये जीवन जानते हुए कि ये बिल्कुल क्षण भंगुर है, फिर भी हम डरते हैं कि अगर मेरा ये छिन गया, अगर मेरा ये छिन गया, या यू नो मृत्यु हो गई या बीमारी आ गई, ये सब चीज जो है, अगर हम ये समझें कि हम एक प्रकृति का एक अंग हैं, एक रूप भी हैं, जैसे एक पेड़ भी बड़ा होता है, पत्ते आते हैं उसमें नए नए, ऐसे ही हमारी भी अपने शरीर भी जो है वो उन्हीं पंचभूतों का बना हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये सब चीजें हम में भी हैं और प्रकृति में भी यही है। तो हम प्रकृति का ही एक अंग हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचें कि नहीं नहीं मैं अलग सा दिखता हूं तो मैं ये बिल्कुल अलग सा हूं। अब पॉजिटिविटी की बात ये है कि जैसे एक वृक्ष में जितनी हम उसका ध्यान रखेंगे, अच्छी खाद डालेंगे, उतना ही वो पनपता है। ऐसे ही हम अपने शरीर रूपी वृक्ष में हम जितना अच्छी खाद, मतलब अच्छा ज्ञान, सही कर्म, ये सब करेंगे तो हमारा जीवन भी एक सकारात्मकता को पकड़े रहेगा। और जो जितनी भी विषमताएं हैं जिंदगी की, उसको भी समझेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। कुछ कठिन काम या मेहनत करने से डरेगा नहीं, क्योंकि सच यही है कि कोई भी चीज हमें हासिल बिना एक मेहनत करे नहीं होती है। तो ये सच जानते हुए हम जल्दी से विफल नहीं महसूस करेंगे और ना ही हम आलस करेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। हिम्मत भी बनी रहेगी कि अभी नहीं हुआ तो थोड़ी और देर में हो जाएगा, इसमें और काम करना होगा, क्योंकि आप सच्चाई के पथ पे चल रहे हैं, अपने को भी देख रहे हैं कि क्या मैंने ये काम करने के लिए मैंने पूरी स्किल्स मैंने जुटा ली हैं, किया मैं ऐसे ही प्रटेंड कर रहा हूं कि मैं ये काम कर सकता हूं। तो सच को धारण किए हुए आपका जीवन जो है वो हमेशा सकारात्मक ही रहेगा, दुनिया की तरफ भी, लोगों की तरफ भी और अपनी तरफ भी।
1: जी बहुत सुंदर, बहुत गहरी बात सुनीता मैम ने हमें बताई है कि किस तरीके से अध्यात्म हमको सकारात्मक रहने में कैसे कैसे मदद करता है। आराम से टेक योर टाइम दोस्तों, विचार कीजिए और तब तक इस भजन को सुनिए।

0: बहुत खूब, बहुत खूब। आध्यात्म को अगर हम अपनाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप इतने समय से जो भी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस कर रही थी मैम, उससे जो भी अनुभव आपको हुए, उसके हिसाब से हमें बताइए कि आध्यात्म का हमारे संबंधों पर क्या फर्क पड़ता है, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारे पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध, उन पर क्या फर्क पड़ता है।
1: जी फिर से इस चीज को दोबारा कहूंगी कि जब हम सच के साथ हैं तो, और हम अंतर्मुखी होते हैं
0: जी,
1: आध्यात्मिकता में हम अक्सर अंतर्मुखी रहते हैं और हम हमेशा अपना ही अवलोकन करते रहते हैं, तो जाहिर है कि हम ये भी सोचते होंगे या प्रश्न करते होंगे कि मेरे जो माता पिता हैं उनके प्रति मेरा क्या और कैसा संबंध है, क्या ये वाकई, अब ये तो एक संयोग की बात है कि मैं उनके अब घर में ही पैदा हुई हूँ
0: जी,
1: लेकिन उनके साथ जो मेरा अब संबंध बढ़ रहा है, क्या वो एक सच के बल पर है या फिर वो एक या समाज से भी कहिए या दोस्तों से कहिए या अपने जहां पे आप काम करते हैं, किसी भी कोई भी संबंध में अपने एक सच्चाई को हमने जरूर देखना है। अक्सर जहां रिश्तेदारी और समाज की बात आती है, बहुत सारे जो रिश्ते हैं वो कोई ना कोई अपने एक किसी मकसद से हो जाते हैं, वो अच्छा नहीं है केवल एक मकसद से कि इससे मैंने दोस्ती रखी तो मुझे फायदा होगा, समाज में मैंने अगर वहां जाके कुछ ये दान करा या ऐसे करा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, वो सच में सच्चाई पे नहीं बेस्ड है। और इस तरीके से हम एक तरीके से हम अपने संसाधनों का, हमारे जो संसाधन क्या है, हमारे पास जो प्रेशियस चीजें हैं वो क्या है, हमारे पास दया है, प्यार है, समय है, ये इनको मैं संसाधन बोलती हूँ, क्या हम अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं या उसका अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, तो ये इससे हमें हमेशा ये ध्यान में रहेगा कि मैं किस लिए किसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्या ये दिखावा है, व्यापार है, कहीं लेना देना तो नहीं है या करुणा है, तो सच होगा तो दूर तक जाएगा और अमर भी होगा।
0: जी जी जी, बड़ी खूबसूरत बात, किस तरीके से संबंधों में भी हम सुधार कर सकते हैं, उनमें बदलाव ला सकते हैं अगर हम आध्यात्म को अपना लें। बहुत खूब, तो चलिए एक छोटा सा गैप लेते हुए, एक भजन को सुनते हुए वो विचार करते हैं और वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सुनीता मैम, आध्यात्म और आज का जमाना, और आपने अपने प्रोफेशनल जर्नी के बारे में भी हमें बताया कि आप भाषा की विशेषज्ञ रहीं, इंग्लिश की आप अध्यापिका रहीं, टीचर रहीं, फैकल्टी रहीं। तो हम लोग एक तरीके से अगर साइंस को अप्रोच करते हुए आज की जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं, जो कि हम इस वार्तालाप में भी साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या साइंस और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म और विज्ञान, इनके बारे में थोड़ा हमें बताइए, इनमें सिमिलैरिटी है, अलगाव है, अलगाव है, या एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे का सहारा भी इनको मिल सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए हमें, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी।
1: जी, इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बिल्कुल साथ साथ ही चलते हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। लेकिन लोक धर्म में ऐसा समझा जाता है कि या तो फिर कोई साइंटिफिक होगा या कोई स्पिरिचुअल होगा, क्योंकि उनके माइंड में, उनके मन में, उनके विचारों में आध्यात्मिकता का अर्थ ही बहुत विकृत है
0: जी।
1: वो गलत है, वो स्वयं की तरफ, वो बाहर की तरफ है और अंतर्मुखी तो है ही नहीं। अब जो साइंस है वो दोनों, मैं बोल रही हूँ कि साथ साथ क्यों चलते हैं। साइंस क्या करती है? साइंस बोलती है कि जो ये चीज, जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसमें वो एकाग्र होकर, उसके पीछे लगकर उसका अनुसंधान करती है कि नहीं, उसे देखने की कोशिश करती है, उसका कारण ढूंढने की कोशिश करती है। जी, आध्यात्मिकता भी यही काम करती है
0: जी।
1: वहां पे हम, हमारे जो जिसको इक्विपमेंट बोलते हैं या इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं हमारे, वो अलग हो जाते हैं, जैसे टेलीस्कोप का, टेलीस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लासेस या माइक्रोस्कोप, इन सब चीज का यूज इस्तेमाल कर लिया। आध्यात्मिकता में हम भी खुद को पहचानने के लिए अंतर्मुखी होकर खुद को ही देखते रहते हैं कि अब ये मेरे में जो इस समय विचार उठ रहा है, या मेरे को ये सब चीज देखकर, कोई भी पर्टिकुलर, कुछ भी हम उदाहरण ले सकते हैं, किसी को देखकर कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये मुझे क्यों आ रहा है, मुझे मेरे गुस्से का कारण क्या है। इतना ही सोचते सोचते आप ये सोचिए कि जैसे आपने एक शांत, हमारा मन जो है, हमारी जो असली प्रकृति है वो बहुत शांत है
0: जी।
1: और हम

0: में भावनाओं को लेकर, भावनाएं आप यूं समझिए एक लहरों के समान है कि, तो समुद्र में जो भावनाएं जो लहरें हैं क्या वो सच्ची हैं ना? वो क्षणभंगुर है, उठती है और फिर ढल जाती है, उठती है और फिर ढल जाती है। गुस्से को जब हम देखने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि ये भी एक लहर की तरह उठा, जैसे समुद्र में कंकड़ डाला तो वो उसके चारों तरफ जो है वो रिपल्स बन जाएंगे और फिर उसको वहीं के वहीं हम थोड़ी देर और देखते रहें तो वो फिर वहीं समतल हो जाएंगे जैसे लहरें। तो भावनाओं को हमको कितना महत्व देना है ये हमें समझना पड़ेगा। ये भी क्षणभंगुर है, कभी तो हमें बहुत क्रोध आ रहा है, कभी हमें बहुत प्यार आ रहा है, लेकिन ये सब जो है ये जो हमारा अहंकार है वो महसूस कर रहा है, शरीर नहीं।
1: जी जी,
0: शरीर नहीं। और क्या मैं सच में शरीर हूं? वो भी नहीं है। हमारी आंखें जो बाहर देखती हैं वो तो एक बाहर का देखना हो गया, क्या सच में ये मेरी दृष्टि भी है? मेरी दृष्टि में, बाहर को देखने में मेरी दृष्टि में क्या इसका महत्व है और वो क्या है? वो बहुत कुछ अलग है। तो साइंस और आध्यात्मिकता दोनों एक ही काम करते हैं, स्वयं को जानने का, और साइंस जो है वो उसका कारण दूसरे प्रकरणों से करती है, बस इतना ही फर्क है।
1: जी जी, बेहद ही खूबसूरत तरीके से फर्क और सिमिलैरिटी और आपस में एक दूसरे के प्रति स्वस्थ रिलेशनशिप के बारे में अभी सुनीता जी ने हमें समझाया, आध्यात्म और विज्ञान के बीच का मामला, बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों, एक प्यारे से भजन का आनंद लेते हुए इस संबंध के बारे में सोचिए।

0: बहुत सुंदर। तो जाहिर सी बात है, क्या ये आध्यात्म, क्या ये स्पिरिचुअलिटी, ये हमें बचपन से पता चलती है, कुछ हमारे माहौल के बारे, माहौल हमें सिखा देता है, हमारे परिवार से हमें पता चलती है, या ये उम्र के साथ ही आना शुरू होती है? हम अपने बारे में विचार करना शुरू करते हैं, कौन है हम, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, ऐसा कुछ होता है मैम, या हमें बचपन से ही इसके बारे में सिखाया पढ़ाया जाता है, हमको एहसास कराया जाता है, इस विषय में क्या कहेंगी आप?
1: जी, हमें अगर हम सभी अपना अपना जीवन देखें तो हमें एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट ही मिल जाता है। हमने ये बैठकर कभी सोचा ही नहीं कि मैं खुद कौन हूं, मेरी अपनी प्रकृति क्या है और मुझे क्या करना है। हमें माँ बाप जब पाल रहे होते हैं, बड़ा कर रहे होते हैं, वो साथ साथ सिखा रहे होते हैं कि ऐसा करो, इधर पांव छुओ, इधर सच बोलो, अभी पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई करके आपको ये कमाना है, फिर पैसा कमाना है, फिर उसमें लगा देते हैं। तो ये तो सारा एक स्क्रिप्ट मिला हुआ नहीं है हमें। क्या ये हमने खुद से कभी सोचा है कि क्या इन सब चीजों की हमें जरूरत है? वो हमें एक बाहरी जो दुनिया है वो हमें एक रेस में लगा देती है
0: जी।
1: आप उनसे पूछिए जो रोज कितनी दूर काम करने भी जाते हैं और फिर कैसे बॉसेस के अधीन होने पे वो क्या क्या झेलते हैं और कितनी कुटिलताएं उनका उनको सामना करना पड़ता है। तो ये सब जो है ये एक तरह का स्क्रिप्ट हमें मिला होता है। जब हम अपने साथ बैठते हैं तब हमें समझ आता है कि नहीं, ये सब चीज जो है ये मेरा जीने का मकसद नहीं होता। ये सब तो पशु भी करते हैं ना, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, उनके लिए भी खाना जुटा के लाते हैं
0: जी जी,
1: पर हमारे सिर्फ संसाधनों में है कि कैसे हम अलग अलग करते हैं, लेकिन इंसान होते हुए हमें अपनी बेचैनी समझनी है कि हमारे अंदर किस चीज की बेचैनी है। आपने ये सुना होगा कि कितने बड़े बड़े जो इतने अमीर लोग भी हैं, क्या वो केवल पैसे से कभी खुश रहे हैं?
0: जी जी सुना है।
1: फिर भी उनको कहीं ना कहीं कुछ कमी नजर आती है और वो कमी, क्योंकि हम इतनी भाग दौड़ कर रहे होते हैं एक सिर्फ पैसे के पीछे या दुनिया के पीछे, मेरे साथ वाले के पास दो कार हैं तो मेरे पास क्यों नहीं हो, या मेरे पास ये है, सभी बस इस गलत भाग दौड़ में लगे हैं स्वयं से नहीं कि मुझे मेरे मन को, मेरी आत्मा को क्या चाहिए। आत्मा माने मेरे सच क्या है, मुझे क्या चाहिए, मैं किससे संतुष्ट हूँ, उसके बारे में हम नहीं सोच पाते। अगर सोचें वही अध्यात्मिकता है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ी प्यारी बात बताई आपने सर। मैम आपकी सारी बातें सुनकर, इस प्रोग्राम के विचार विमर्श को सुनकर, अगर कोई व्यक्ति तय करे कि चलिए मैं अध्यात्म अपनाता हूं, क्योंकि बहुत तरीके से मैं अपने आप को सुधार सकता हूं, मजा आएगा, तो आप उसके क्या सलाह देना चाहेंगे कि एक दो तीन कुछ ऐसे स्टेप्स लीजिए और सरल भाषा में आपको अध्यात्म प्राप्त होगा?
1: जी, इसमें एक तो सच को पकड़ना है, ठीक है, और जो हम जिस तरीके से हम जिसको आजकल के जमाने में बोलते हैं ना, हमारे गोल्स बनाए हुए हैं, तो वो खुद जानना है कि ये मेरे को थोपे गए हैं या सौंपे गए हैं।
0: ओके,
1: और अच्छा। क्या आश्विकता के साथ जीना है या नहीं जीना, और आध्यात्मिकता मतलब सच्चाई के साथ जीना। अब सही धर्म हमारा जो है वो परोपकार है।
0: जी जी,
1: परोपकार कैसे? अब आप, मैं उसमें ये नहीं कहूंगी कि आप पैसा नहीं कमाइए, पैसा जरूर कमाइए, क्योंकि पैसा कमाएंगे तो तभी आप और 10 लोगों को भी हेल्प कर सकेंगे, लेकिन ये जरूर देखिए कि मैं किस काम से बना रहा हूं।
0: जी,
1: क्या मैं वो का चार बनाने के लिए मुझे गलत चीजें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं, क्या मैं बॉम्ब्स बना रहा हूँ, क्या मैं एम्यूनिशन बना रहा हूँ, क्या मैं कैसी कैसी चीजें मैं धन प्राप्त करने के लिए मैं क्या कैसा काम कर रहा हूँ वो देखिए।
0: जी, जी जी
1: उसका देखना बहुत जरूरी है। और आप देखिए रतन टाटा, सुधा मूर्ति जैसे, जो उन्होंने खूब पैसा भी कमाया लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े हैं, परोपकारी हैं। आपको मालूम है सुधा जी तो वो बोलती हैं कि एक दिन मैं सब्जी वाली बन के बैठ जाती हूँ।
0: ओह माय गॉड जी,
1: यस ये सच है कि सिर्फ ये महसूस करने के लिए। अब जिसमें इतनी इंसानियत हो
0: जी,
1: वो कहाँ से आई है? आध्यात्मिकता से।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अमीर लोग हैं आजकल जो प्रचलन है, कहाँ कहाँ जाके अपने जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पोते को समझाया और बोला कि नहीं, मैं तुम बोल रहे हो कि मुझे मैकडोनल्ड्स ले जाओ या मेरे सारे फ्रेंड्स को वहां बुला के खिलाओ पिलाओ, तो वो नहीं, मैं वो नहीं। वो उसको अनाथालय लेके गई और बोला कि ये बच्चे भी हैं, इनको देखकर इनके साथ अपना जन्मदिन मनाकर हमें ज्यादा खुशी मिलेगी। तो कैसे आप साथ साथ बचपन से ही सिखाते हैं? आपने पूछा ना कि क्या हमें ये सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना, लेकिन सिखाने वाला भी सिर्फ केवल एक चोगा पहने हुए नहीं हो, केवल एक छैने बजाकर कीर्तन करने वाला ना हो और फिर वो अपने घर के सेवक को ही बुरी तरह बोले।
0: जी जी,
1: वो तो फिर परोपकार नहीं हुआ,
0: वो तो सब नाटक ही हो गया फिर। दैट इज राइट, दैट इज वेरी राइट।
1: तो जी ने देखे, वो एक रेडी वाले उनके घर के सामने से जा रहे थे या सामने खड़े भी होते थे, उन्होंने देखा कि ये बेचारा सब्जी बेच रहा है, अभी मैं इसके लिए क्या करूं? तो करुणा है ना मन में
0: जी,
1: अपने पैसे में अपने ऐश्वर्य में गुम नहीं है, वो सोच रहे हैं, उसको देखकर उनको विचार आ रहा है, केवल विचार आने तक ही रुक नहीं जाते हैं, वो अपनी हैसियत से अपने समझ से जो कर सकते हैं वो करते हैं। क्या करते हैं? सिंपल सी चीज, वो बोलते हैं इन सब के लिए जाके ना इनके लिए कुर्सी रख के आओ वहां पे,
0: जी जी जी जी जी,
1: या उनके छतरी पहुंचा दी कि ये इतने घंटे जो इनको खड़े होना पड़ता है तो वो बैठ जाए। तो ये जो सेंसिटिविटी है ये आध्यात्मिकता से आती है, अपने सामर्थ्य से आप जब भी किसी का कुछ कर पाए जरूर करें।
0: जी जी,
1: और हमें बहुत मौके मिलते हैं, हम मौकों को ना गवाएं और अपनी जिंदगी को भी बेकार ना जाने दें। पीछे मुड़ के देखें तो ऐसा ना सोचें मैंने क्या किया,
0: Absolutely.
1: क्या मैं कुछ किया कि नहीं किया, किसी के लिए कुछ दे पाई कि नहीं दे पाई।
0: बहुत खूब, बड़ी प्यारी बात। जाहिर सी बात है दोस्तों, आपने आज सुनीता जी के विचार सुने, बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको कहीं ना कहीं गहराई तक छू के गई होंगी। विचार करते रहिए और हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े रहिए, बहुत कुछ अपने बारे में जानने को मिल ही रहा है। सुनीता जी आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपसे बातें की, आपने अपने दिल की बातें हमें बताई। अब हम ये सारी जिम्मेदारी अब हमारी हो जाती है कि इस ज्ञान को हम अपने बेहतरी के लिए किस तरह से इस्तेमाल करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है आपका।
1: आभार आपका समीर जी, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने विचार व्यक्त करने का और ये साझा करने का कि हमें जिंदगी में, मैं कोई बहुत, कोई भी, जैसे मैंने बोला मेरा नाम ही साधारण सुनीता है, साधारण सी जिंदगी जीनी है लेकिन सच्ची
0: जी
1: जीनी है
0: जी।
1: बस धन्यवाद आपका बहुत।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। ChatGPT पे क्या सर्च करें और क्या नहीं। आज की कहानी थोड़ी हटके है, थोड़ी करंट है, और ऑनेस्टली बहुत जरूरी है। कल शाम शायद आप में से कई लोगों ने देखा होगा एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन, जहां बात हो रही थी AI की, ChatGPT की, और हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं। और तब मुझे लगा कि ये बात सिर्फ डिस्कशन तक नहीं रहनी चाहिए, इसे हम सबको समझना चाहिए। ChatGPT पर क्या सर्च करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आज के टाइम में ChatGPT सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक दोस्त जैसा है, एक गाइड जैसा है, और एक टीचर जैसा है। लेकिन हर दोस्त की तरह इसे यूज करने का भी एक तरीका होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या करें, यानी डूज। पहला, क्लियर सवाल पूछें। दोस्तों, अगर आप वेग सवाल पूछेंगे, जैसे करियर में क्या करूं, तो जवाब भी वेग मिलेगा। लेकिन अगर आप पूछते हैं मैं लॉ बैकग्राउंड से हूं, मीडिया में आना चाहता हूं, क्या ऑप्शंस हैं, तो जवाब भी प्रिसाइज मिलेगा। सीख क्या है? जितना क्लियर सवाल उतना क्लियर जवाब। नंबर टू, सीखने के लिए यूज कीजिए। ChatGPT एक शॉर्टकट मशीन नहीं है, ये एक लर्निंग पार्टनर है। अगर आप सिर्फ ये कहेंगे आंसर लिख दो, तो आप लिख तो देंगे लेकिन समझ कभी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप पूछते हैं ये कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, तो आप सच में सीखेंगे। और दोस्तों, नॉलेज ही असली पावर है। नंबर थ्री, क्रिएटिव काम में यूज कीजिए। स्क्रिप्ट्स में, कैप्शंस में, आइडियाज में, ChatGPT सब में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। लेकिन एक बात याद रखिए, उसे कॉपी पेस्ट मत कीजिए, उसे अपना बनाइए, अपनी आवाज दीजिए, अपना टच दीजिए, तभी वो चीज असली लगती है और आपकी लगती है। नंबर फोर, फैक्ट चेक जरूर करें। दोस्तों, ChatGPT स्मार्ट है लेकिन परफेक्ट नहीं, कभी कभी गलतियां हो सकती हैं। इसलिए अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो डबल चेक जरूर करें, स्पेशली न्यूज, लीगल, मेडिकल, फाइनेंशियल चीजों के लिए। नंबर फाइव, रिस्पेक्ट के साथ यूज करें। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जिस तरह हम इंसान से बात करते हैं वैसे ही AI से भी करनी चाहिए। क्लियर, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल, क्योंकि जब आप सही तरीके से बात करेंगे तो जवाब भी बेटर मिलेगा। अब बात करते हैं क्या ना करें, यानी कि डोंट्स। नंबर वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्सनल डेटा शेयर ना करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी अपना पासवर्ड, अपना OTP, अपनी बैंक डिटेल्स या कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ChatGPT पर शेयर ना करें। टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन हमें समझदार बनना पड़ेगा। नंबर टू, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करें। अगर ChatGPT ने कुछ बोल दिया तो वो फाइनल ट्रूथ नहीं है, उसे गाइड की तरह मत देखिए, अपना जजमेंट यूज करिए। नंबर थ्री, शॉर्टकट के लिए यूज मत करें। असाइनमेंट्स, एग्जाम, काम, अगर आप सिर्फ शॉर्टकट के लिए यूज करेंगे तो शायद काम हो जाएगा,
लेकिन आप ग्रो कभी नहीं करेंगे। और दोस्तों, ग्रोथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, इमोशनल डिपेंडेंसी मत बनाइए। ये बहुत सटल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी लोग अपनी हर प्रॉब्लम, हर डिस्कशन एआई से पूछने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, जिंदगी के पर्सनल डिसीजंस सिर्फ आपको लेने होते हैं। एआई गाइड कुछ नहीं कर सकता। नंबर 5, कंपैरिजन मत करें। एआई बेटर है, ह्यूमन स्लो हैं। ये सोच गलत है। एआई एक टूल है, इंसान क्रिएटर है। टूल कभी क्रिएटर से बड़ा नहीं होता। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक लड़का था रोहन, उसने चैट जीपीटी यूज करना शुरू किया हर चीज के लिए, असाइनमेंट्स, ईमेल्स, इवन मैसेजेस टू फ्रेंड्स। धीरे धीरे उसने खुद सोचना एकदम बंद कर दिया। एक दिन उसकी टीचर ने पूछा, ये आंसर तुमने लिखा है? रोहन ने कहा, हाँ। टीचर मुस्कुराए और बोले, लिखा तुमने है या किसी और ने? उस दिन रोहन को समझ आया, यूज करना गलत नहीं है लेकिन खुद को खोना एकदम गलत है। आज की बात का सार यही है दोस्तों, चैट जीपीटी एक पावरफुल साथी है लेकिन यूज आप कंट्रोल करें, वो आपको कंट्रोल न करे। सीखने के लिए यूज कीजिए, समझने के लिए यूज कीजिए, क्रिएट करने के लिए भी यूज करिए, लेकिन सोचना कभी मत छोड़िए, क्योंकि आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब यूनिक है और इसी से आप अलग बनते हैं। इसी के साथ आज की ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी और सोचने पर आपको जरूर मजबूर करेगी। ये यहीं समाप्त नहीं होती, इसको कैरी फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। अगली कहानी तक के लिए स्मार्ट बनिए, सेफ रहिए और टेक्नोलॉजी को सिर्फ अपना दोस्त बनाइए, गुलाम नहीं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: मिडिल क्लास प्यार इतना सीधा होता है कि लड़का रोज बस स्टॉप पर खड़ा रहता है, लड़की आती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और 6 महीने बाद लड़का हिम्मत करके बोलता है, एक्सक्यूज मी, ये 522 यहीं से जाती है? प्यार नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट की इंक्वायरी शुरू हो गई।

सेवन डॉग्स, एक कॉर्गी और दोस्ती का सच। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी ना किसी हीरो की है ना किसी विलन की, आज की कहानी सात डॉग्स की है। हां जी, और बिलीव कीजिए ये कहानी आपको हंसाएगी भी, हैरान भी करेगी और एंड में थोड़ा सा चुप भी कर देगी। तो चलिए सीन सेट करते हैं। रात का टाइम है, चाइना का एक शहर चैंगचून। ठंडी हवा चल रही है, सड़क पर हल्का सा फॉग है और एक लंबा सुनसान हाईवे जहां एक आदमी लू नाम का अपनी कार चला रहा है। नॉर्मल ड्राइव, हल्का सा म्यूजिक, थोड़ा सा बोर्डम और फिर एकदम से उसकी हेडलाइट्स के सामने कुछ हिलता हुआ दिखता है। लू आंखें से कोरता है, ये क्या है? पहले लगता है प्लास्टिक के बैग्स होंगे, फिर लगता है शायद कोई जानवर और फिर जब वो थोड़ा सा और पास आता है तो उसका दिमाग लिटरली फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक नहीं, दो नहीं, पूरे सात डॉग्स चल रहे थे। और सिर्फ चल नहीं रहे थे, डिसिप्लिन के साथ चल रहे थे, जैसे कोई परेड हो, जैसे कोई मिशन हो। और सबसे आगे कौन? रेडी, एक छोटा सा कॉर्गी। हाँ, वो क्यूट सा शॉर्ट लेग्स वाला थोड़ा गोल मटोल सा इंस्टाग्राम का सुपरस्टार टाइप डॉग कॉर्गी। लू के मुंह से बस एक ही बात निकली, ये तो उल्टा हो गया, लीडर तो जर्मन शेफर्ड होना चाहिए था। लेकिन नहीं, यहां तो पूरा सिस्टम ही अलग था। कॉर्गी आगे कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कह रहा हो, लाइन में रहो सब, मैं देख रहा हूं। उसके पीछे एक हस्की, एक लैब्राडोर और एक बड़ा सा जर्मन शेफर्ड। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट आता है, वो जर्मन शेफर्ड इंजर्ड था, उसका एक पैर ठीक नहीं था और वो हल्की सी लंगड़ाहट के साथ चल रहा था। और अब जो आगे होता है वो देखकर लू सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, वो अंदर से हिल जाता है। बाकी के सारे डॉग्स उस इंजर्ड डॉग के आसपास चलने लगते हैं, जैसे सिक्योरिटी कवर हो, जैसे बॉडी गार्ड्स हो। कोई आगे जाता फिर पीछे मुड़कर देखता, तू आ रहा है ना? कॉर्गी बीच बीच में रुकता और लिटरली लगता कि वो कह रहा है कि भाई स्पीड कम करो, सब साथ साथ चलेंगे। दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, अंधेरी रात, ठंडी हवा और सुनसान हाईवे और बीच में सात डॉग्स का एक ग्रुप, एक इंजर्ड दोस्त और बाकी सब उसे छोड़ने की बजाय उसके साथ साथ चल रहे हैं। ऑनेस्टली अगर ये मूवी होती तो बैकग्राउंड में स्लो मोशन होता और म्यूजिक होता तेरा यार हूं मैं। लू ने तुरंत वीडियो रिकॉर्ड किया। अगली सुबह इंटरनेट पर धमाका, लोगों ने नाम रख दिया द सेवन डॉग्स गैंग। मीम्स बनने लगे, किसी ने लिखा ये फास्ट एंड फ्यूरियस का एनिमल वर्जन है, किसी ने बोला कॉर्गी इज द बॉस, रिस्पेक्ट, और एक बंदा तो

0: सीरियस होकर लिख रहा था, ये डॉग्स सीक्रेट मिशन पर हैं। दोस्तों, इंटरनेट कभी सिंपल चीज को सिंपल रहने कहां देता है। कुछ लोगों ने फैन फिक्शन लिख दिया। एक स्टोरी में कॉर्गी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था, इमेजिन। दूसरी में ये सब डॉग्स एक माफिया गैंग से भाग रहे थे, और एक वर्जन में तो जर्मन शेफर्ड उनका इंजर्ड सोल्जर था और बाकी सब उसे सेफ जगह लेके जा रहे थे। फिल्मी है ना? बिल्कुल। लेकिन एक बात तो सच है, ये डॉग्स एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे। दोस्तों, अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। सोचिए, अगर ये इंसान होते तो क्या होता। ग्रुप आउटिंग है, एक बंदा स्लो हो गया, कोई कहता भाई तू ऊबर ले ले, कोई कहता हम आगे मिलते हैं, और कोई सीधा बोल देता तू प्रॉब्लम है यार। सच बोलो, हम फास्ट दुनिया में जीते हैं जहां पेशेंस कम है और साथ चलना एक लग्जरी बन गया है लिटरली। लेकिन उस रात चैंगचुंग के हाईवे पर सेवन डॉग्स ने हमें दोस्ती का असली मतलब सिखाया। उन्होंने दिखाया, दोस्ती का मतलब स्पीड मैच करना नहीं, दोस्ती का मतलब है पेस एडजस्ट करना। अगर दोस्त स्लो हो तो आप रुकते हो, अगर दोस्त गिर गया तो आप हाथ बढ़ाते हो, और अगर दोस्त टूट रहा है तो आप उसके आसपास खड़े हो जाते हो जैसे वो डॉग्स खड़े थे। और लीडर कॉर्गी, सबसे छोटा, सबसे अनएक्सपेक्टेड, सबसे अंडरडॉग, लेकिन सबसे रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों, ये भी एक लेसन ही है, लीडर साइज से नहीं बनता, लीडर एटीट्यूड से बनता है। और वो इंजर्ड जर्मन शेफर्ड, कभी कभी स्ट्रॉन्ग लोग भी गिरते हैं, एंड इन दिस केस सबसे स्ट्रॉन्ग लोग भी। और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, शर्म की बात है जब कोई उन्हें छोड़ देता है, पीछे रहने देता है और आगे बढ़ जाता है। अब कहानी का एक और थोड़ा डार्क साइड। कुछ लोग कहते हैं ये डॉग सेफ नहीं थे, कुछ वर्जन्स कहते हैं वो खो गए थे, और कुछ कहते हैं उनका एंड अच्छा नहीं था। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन दोस्तों, कभी कभी एंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सफर, और उनका सफर एक मैसेज दे गया। तो आज अपने आप से एक सिंपल सा सवाल जरूर पूछेगा, आप कौन हैं? वो कॉर्गी जो सबको साथ लेकर चलता है, वो जर्मन शेफर्ड जो स्ट्रगल करता है, या वो जो किसी को बीच रास्ते में छोड़ देता है। जिंदगी लंबी रोड ट्रिप है दोस्तों, कभी स्मूथ हाईवे है, कभी ब्रोकन रोड, लेकिन अगर साथ सही हो तो सफर हमेशा खूबसूरत लगता है। और अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके स्लो होने पर रुक जाते हैं, आपका वेट करते हैं, तो ट्रस्ट में उन्हें कभी मत छोड़िए, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे लोग नहीं मिलते, और मिलते हैं तो संभलते नहीं। इसी के साथ आज की ये थोड़ी फनी, थोड़ी फिल्मी और दिल को फिर भी छू लेने वाली कहानी यहीं समाप्त करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। अगली स्टोरी तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और याद रखिए, असली दोस्ती वो नहीं जो आगे बढ़ जाए, असली दोस्ती वो है जो रुक कर कहती है चल साथ चलते हैं। नमस्कार।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: घर में एसी 24 डिग्री पर चला दो तो पापा तुरंत आकर 26 पर कर देते हैं। बोलते हैं, बेटा ठंड लग जाएगी, पर असली रीजन बिजली का बिल उनके दिमाग में लाइफ टिकर की तरह चल रहा होता है। और जब लाइट चली जाती है, देखा मैंने बोला था ना ज्यादा मत चलाओ, देखा बिजली चली गई। ऐसा लगता है जैसे बिजली डिपार्टमेंट को उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी हो।
2: What?

ये भी, और थोड़ा स्मार्ट भी फील करोगे, क्योंकि आज का वर्ड है हर्मेनिटिक। सच सच बताओ, पहली बार सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ये कौन सी बीमारी है? ये किसी साइंटिस्ट का नाम है या ये किसी एलियन का पासवर्ड है? मैंने तो जब इसे पहली बार ऑनेस्टली सुना तो मुझे लगा ये यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जाने वाला कोई सवाल है। और अगर किसी ने कैजुअली बोल दिया ये एक हर्मेनिटिक इशू है तो आदमी तुरंत सीरियस हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी वही सोच रहा था। अंदर से कुछ समझ नहीं आया ना? चलिए आज इस वर्ड का पोस्टमार्टम करते हैं। हर्मेनिटिक होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में हर्मेनिटिक का मतलब है सिर्फ सुनना या पढ़ना नहीं, बल्कि समझना। और सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर तक जाके समझना। मतलब वर्ड्स के पीछे क्या है, उनका टोन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, और इंटेंशन यानी इरादा क्या है। क्योंकि दोस्तों जो कहा जाता है वो हमेशा वही नहीं होता जो मतलब होता है, और यहीं से शुरू होता है हर्मेनिटिक थिंकिंग। चलिए रियल एग्जाम्पल से समझते हैं जहां हम सब एक्सपर्ट्स हैं, थोड़ा सा मजा लेते हैं। एग्जाम्पल वन, माँ बोलती है बेटा मैं ठीक हूं। लिटरल मीनिंग माँ ठीक है, बट रियल मीनिंग यानी कि हर्मेनिटिक वर्जन, तूने 4 दिन से फोन नहीं किया, मैं याद कर रही थी। समझे? चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, शायद थोड़ी और क्लैरिटी आए। बॉस बोलता है गुड वर्क। आप सोच रहे हैं प्रमोशन आ गया, लेकिन हर्मेनिटिक वर्जन कहता है कॉन्टेक्स्ट चेक करो भाई, शायद मतलब हो ठीक है लेकिन और बेटर करो। समझे या अभी भी नहीं? चलो तीसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। गर्लफ्रेंड बोलती है मैं कुछ नहीं हूं तुम्हारी लाइफ में। लिटरल मीनिंग सेल्फ डाउट, रियल मीनिंग यानी हर्मेनिटिक वर्जन, तुम्हारी लाइफ में मैं ही सब कुछ हूं, समझे? और अगर आपने गलत समझ लिया तो बस हर्मेनिटिक फेल एंड रिलेशनशिप फेल। हम गलती कहां करते हैं दोस्तों? प्रॉब्लम सिंपल है, हम सुनते ज्यादा हैं, समझते कम हैं। हम वर्ड्स पकड़ लेते हैं लेकिन इमोशंस, पीछे के इमोशंस, उन्हें मिस कर देते हैं। कोई गुस्सा करता है हम बोल देते हैं एटीट्यूड है, लेकिन हो सकता है कि वो हर्ट हो। कोई चुप रहता है तो हम बोल देते हैं एरोगेंट है, लेकिन हो सकता है कि वो स्ट्रगल कर रहा हो। दोस्तों अगर हम सब थोड़ा सा हर्मेनिटिक यूज कर लें तो आधी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएंगी। अब थोड़ा सा फैमिली एंगल से देखते हैं। सोचिए अगर बॉलीवुड में हर्मेनिटिक होता, हीरो बोलता मैं तुमसे नफरत करता हूं, हीरोइन तुरंत समझ जाती इसका मतलब है वो मुझसे प्यार करता है, और 3 घंटे की मूवी 10 मिनट में खत्म हो जाती। नो सॉन्ग्स, नो ड्रामा, नो क्लाइमेक्स। कितनी बोरिंग हो जाती ना लाइफ, सोच के देखिए। हर्मेनिटिक सिर्फ फनी एग्जांपल्स तक लिमिटेड नहीं है, ये एक पावरफुल तरीका है सोचने का, समझने का और जीने का। जब आप किसी बात को समझने की कोशिश करते हो तो आप जज नहीं करते, आप कनेक्ट करते हो, और ये डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। जज करना इजी है, समझना एफर्ट लेता है, और आजकल लोग एफर्ट ही नहीं लेना चाहते, इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं, रिलेशनशिप्स वीक हो रही हैं, और लोग कहते हैं लोग बदल गए। नहीं दोस्तों, मॉडर्न दुनिया और हर्मेनिटिक्स की क्राइसिस। आजकल व्हाट्सएप मैसेज आता है ओके, हम सोचते हैं बस एक ओके, और सामने वाला सोचता रहता है गुस्सा है, एटीट्यूड है, मैंने क्या गलती की और क्या नहीं। दोस्तों ओके का भी हर्मेनिटिक होता है, कभी मतलब होता है ठीक है, कभी मतलब होता है बात मत करो, और कभी मतलब होता है मैं बिजी हूं, और कभी होता है मैं गुस्सा हूं लेकिन डायरेक्टली नहीं बोलूंगा। AI और हर्मेनिटिक, थोड़ा स्मार्ट बन जाओ। आजकल हम सब AI भी यूज कर रहे हैं, ChatGPT, गूगल और क्या क्या नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यही है हम जो पढ़ते हैं उसे फाइनल ट्रूथ मान लेते हैं, लेकिन हर्मेनिटिक कहता है कॉन्टेक्स्ट को समझो।

सोर्स को समझो और इंटेंट यानी इरादे को समझो, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन का एक ही एंगल नहीं होता और बिना समझे सिर्फ कॉपी कर लेना वो नॉलेज नहीं, शॉर्टकट है। शॉर्टकट कभी लॉन्ग टर्म में काम नहीं आता, याद रखिए। एक छोटी सी कहानी और सुनते हैं। एक लड़का था अमन, उसकी एक हैबिट थी हर बात को लिटरल लेना। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा घर जल्दी आना। अमन 5 मिनट में घर आ गया। माँ हैरान, अरे इतनी जल्दी कहाँ से आ गया? अमन बोला, आपने ही तो बोला था जल्दी आना। माँ बोली, अरे मेरा मतलब ये था कि लेट मत होना, दोस्तों डिफरेंस समझे। वर्ड सेम, मीनिंग अलग, यही है हर्मेनिटिक। और आज की सबसे बड़ी बात, जिंदगी सिंपल हो सकती है मेरे दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। सिर्फ रिएक्ट ना करें, रिफ्लेक्ट करें। सिर्फ सुने नहीं, उसे फील करें, सोचें और समझें। लोग क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्यों कह रहे हैं। तो अंत में, नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले तू मुझे समझता ही नहीं है, आप सीधा बोलना, मैं तो हर्मेनिटिक लेवल पे समझ रहा हूं। वो कंफ्यूज हो जाएगा और आप इंटेलिजेंट लगोगे। विन विन सिचुएशन। आज का वर्ड थोड़ा टफ जरूर था दोस्तों, लेकिन उसका मैसेज बहुत सिंपल और बहुत जरूरी। समझना सीखो लोगों को, सिचुएशंस को, और सबसे इंपॉर्टेंट खुद को। क्योंकि जब आप समझने लगते हो तब जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती, क्लियर लगती है। इसी के साथ आज का ये फन, फनी, थोड़ा इंटेलेक्चुअल और थोड़ा दिल से जुड़ा हुआ एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगली स्टोरी तक सिर्फ सुनिए नहीं, समझने की आदत डालिए। क्योंकि याद रखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स वर्ड्स से नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग से होती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: देसी मिडिल क्लास लग्जरी। इंडियन मिडिल क्लास के पास सब कुछ होता है, बस उसे यूज करने की परमिशन नहीं होती। ड्राइंग रूम का सोफा सिर्फ गेस्ट्स के लिए, नया डिनर सेट सिर्फ खास मौके के लिए। और वो खास मौका कब आता है? जब डिनर सेट का डिजाइन आउटडेटेड हो जाता है। हम लोग चीजें फ्यूचर के लिए संभाल के रखते हैं भाई, और फ्यूचर आता है डीक्लटर करने।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। दुनिया में ज्यादातर इंसान मन हारे बैठे रहते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं तो छोटा आदमी हूं, क्या काम कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ज्ञान नहीं है, क्या कर लूंगा। कई बार तो धनी और ज्ञानी लोग भी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता जैसे मुहावरों के पीछे छिप जाते हैं। ये सुंदर युवती भी बस यही सोचती थी। दुनिया जब द्वितीय युद्ध लड़ने जा रही थी तब वो क्या कर सकती थी। उसके देश पोलैंड पर जर्मनी और रूस का कब्जा हो चुका था। वो युवती कभी नर्स का काम करती तो कभी नौकरानी। जुल्म के दिन थे, यहूदियों पर तो कहर टूट रहा था, हिटलर की हैवानियत चरम पर थी। ये युवती ईसाई थी पर अपने देश की आजादी की पक्षधर भी थी, तो उसे भी तरह तरह से सताया जाता था। वो बिचारी अपने परिवार से बिछड़ गई, चुपचाप नजरें झुकाए मुंह छिपाए घर से निकला करती थी कि पता नहीं कब कौन सी नई मुसीबत टूट पड़े। सामान्य कद की, दुबली पतली, मृदुभाषी, नीली आंखें और घने सुनहरे बालों वाली यह युवती तमाम झमेलों से बचने के लिए इधर उधर फिरती थी। वो सोचती रहती थी कि ये सोचकर भी वो क्या कर लेगी, किसे बचा लेगी। अक्सर वो आंखें मूंद लेती जैसे ज्यादातर लोग करते हैं, पर एक दिन तो हद ही हो गई। अप्रैल का महीना था, साल 1942। बाजार में कोहराम मचा था, नाजी दरिंदे लोगों को मार रहे थे। एक छोटे से बच्चे को भी उन्होंने उसकी मां से छीन लिया। छीनते ही एक नाजी अफसर ने उसे हवा में उछाल दिया और जमीन पर गिरने से पहले ही गोली मार दी। हैवानियत के बेरहम मंजर में नाजी पागल जानवरों से भी ज्यादा खूंखार नजर आ रहे थे। उनकी रगों में सिर्फ नफरत का सैलाब था जिसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था। ये नाजी भी कभी बेबस शिशु रहे होंगे, उन्हें किसी ने मां की गोद से नहीं छीना होगा ना, उन्हें किसी ने हवा में नहीं फेंका होगा ना, उनके सीने को कोई गोली न पार कर गई होगी। न शिशु से मोह और न ममता की परवाह, न मानवता का लिहाज। क्या नफरत ही दुनिया का मूल स्वभाव है और बाकी धर्मपंथ उसके पीछे पीछे बस घिसटे जा रहे हैं? क्या ईश्वर भी धर्म देखकर बचाव के लिए आगे आता है कभी? क्या ईश्वर भी विधर्मियों को मौत का तमाशा दिखाता है? उस युवती का ईश्वर से यकीन उठने लगा। शायद कोई ईश्वर होता ही नहीं, खुद अपनी मदद के लिए इंसान को सजग रहना पड़ेगा। तब बहुत आसान था तमाशबीन बनकर रह जाना, पर उस युवती ने यह नहीं सोचा कि वो इन दिनों बेघर बेपरिवार नौकरानी है। उसने कहीं सुना था कि किसी इंसान की जान बचाना संसार को बचाने के बराबर है। काश वो भी किसी की जान बचा पाती। चारों तरफ लोग मर रहे थे, जो सिर्फ तमाशा देखने से तो काम नहीं चलेगा, न नींद आएगी न चैन मिलेगा। उन दिनों उस 19-20 बरस की युवती शहर से कुछ दूर एक बड़े से घर में काम करती थी। उसका मालिक एक नाजी अफसर ही था। एक दिन नौकरानी को पता चला कि पास के कारखाने में बंधुआ मजदूरी कर रहे 12 यहूदियों को किसी भी दिन मार दिया जाएगा, तो वो उन सभी को छपाकर साथ ले आई। सभी यहूदी मुंह पर ताले लगाए रात भर उस बड़े घर के तहखाने में छिपे रहते और तभी ऊपर घर में आते थे जब नाजी अफसर काम पर चला जाता था। दिन के समय सारे यहूदी रसोई से सफाई तक मिलकर घर का पूरा काम करते थे और शाम होने से पहले ही तहखाने में कैद हो जाते थे। महीनों बीत गए पर एक दिन भेद खुल गया। युवती नाजी अफसर के पैरों में गिर गई कि मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं पर किसी की जान मत लो। तब जान बच गई पर कुछ ही दिन बाद सबको लेकर जंगल में छिपना पड़ा। खैर एक दिन युद्ध खत्म हुआ और वो युवती किसी तरह अमेरिका पहुंच गई। वहां
वो संकोची युवती जीवन के नए संघर्ष में खो गई। पर दुनिया में जब यहूदी कुछ संभले, तब उन्होंने अपने मददगारों को याद किया और मददगारों के इतिहास में युवती आइरीन गट ओपडाइक का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। 5 मई को जन्म लेने वाली आइरीन को यहूदियों के देश के सर्वोच्च सम्मान इज़राइल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उनकी करुण दास्तान वाली पुस्तक इन माई हैंड्स मेमोरीज ऑफ अ होलोकॉस्ट रेस्क्यूअर की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 30 वर्ष स्कूली बच्चों को अपनी कहानी सुनाते और देशाटन करते हुए बिताए। वो बार बार कहती थी कि राष्ट्रीयता धर्म रंग और पंथ की परवाह किए बिना सबसे लगाव रखिए, हम एक ही परिवार हैं, प्यार करना सीखिए और मौका मिलते ही एक दूसरे की मदद कीजिए, तभी दुनिया रहने लायक होगी। क्या हम कुछ ऐसा सोचते हैं दोस्तों?

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

चलिए दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं भावेश चौधरी जी से, जो एक किसान हैं और एक बिजनेसमैन भी। दोस्तों, हिंदुस्तान नौजवानों का देश है। इसकी 65% से ज्यादा आबादी की उम्र 35 साल से कम है। ऐसे में रोजगार देश का सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए, और यूं देखें तो है भी। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी यानी कि CSDS ने अपने अभी के सर्वे में इस बात को बताया। इस समस्या से जुड़ी हुई एक हकीकत ये भी है कि देखिए, कोई भी सरकार इतनी विशाल युवा आबादी के लिए सरकारी नौकरियां नहीं रख सकती। हालांकि उनकी आजीविका के उपाय करने का दायित्व उन्हीं का है, फिर भी। लेकिन इस समस्या के हल का एक ठोस रास्ता भावेश चौधरी जैसे युवा दिखा रहे हैं, जो न सिर्फ तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक सफल बिजनेसमैन है, उद्यमी है, बल्कि उन्होंने अपने आसपास के 150 से ज्यादा किसानों की जिंदगी पर भी सकारात्मक असर डाला है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक तहसील है सूरजगढ़। इसी के बरेला आसलवास गांव में आज से करीब 25 साल पहले भावेश पैदा हुए। पिता शेर सिंह चौधरी सीमा सुरक्षा बल में जवान थे और गांव में अपनी खेतीबाड़ी भी थी, इसलिए भावेश का बचपन कभी किसी अभाव में गुजरा नहीं। गांव के तमाम बच्चों की तरह स्थानीय स्कूल में ही पढ़ाई लिखाई हुई, पर स्कूल में कभी उनका दिल लगा नहीं। चार भाई बहनों में दूसरे भावेश यही देखते हुए सयाने हुए कि उनके गांव के लड़के, बल्कि अब तो लड़कियां भी, एक ही लक्ष्य रखते थे, फौज या पुलिस में कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। पिता शेर सिंह कभी कभी बेटे को अपनी पोस्टिंग वाली जगह पर ले जाते थे, जहां उनको तरह तरह के आदेशों का पालन करते देखकर, काफी तनाव में भी ड्यूटी निभाते देखकर भावेश का बालक मन नौकरी से तो हट गया। हालांकि परिवार और खुद पिता की यही इच्छा थी कि वो गांव के दूसरे बच्चों की तरह फौज में जाएं या पुलिस में जाएं, लेकिन भावेश ने कोई लक्ष्य नहीं बनाया। वो बस कक्षाएं पास करते रहे और बढ़ते रहे। 12वीं का इम्तिहान पास करने के बाद पहली बार लक्ष्य संबंधी सवाल ने उन्हें परेशान किया कि अब क्या करोगे। जाहिर है, जब शहरी इलाकों में ही किशोरों की अभिरुचि जांचने परखने और उन्हें उनकी पसंद के क्षेत्र में दक्ष बनाने के सारी कोशिशें बेकार हो रही थीं, तो बरेला आसलवास के युवाओं की भला कौन सुध लेता। आगे पढ़ने की इच्छा बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन परिवार के दबाव में उन्होंने BSc में दाखिला ले लिया। पढ़ाई करते हुए सरकारी नौकरियों की कई परीक्षाएं दी, लेकिन किसी में कामयाबी नहीं मिली। उस दौरान उनके कई दोस्त सरकारी मुलाजिम हो गए। परिजनों और पड़ोसियों के व्यंग का सिलसिला शुरू हो गया, मगर भावेश के दिमाग में ये बात साफ हो चुकी थी कि दूसरों के हुक्म मानने वाली नौकरी उनको नहीं करनी है, और आदेश देने वाली कोई नौकरी उनको मिलने से रही तो उन्होंने कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही पढ़ाई छोड़ दी और परिवार को ऐलान कर दिया कि वो अपना कोई काम करेंगे। परिवार वालों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पिता तो खैर नाराज थे ही। भावेश को अब अक्सर सुनना पड़ता, ये किसी काम का नहीं है, इसे जायदाद से बेदखल कर दो, वरना

घर जमीन सब बेचकर खा जाएगा। ऐसे निठल्ले को कौन अपनी बेटी देगा? हरियाणा राजस्थान के इस इलाके की एक निर्मम सच्चाई ये भी है कि जिन युवाओं के पास सरकारी या मोटी पगार वाली निजी नौकरी नहीं है, जिनके पास जमा जमाया कारोबार नहीं है, उनकी शादियां ही नहीं होती। पिता के दबाव के आगे घुटने टेकते हुए भावेश ने पड़ोस के शहर लोहारू में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, मगर उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अंग्रेजी माध्यम में थी और भावेश को अब तक पूरी पढ़ाई हिंदी में ही करनी हुई थी। एक महीने में ही उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दिया। सवाल था, अब क्या करें? अब जो कुछ भी करना था अपने भरोसे करना था। भावेश को याद आया कि जब वो हॉस्टल में रहते थे तब उनके शहरी सहपाठी और कॉलेज शिक्षक उनसे मां के हाथों बना देसी घी लाने की फरमाइश किया करते थे, और जब वो घी लेकर जाते तो वो सभी स्थानीय भाव के अनुसार उन्हें पैसे दे देते थे। भावेश ने देसी घी का अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला ले लिया। साल 2019 की बात है। अपने 2-3 दोस्तों से उन्होंने कर्ज के तौर पर 30,000 रुपए जुटाए और इस रकम से एक वेबसाइट बनाई, मगर इस पर किस तरह की मार्केटिंग करनी है यह उन्हें आता नहीं था। उनका सारा निवेश बेकार चला गया। भावेश को थोड़ी निराशा हुई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। यूट्यूब पर देसी घी खाने के फायदे के बारे में वीडियोस देखे, उनमें नीचे टिप्पणी करने वालों से उन्होंने बातचीत करनी शुरू की, और फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मां से मिले 3,000 रुपए से नई शुरुआत की। सितंबर 2019 में वो मुबारक दिन आया जब बिहार के भागलपुर से उन्हें पहला ऑर्डर मिला। 1,125 रुपए का ये भुगतान भावेश जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। काम बढ़ा, कमाई बढ़ी, तो अपनों का भरोसा भी आ गया। फिर पिता के सहयोग से गायों की तादाद भी बढ़ा ली, गौशाला का विकास हो गया। फिर उन्होंने आसपास के छोटे छोटे 150 देसी गाय पालकों और दूध उत्पादकों को भी अपने साथ जोड़ लिया। भावेश आज सालाना करीब 8 करोड़ रुपए का देसी घी का कारोबार कर रहे हैं। अपनी सरकारी मुलाजिम दोनों बहनों को वो मजाक में छेड़ते हैं, सरकार तुमको जितनी तनख्वाहें देती है ना, उससे ज्यादा तो हम GST चुकाते हैं। बकौल भावेश, बेरोजगारी का हल सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, ये बात परिवारों को भी समझने की जरूरत है।

रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम आपके झाबुआ की आवाज पर। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: टीचर ने कहा, होमवर्क क्यों नहीं किया? स्टूडेंट, सर लाइट नहीं थी। टीचर ने कहा, तो मोमबत्ती जला लेते। स्टूडेंट, सर माचिस नहीं थी। टीचर ने कहा, अबे माचिस क्यों नहीं थी? स्टूडेंट, पूजा घर में रखी थी। टीचर, तो वहां से ले आते। स्टूडेंट, नहाया हुआ नहीं था ना। टीचर, नहाए हुए क्यों नहीं थे? स्टूडेंट, पानी नहीं था ना सर। टीचर, पानी क्यों नहीं था? स्टूडेंट, सर मोटर नहीं चल रही थी। टीचर, अब मोटर क्यों नहीं चल रही थी? स्टूडेंट, बताया तो सर, लाइट नहीं थी ना।
2: वो समय बच्चों को अच्छी अच्छी जगहों पर ले जाने, कुछ नया दिखाने और सिखाने का दौर था। मौका मिलते ही बच्चों को साथ लेकर किसी मॉल में दिखावे का चलन नहीं था। ज्यादातर पिता बच्चों को किसी ऐसी जगह ले जाते

करते थे जहां बच्चों का मन सकारात्मक विकसित हो। तो इसी मकसद से ऑस्ट्रेलिया के वो पिता भी अपने 13 साल के छोटे पुत्र को लेकर सिडनी पहुंचे। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, एक बेहतरीन मैदान, क्रिकेट का अद्भुत सुंदर गढ़। 25 फरवरी का ही दिन था। गुनगुनी धूप में गुलाबी ठंड लिए हवा बार बार सहलाए जा रही थी। प्रसिद्ध एशेज श्रृंखला का 5वां टेस्ट खेला जा रहा था। इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही थी और मैदान में ऑस्ट्रेलियाई टीम के तमाम दिग्गज क्षेत्र रक्षण करते हुए नजर आ रहे थे। वो बच्चा अचंभित था। वहां क्रिकेट के साथ बहुत कुछ था, कहीं ठहाके, कहीं शोर, कहीं अपने प्यारे खिलाड़ियों से सीधे संवाद की कोशिश, कभी नारे, कभी जय जयकार। कोई गेंदबाजों से विकेट गिराने की मांग कर रहा था तो कोई चौके की तमन्ना लिए बल्लेबाजों को ललकार रहा था। कहीं से संगीत की लहरियां उठ रही थीं तो कहीं से पकवानों की खुशबुएं। स्थानीय टीम अच्छा खेल रही थी तो सबके चेहरे खिले हुए थे। पहले विश्व युद्ध के बाद का वो माहौल ऐसा था मानो विशाल महोत्सव चल रहा हो। वैसे उस सजग बच्चे को एहसास था कि ये पूरा मेला मजमा अच्छी क्रिकेट देखने के लिए ही लगा है। अच्छी क्रिकेट मतलब अच्छे खिलाड़ी जिनका नाम सुनकर लोग दूर दूर से चले आते हैं। दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तब उस लड़के के सबसे प्रिय खिलाड़ी जॉन टेलर बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि टेलर ज्यादा नहीं चले मगर दूसरी छोर पर चार्ल्स मैकार्टनी को रोकना मुश्किल था। अंग्रेज गेंदबाजों की तो खैर नहीं थी। मैकार्टनी ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे कि लोगों को बाकी नजारे देखने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उस लड़के ने महसूस किया कि अच्छा खेलना कितना जरूरी है। जब कोई अच्छा खेलता है तो तमाम लोगों की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। मैकार्टनी ने 50 रन पूरे किए, 100 रन पूरे किए, 150 रन भी पार कर गए। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सबकी जबान पर एक ही नाम था, मैकार्टनी। खैर, जब मैकार्टनी का विकेट गिरा तब उनके खाते में 170 रन जुड़ चुके थे, जिसमें 20 तो चौके थे। तब छक्कों का जमाना नहीं था। खिलाड़ी बहुत ही अनुशासन के साथ जमीनी खेल में विश्वास रखते थे और मैकार्टनी का खेल इस विश्वास का भरपूर झलक था। उस दिन का खेल जब खत्म हुआ तो उस लड़के का मन ना हुआ लौटने का। पिता खड़े हो गए कि चलो आज घर लौटना है, हम 25 और 26 फरवरी का मैच देखने के लिए ही आए थे, कल 27 को मैच का रेस्ट डे है। पर स्टेडियम से लौटने का मन ही नहीं कर रहा था उसका। पता नहीं फिर कब ऐसा मैदान और शानदार खेल देखने को मिलेगा। फिर मन में आया कि काश ऐसे मैदान में खेलने का मौका मिल जाए, लोग देखने आते, तालियां बजाते। लड़के ने पूरी दृढ़ता के साथ पिता को कहा, पापा एक दिन जरूर मैं इस मैदान में खेलूंगा। हंसमुख पिता मुस्कुरा कर रह गए। वो अपने लड़के को जानते थे जो अच्छी टेनिस रग्बी खेलता था और कभी कभी क्रिकेट भी। खैर, सिडनी से लौटकर वो बच्चा घर पर एक जगह दीवार के सहारे अकेले घंटों अभ्यास करने लगा। हाथ में बल्ले की जगह विकेट का एक डंडा होता था और टेनिस बॉल सामने दीवार पर टकराकर बार बार कूदती आती थी और तब एक डंडा ही बल्ला बन जाता था। उस दिन मैकार्टनी का खेल देखकर ही मन में ये बात बैठ गई थी कि खेलो तो ऐसा तेज खेलो कि लोग लगातार निहारते सहारते ही रह जाएं। लड़के ने अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगा दिया कि एक दिन सिडनी के मैदान पर खेलना है। बस 6 साल लग गए और वो राष्ट्रीय टीम में शामिल कर लिया गया। बस एक पहला मैच अच्छा नहीं बीता पर उसके बाद तो दुनिया जान गई कि डॉन ब्रैडमैन नाम के एक बल्लेबाज ने दुनिया के तमाम गेंदबाजों के लिए काल की तरह अवतार लिया है। ब्रैडमैन
1908 से 2001 तक अपने बल्लों से रनों के जो पहाड़ बनाते गए, उनमें से कुछ पर पता नहीं कोई चढ़ पाएगा या नहीं। वो 25 फरवरी को ही दुनिया से विदा हुए थे। वो बार बार प्रेरित करते थे कि जब ठान लो तो करके दिखाओ, लगन और मेहनत से सब संभव है। वो कहते थे कि मैं कभी भी प्रशिक्षित नहीं हुआ हूं और ना ही मुझे कभी बताया गया कि बल्ला कैसे थामा जाता है। तो दोस्तों, ये हुई प्रतिभा डॉन ब्रैडमैन की।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार

आधुनिक व्यवस्था में यानी कि मॉडर्न सोसाइटी में ये कहा जाता है कि बच्चों का ध्यान बड़ी आराम से बड़ी सरलता से थक जाता है और उन्हें एक ही विषय को

लंबे समय तक पढ़ने के लिए नहीं कहना चाहिए। विषय बदलते रहने से उनके दिमाग को आराम मिलता है, ऐसा माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मॉडर्न सोसाइटी या आधुनिक युग, इसके बच्चे पुराने लोगों से अलग हो चले हैं क्या? और यदि ऐसा हो गया है तो लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखने के लिए हमने ही शायद उन्हें निराश कर दिया है। क्यों? हम बच्चों के पाठों को, उनके सब्जेक्ट्स को, उनके लेसन्स को बहुत बोरिंग, बहुत नीरस बना देते हैं, और जब बच्चा उनसे भागता है तो जबरदस्ती उसे पढ़ाने बैठा देते हैं और फिर कहते हैं कि जी ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसकी शिकायतें करने लगते हैं। कदम ब कदम उसे आगे बढ़ाते चलना और जैसे जैसे अगला कदम आए उसमें उसकी रुचि उत्पन्न करना और उसे कॉन्फिडेंस देना, उसे आत्मविश्वास देना, जब तक कि अपने विषय में उसे दक्षता हासिल ना हो जाए, यही तो तरीका है ना शिक्षा देने का। यूं देखा जाए तो मातृभाषा ही शिक्षा का सबसे उचित माध्यम है। मातृभाषा मतलब जिसमें हम बोलते हैं, इसलिए बच्चे को प्राथमिक शक्तियां इसी माध्यम में पूरी दक्षता पाने की ओर लगानी चाहिए। अक्सर हर बच्चे में एक कल्पना होती है, शब्दों के लिए, वाक्यों के लिए, बातचीत के लिए एक सहज व्यवहार होता है, एक नाटकीय क्षमता, विचार व तरंग की एक संपत्ति होती है। नीरस हिज्जे और किताबों के पठन पाठन के बजाय उसका परिचय अपने साहित्य और उसके आसपास और पीछे के जीवन के सबसे रोचक अंशों से हमें कराना चाहिए और उन्हें इस ढंग से उसके सामने रखना चाहिए जिससे कि वो उन गुणों के लिए आकर्षित हो, प्रभावित हो, उसे पता चले कि ऐसा होता क्यों है। इस अवधि में बाकी सारी पढ़ाइयां, शिक्षाएं मानसिक क्रियाओं और नैतिक चरित्र की पूर्णता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। इसी समय इतिहास, विज्ञान, दर्शन और कला के अध्ययन की नींव भी डालनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं और औपचारिक तरीके से नहीं। यहां एक विचार मेरे मन में आ रहा है, आजकल ज्यादा से ज्यादा बच्चे कंप्यूटर साइंसेज और टेक्निकल पढ़ाइयों में ही लगे हैं, जैसे सारा विश्व बस इन्हीं से चलता है, इन्हीं से चलने वाला है। जब कंप्यूटर साइंसेज और इस तरह की टेक्निकल शिक्षाओं के चलते लोग अपने आप से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से आपस में मिलना जुलना ही बंद कर देंगे, तो ऐसे संसार का करेंगे क्या? मेरा सुझाव है, मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी टेक्निकल पढ़ाइयों के साथ साथ एक विषय, एक सब्जेक्ट ऐसा भी होना चाहिए जो आपस में एक दूसरे के प्रति संभाव को भी सिखाए। एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे के प्रति मानवीय व्यवहार सिखाए। कोई भी एक सब्जेक्ट, इतिहास, कला, दर्शन से संबंधित हर कोर्स में जरूरी होना चाहिए, सिर्फ पास करने के लिए नहीं, सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए नहीं, बल्कि सचमुच पढ़ने के लिए। तब मेरा मानना है कि बच्चे का या किसी भी विद्यार्थी का पूरा विकास तभी होगा।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: अजय मुक्केबाज एमसी मेरी कॉम
3: भारत की एमसी मैरी कॉम ने पांचवी अंतर्राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने रोमानिया की स्वेलुता कुटा को 7-1 से हराया है। अरे भाई कमाल हो गया, लगातार चौथी बार गोल्ड मेडल, कुल 5 प्रतियोगिताओं में 4 बार गोल्ड मेडल।
4: वो छोटी सी बामुश्किल 5 फुट ऊंचाई वाली मैरी कॉम,
3: हाँ
4: अरे उसने तो अभी सितंबर 2007 में प्यारे से जुड़वा बेटों को जन्म दिया था।
5: अरे भाई 27 साल की उम्र में 1 साल के 2-2 बच्चों के साथ लगातार चौथी बार, अरे वो कमाल है, मैरी कॉम कमाल है।
6: नवंबर 2008 के आखिरी सप्ताह में जब पूरी दुनिया मुंबई में आतंकवादी हमलों को लेकर भारत के प्रति दुख और चिंता व्यक्त कर रही थी, तभी देश के सुदूर उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की एक छोटे से कद की छरहरी महिला ने दुनिया को भारत की ताकत की वानगी पेश कर दी।
2: 2 साल तक घर गृहस्थी में व्यस्त रहने के कारण मुक्केबाजी से दूर रहने और महज 4 महीने के अभ्यास के बाद एमसी मैरी कॉम ने 46 किलो संवर्ग में एक बार फिर अपना लोहा मनवा लिया। चीन की मिंगबो सिटी में संपन्न प्रतियोगिता में मैरी कॉम के मुक्कों के आगे कोई नहीं टिक पाया।
7: Interesting. I can see a great cheering crowd. Maria of the United States has punched to the right. Mary Kom of India defended very well and punched back. And now showers of punches from Mary.
6: आश्चर्य की बात है कि मैरी कॉम पहले 400 मीटर दौड़ और भाला फेंक में हिस्सा लेती थी और राज्य की चैंपियन भी थी। 1999 के बैंकॉक एशियाई खेलों में मणिपुर के डिंको सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और उसी से प्रेरित होकर मैरी कॉम ने मुक्केबाजी सीखने का फैसला किया। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। मैरी कॉम मुक्केबाजी सीख रही है ये बात जब पिता को मालूम हुई तो

0: बेटा मैरी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना?
1: पापा, मैंने मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैंने क्या किया है?
0: अरे गांव वाले कह रहे थे कि तुम स्कूल में मुक्केबाजी सीख रही हो। ये मारा पीटी लड़कों के खेल है बेटा, तुम्हें उसमें कूदने की कोई जरूरत नहीं है।
1: पापा, मेरे प्यारे पापा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि ये खेल लड़कों का और ये लड़कियों का है? पापू, ये कोई मारा पीटी थोड़ा ही है, खास तो अपना बचाव है, सब कुछ कायदे कानून में होता है।
0: अरे बेटा, कहीं किसी के घूंसे से तुम्हारी नाक टूट गई या तुम्हारा जबड़ा टूट गया तो फिर टूटी नाक वाली लड़की से कौन शादी करेगा?
1: पापा, आप चिंता ना करें, मैं जो करूंगी उससे आपका नाम ऊंचा ही होगा।
0: मेरा नाम ऊंचा होगा? क्या कह रही है ये?
2: और हुआ भी ऐसा ही। सन 2000 में ही पहली राज्य स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीत लिया। मैरी कॉम ने भाला फेंकने की अपनी ताकत और दौड़ने के अपने कौशल को अपनी मुक्केबाजी में शामिल कर लिया था।
3: ये खबर अखबारों में छपी, मैरी का फोटो भी था और घर वालों को एहसास होने लगा कि उनकी बेटी अपने परिवार, अपने गांव और अपने राज्य और देश का नाम रोशन करने की राह पर बढ़ रही है। मणिपुर, सात बहनें कहलाने वाले राज्यों में से एक सुंदर पहाड़ी राज्य। राज्य की राजधानी से सटा चूड़ा चंद्रपुर जिले का गांव कंगहुई। एम टोनिया कॉम मेहनत मजदूरी करने वाले एक गरीब व्यक्ति। घर के चूल्हे चौके में दिन भर खटती उनकी पत्नी एम अका कॉम और उनकी बेटी मैरी कॉम। दौड़ती खेलती दुनिया की दिक्कतों के बावजूद

0: सामाजिक संस्थाएं बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के इरादे से उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद दिया करती थीं।
1: और इसी प्रक्रिया में मेनगेट जंग नेजंग मैरीकॉम यानी एमसी मैरीकॉम, पहले लोकतक क्रिश्चियन मॉडल स्कूल और फिर सेंट जेवियर मोरांग में पढ़ाई करने लगी।
0: पढ़ाई से अधिक वो खेल कूद में आगे रहती। आदिम जाति लई स्कूल इम्फाल में वो हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकी, लेकिन मैरीकॉम के खिलाड़ी मन ने हार नहीं मानी और ओपन स्कूल के माध्यम से वो परीक्षा में फिर बैठी।
1: गरीब परिवार होने के कारण मैरीकॉम को समुचित पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था, लेकिन मैरी का खेलों के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने महज 14 दिनों में मुक्केबाजी के आधारभूत गुर सीख लिए थे। उनके मुक्के में इतना दम था कि कई सालों से बॉक्सिंग सीख रही लड़कियां उनके शुरुआती दिनों में भी उनके सामने नहीं टिक पाई।

0: गरीबी ने उनके आत्मसम्मान को सदैव ताकत दी।
1: ये घटना उनके स्कूली दिनों की है जब वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कॉलोनी से बाहर निकली।

0: अरे लगता है कोई सवारी आ रही है।
1: रिक्शे वाले भैया, एमबीसी चर्च चलोगे?
0: अरे आपको ले जाने से कौन मना कर सकता है। बैठिए बैठिए बैठिए।
1: पैसे कितने लोगे?
0: अरे मैडम जी जो देना हो दे देना, आपको तो रेट मालूम ही है ना।
1: ठीक है चलो फिर।

0: मैडम जी, एक बात बोलूं आपसे?
1: बोलो।
0: अगर आप लाल रंग पहने तो बहुत सुंदर लगेंगी।
1: सुनो, ज्यादा बकबक नहीं, अपने काम से काम रखो।
0: बात क्या है कि आप तो दिखती ही ऐसी हैं, कुछ बोले बिना मन नहीं मानता ना।
1: ए, जरा रोको रिक्शा। अरे रिक्शा रोको, सुन रहे हो तुम? अरे
0: अरे, अरे गुस्सा क्यों हो रही है? रोकता हूँ, रोकता हूँ।
1: आइंदा किसी लड़की को अकेला देखकर कमजोर मत समझ लेना, समझे?
2: विषम परिस्थितियों में संयम से काम लेना, उनसे डट कर मुकाबला करना एक अच्छे खिलाड़ी का गुण होता है। इन्हीं गुणों के कारण एमसी मैरीकॉम सन 2000 से 2005 तक लगातार 5 बार महिला हॉकी की राष्ट्रीय चैंपियन रही। ऐसा नहीं है कि मैरीकॉम के साथ प्रत्येक कदम पर सफलताएं ही थीं।
3: उन्हें बैंकॉक में होने वाली थाईलैंड एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सिलेक्शन कैंप में शामिल होने के लिए जाना था। सफर के दौरान ट्रेन में उनका पूरा सामान चोरी हो गया। उसमें उनके कपड़े, दस्ताने, पैसे, यहाँ तक के पासपोर्ट भी था।
2: इतने नाजुक हालात का मैरीकॉम ने डटकर मुकाबला किया। उनके एक परिचित अंकल ने भरोसा दिया कि यदि मैरी का सिलेक्शन हो जाता है तो वो सारी व्यवस्थाएं कर देंगे।
3: उन हालात में मैरीकॉम ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की टीम में अपना स्थान बना लिया, लेकिन इस बार मैरी को खाली हाथ वापस आना पड़ा।
2: लेकिन मैरीकॉम ने हार नहीं मानी। अमेरिका में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। सन 2002 में तुर्की में उन्होंने द्वितीय महिला विश्व स्तरीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई प्रतियोगिताएं तो लगातार मैरीकॉम के नाम रही हैं।
3: लेकिन इतने सारे सोने के तमगे मैरीकॉम के घर का चूल्हा जलाने और लगातार प्रशिक्षण व पौष्टिक आहार के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे। सन 2005 तक उनके पास न तो नौकरी थी और न ही कोई स्पॉन्सर।
2: शादी के बाद जब मैरी गर्भवती हुई तो लोगों को लगा कि अब इस चमत्कारी मुक्केबाज का करियर खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गर्भ के 7वें महीने तक मैरीकॉम मुक्केबाजी की रिंग में जाती रही। वो अपने पास पड़ोस के बच्चों को मुक्केबाजी का प्रशिक्षण देने लगी। इससे उनका अभ्यास बरकरार रहा।
3: 2 साल तक बॉक्सिंग रिंग से दूर रहने के बाद जब मैरीकॉम ने फिर से मुक्केबाजी के ग्लव्स पहने तो एक नया संकट उनके सामने था।
1: कोच सर, मैं फिर से रिंग में आना चाहती हूँ।
4: फिर से? देखो मैरी, तुमने खेल को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब तुम्हारी हालत ऐसी नहीं लगती कि फिर से।
1: कोच सर, मेरा शरीर जब तक चलेगा तब तक मैं खेलूंगी। अब बताइए मेरी फिटनेस में क्या कमी है?
4: मैरी, तुम खेलती हो 46 किलोग्राम में, ठीक है ना?
1: जी सर।
4: जब तुम गर्भवती थी तब तुम्हारा वजन क्या था?
1: 67 किलो।
4: और अब?
1: 61 किलोग्राम।
4: देखो मेरी, 61 किलो वजन में तो कोई जगह खाली है ही नहीं। अब तुम 46 किलो कैसे बनोगी? यानी समझ गई ना?
1: कोई बात नहीं सर, मैं आपसे कुछ दिनों बाद मिलती हूँ।
4: कुछ दिनों बाद मिलती हूँ।

0: वजन कम करने की चुनौती को मैरी कॉम ने सहर्ष स्वीकार किया। उनके पति के ऑनलर ने इस घड़ी में उनका साथ दिया। ऑनलर मोटरसाइकिल पर होते और मैरी कॉम दौड़ लगाती।
1: Yeah.

0: 15 किलो वजन कम करना लेकिन अपनी ऊर्जा को बचाए रखना कोई साधारण काम नहीं था। साथ में दो बच्चों को भी पालना था। बच्चे केवल 2 महीने के थे और मैरी कॉम को गुवाहाटी में हुई एशियाई चैंपियनशिप के लिए कैंप में जाना पड़ा।
1: उनकी गैर मौजूदगी में उनके दोनों बच्चों की देखभाल उनके पति ने की।
0: तभी तो जब चीन में संपन्न 5वीं महिला अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम को गोल्ड मेडल मिला तो उन्होंने इस पदक को अपने पति और बच्चों को समर्पित किया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से वो यहाँ तक पहुंची थी। अपने बच्चों के प्रति भावुक पलों में उन्होंने कहा,
2: उन्हें छोड़कर आना बहुत मुश्किल था। वो अभी बोलते नहीं लेकिन रवानगी के समय मुझे हैरानी से देख रहे थे कि मम्मी उन्हें छोड़कर कहाँ जा रही हैं। उनसे दूर रहना मुश्किल था लेकिन मैं मुक्केबाजी को उतना ही प्यार करती हूँ।
0: मैरी कॉम को पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार सहित कई सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। इम्फाल के खेल गांव की ओर जाने वाली सड़क का नाम MC मैरी कॉम मार्ग रखकर मणिपुर सरकार ने इस जीवट वाली मुक्केबाज महिला को

0: किसी ने पूछा, यदि आप मुक्केबाज नहीं होती
1: तो मैं गायिका होती। मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: अब मैरी कॉम का लक्ष्य है ओलंपिक में हिस्सा लेना।
1: मेरा सबसे बड़ा सपना है ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करना, और उम्मीद करती हूँ कि सन 2012 में लंदन ओलंपिक में मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा।
2: खेल जिंदगी को मैरी कॉम की तरह एक ऊंचे मकाम तक पहुंचा सकते हैं, बशर्ते इसके प्रति लोगों का नजरिया बदले।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।

मार्च का महीना है। होली के रंगों के साथ ही स्वेटर रजाई बक्सों में बंद होने लगे हैं। पिछले यही तो दिन थे जब अचानक सुबैया सुबह सुबह आया था, चाय की चुस्की के साथ बोल पड़ा था, यहां के हल्ले गुल्ले भीड़ भाड़ से परेशान हो गए हैं, कहीं ऐसी जगह चलो जहां कुछ पल सुकून के मिले। ढेर सारे नक्शे किताबें पलटी थी हमने। अरे हाँ सुबैया मेरा दोस्त, इससे तो मिल ले, मेरा मित्र, मेरा सहकर्मी, शांत गंभीर संकोची लेकिन जिज्ञासु,

हम पहुंच गए वहां जहां लगा कि शायद स्वर्ग की कल्पना यही होगी। वहां देखे सुने महसूस किए हर पल हर घटना को मैंने अपनी डायरी में दर्ज किया है। तो मेरी डायरी के सहयात्री बनेंगे

0: यमुनोत्री, यमुना का उद्गम स्थान। यमुनोत्री तक की यात्रा आसान नहीं थी। एक ओर ऊंचे पहाड़, चढ़ाई, उस पर तेज ढलान, उन पर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल था। जैसे तैसे उठते बैठते हांफते हुए चढ़ तो गए। साथ में कुछ लोग और भी थे, उन्होंने हिम्मत बनाए रखी।
1: अब मुश्किल लगेगी भाई।
2: चलो भाई, बस बस थोड़ी दूरी तो है।
0: अरे तुम तो अभी कम उम्र के हो सुरैया।
1: मैं थोड़ा सुस्ता लूं।
2: ठीक है,

चढ़ते वक्त गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन पसीना नहीं आ रहा था। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक ओर गहरे खड्ड और घाटियां जो हरे भरे पेड़ पौधों से ढकी हुई थी, दूसरी ओर ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी दूर दिखाई दे रही थी। तेज हवा अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी, लेकिन पहाड़ियों का सिलसिला चलता ही जा रहा था।

0: अरे लगता है हम यमुनोत्री पहुंचने वाले हैं।
1: अरे चलो चलो, वो उस सामने ही यमुनोत्री है।
0: हाँ सामने, सच सुनिए।
1: हाँ हाँ,
0: इतना पास
1: सामने। चलो संभल कर।
0: अब मुश्किल लग रही है भाई।
2: फिर चढ़ना शुरू किया। सस्ताने से थोड़ी ताकत व हिम्मत बन गई। बर्फ की सफेदी इतनी थी कि आसमान का नीलापन भी कम दिखाई दे रहा था। मेरे लिए ये एक नया अनुभव था। कुछ देर की चढ़ाई के बाद हम यमुनोत्री पहुंच गए।
1: अरे बस बस पहुंच ही गए। आ जाओ आ जाओ।

0: किरणों का कमाल।
1: वाह रे कुदरत, बर्फ के इतने रंग। अरे मैंने कभी सोचा भी नहीं था सूर्य की किरणें बर्फ में रंग भर सकती हैं। वाह,
0: हम यही कोई समुद्र तल से 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हैं। हर यमुनोत्री उत्तराखंड राज्य के टिहरी और उत्तर काशी जिले में पड़ता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है बदरपुच्छ, जानते हो ये सुमेर भी कहलाती है।
1: अच्छा,
0: इसका एक भाग है कलिंद, यही यमुना का उद्गम है।
1: वाह सुभैया, खूब जानकारी इकट्ठा की है। लगता है बहुत सारे नक्शे देखे हैं, तभी यमुना को कालिंद भी कहते हैं। सर्दी बहुत थी, पहने हुए गर्म कपड़े सर्दी नहीं रोक पा रहे थे। पास में चाय का एक खोखा था, हमने चाय पी, कुछ गर्मी आई। कभी कभी सांस लेने में कठिनाई सी जरूर होती थी, हम हांफने लगते थे क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यमुनोत्री एक हिमनद यानी बर्फ का चलता हुआ ग्लेशियर है, इसी से यमुना नदी निकलती है। यमुनोत्री पीर पंजाल की पहाड़ियों का ऊपरी भाग है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। पीर पंजाल की पहाड़ियां छोटे और बड़े हिमालय के बीच का भाग है। यहां पर वायुमंडल की निचली परत ट्रोपोस्फीयर में तापमान ऊंचाई के अनुसार घटता जाता है, इसीलिए पहाड़ों पर तापमान कम होता है, सर्दी मैदान से अधिक पड़ती है। यमुनोत्री पर चारों ओर सन्नाटा था, हम केवल चंद ही लोग थे वहां, एकदम जीवन रहित, यहां तक कि परिंदे भी दिखाई नहीं पड़ते थे, केवल बर्फ ही बर्फ, वो भी दूर दूर तक। बर्फ पर चलने से पैर नीचे की ओर धस रहे थे, तापमान शून्य से कम होने के कारण पेड़ पौधे घास फूस कुछ भी नहीं उग पाते।

हम लोग टहलते हुए पहाड़ की दूसरी ढलान की ओर गए। वहां कुछ और ही देखने को मिला। बर्फ के नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था और वो भी शून्य से कम तापमान पर, जहां सब कुछ जमा हुआ था।

0: जमा हुआ है, वहां पानी कैसे?
1: जब करीब जाकर देखा, बर्फ का निचला भाग खोखला था। अंदर हाथ डालने से पता चला कि बर्फ का खोखलापन दूर तक है। इसका कारण क्या है, मैं सोचता रहा और अंत में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बर्फ जमीन की गर्मी से पिघल रही है। एक पतली सी पानी की धार ढलान से नीचे की ओर बह रही थी।

पानी की धारा का रुख उत्तर की ओर था। इसके साथ साथ हमने नीचे उतरना शुरू किया। यहां छोटी छोटी कई और धाराएं भी मिल रही थी। पानी को हाथ में लेकर देखा, बहुत ठंडा था। ठंड से हाथ में ठिठुरन चढ़ गई। उतरते हुए देखा नीचे की ओर बर्फ कम हो रही थी। केवल दो पहाड़ों के बीच की घाटियों में काफी बर्फ थी। हिमालय पर्वत परतदार चट्टानों से बना है। परतों के बीच बीच में मिट्टी, कंकड़, पत्थर देखे जा सकते हैं। ऐसी बनावट कमजोर होती है, खास तौर से बरसात के समय। पानी जब मिट्टी, कंकड़, पत्थर के बीच से गुजरता है तो चट्टानें कमजोर होकर खिसकने लगती हैं। बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड का खतरा रहता है।

कुछ दूर चलने पर हमें मलबा दिखाई दिया। अब पहाड़ एवं ढलानों पर कहीं कहीं घास दिखाई देने लगी। मैंने एक चोटी से खड़े होकर देखा, कुछ दूर भेड़ बकरियां चरती दिखाई दे रही थीं।

पानी की धारा भी अब बड़ी हो गई थी। इसी के साथ हम नीचे की ओर उतर रहे थे। पानी की इस धारा को यमुना नदी मानने में कुछ झिझक हो रही थी। सो चरवाहों के पास जा पहुंचे।

0: अरे भैया जरा सुनना।
1: कहो बाबू जी।
0: क्या यही यमुना है?
1: यमुना नदी देख रहे थे?
0: हाँ
1: यही यमुना है।
0: क्या इतनी छोटी सी?
1: हाँ आगे चलकर बड़ी हो जाएगी।
0: अच्छा अच्छा हमने चारों ओर देखा कि घाटियों में बड़े बड़े पेड़ थे, ढलानों पर घास थी, चट्टाने काई से ढकी थी, कहीं कहीं नई घास निकल रही थी। चरवाहों के साथ साथ हम भी आगे बढ़ने लगे। यहां पर चरवाहों को बकरवाल कहते हैं। हमने स्थानीय बोली में उम्र में छोटे दिखाई देने वाले एक चरवाहे को रोका और भुला कहकर संबोधित किया। भुला का मतलब है छोटा भाई।

0: अरे सुनो भाई।
1: जी साहब।
0: भोला, इतनी ऊंचाई पर इतनी ठंड में भेड़ों के साथ क्यों आते हो?
2: साहब ऐसा है, गर्मियों के समय मैदानों में पानी और घास सूख जाती है। हिमालय के पहाड़ों में पानी घास फूस खूब मिलता है साहब।
0: अच्छा अच्छा, ये बताओ कि कब तक रहते हो यहाँ?
2: हम यहाँ आना शुरू करते हैं साहब अप्रैल मई में।
0: अच्छा।
2: पहले शिवालिक की पहाड़ियों में घास चराते हैं। यहाँ बड़े पत्ते वाले पेड़ हैं, भेड़ बकरियाँ कम खाती हैं, इसलिए यहाँ कम समय रहते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवालिक की पहाड़ियों के बाद आप कहाँ जाते हैं?
2: शिवालिक के बाद साहब धौलाधार के पहाड़ों में चराते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्योंकि धौलाधार के पहाड़ों में खूब घास मिलती है।
0: अच्छा।
2: गर्मियों में बर्फ पिघलने के बाद नई नई घास फूटती है जो भेड़ बकरियों को ताकत देती है। इसे खाकर ये अच्छी खासी तंदुरुस्त हो जाती है साहब। हम इन पहाड़ों में कई महीने रहते हैं। पहाड़ की चोटियों पर सर्दियों में बर्फ खूब जमती है साहब। जब घास कम होने लगती है तो हम आगे बढ़ जाते हैं।
0: अच्छा भोला, तुम्हारे बाल बच्चे?
2: हमारे बाल बच्चे सामान के साथ खच्चर या गधों पर बाद में आते हैं। छोटे बच्चों को सामान के साथ गधों पर बैठा देते हैं।
0: गधों पर?
2: हाँ, औरतें हाँकती हुई चली आती हैं। परिवार के साथ कुत्ते होते हैं साहब, वो हमारी रक्षा करते हैं साहब।
0: भाई तुम्हारा जीवन तो बहुत कठिन है भोला।
2: नहीं नहीं साहब, यही तो हमारी जिंदगी है, अच्छा लगता है साहब।
0: अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था क्या है?
2: साहब पढ़ाई लिखाई का तो कोई जुगाड़ नहीं हो पाता, क्या करें, बच्चों को भी यही काम करना पड़ेगा। पैसों का जुगाड़ हो तो पढ़ाई लिखाई की सोचें।
0: धौलाधार के बाद कहाँ जाते हो?
2: धौलाधार की पहाड़ियों के बाद छोटे हिमालय की पहाड़ियों की ओर निकलते हैं। वहाँ हरी घास खूब मिलती है साहब।
0: अच्छा।
2: छोटे हिमालय की ऊंचाई धौलाधार से भी ज्यादा है साहब।
0: अरे वाह,
2: ठंड भी ज्यादा पड़ती है।
0: तो ठंड से बचने के लिए क्या करते हो?
2: ठंड से बचने के लिए साहब हमारे पास ऊनी कपड़े जैसे कंबल, लोई

0: इस समय तुम क्या काम करते हो?
1: पहाड़ों के चढ़ने की थकान उतारते हैं साहब। जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं।
2: अच्छा,
1: यही भेड़ बकरियां दूर दूर तक चरती हैं। जगह जगह के बकरवाल यहाँ आकर इकट्ठा होते हैं और हमारी पंचायत भी यही होती है साहब।
2: अच्छा,
0: शहर भी
1: बहुत अच्छे।

बकरवाल से विदा लेने के बाद हमने नदी के साथ नीचे की ओर उतरना शुरू किया। एक सपाट भूभाग दिखाई दिया जहां तरह तरह के फूल खिले हुए थे। बड़ा अजीब सा लगा, जंगल में मंगल। फूलों को देखकर हमारी थकान दूर हो गई।

0: कैसा निजाम है कुदरत का। हाँ, एकाएक ये फूल कहां से?
1: भाई ऐसे फूल हिमालय में एक खास ऊंचाई पर मिलते हैं।
0: पर क्यों?
1: एक खास वातावरण के कारण।
0: अब मैं कुछ समझा नहीं।
1: देखो सुपैया, तुमने देखा कि सबसे ऊपर बर्फीले क्षेत्र, काई व हरी भरी घास थी।
0: हाँ,
1: इसके बाद जंगली फूल और जड़ी बूटियां, फिर पेड़ पौधे, जीव जंतु व मानव बस्तियां।
0: अच्छा अच्छा, यानी एक खास आबो हवा में ही ऐसे फूल वाले पेड़ उग सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब समझा।
1: तभी दूसरी ओर से एक और भेड़ बकरियों का समूह आता दिखाई दिया।

0: उनके करीब गया।
1: आप सुनिए
2: जी साहब,
0: आप भी बकरवाल हैं?
2: नहीं नहीं साहब, हम तो भोटिया कबीले के हैं साहब।
0: भोटिया?
2: भोटिया?
0: हाँ। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ।
2: साहब, हमारा पुराना संबंध तिब्बत से था।
0: अच्छा।
2: पहले भारत चीन के बीच व्यापार करते थे साहब। 1962 में भारत चीन की लड़ाई के बाद व्यापार बंद हो गया साहब।
0: अच्छा।
2: अब हम केवल भेड़ बकरियां पालते हैं साहब। हम में से कुछ हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में याक भी पालते हैं साहब।
0: अच्छा, याक भी पालते हैं?
2: हाँ साहब, हमारा एक खास कबीला है साहब, जो गर्मियों में बद्रीनाथ केदारनाथ के आसपास रहते हैं साहब। माणा हमारा आखिरी गांव है जो भारत चीन की सीमा पर है साहब।
0: हाँ हाँ
2: हाँ। माणा हमारा गर्मियों का ठिकाना है साहब। हम पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं साहब।
0: क्या कहा? पांडवों को?
2: हाँ साहब।
0: अरे वाह।
2: आज भी खास उत्सवों पर हम पांडव लीला का अभिनय करते हैं। ये उत्सव कई रोज चलता है साहब। बड़ा ही आनंद आता है साहब।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: बहुत अच्छा। और हाँ साहब, हम बड़े हिमालय से लेकर मैदानी भागों तक भेड़ बकरी चराते हैं साहब। हमारी औरतें ऊन की कताई, बुनाई, कपड़ा बनाना, बेचना, सभी कामों में निपुण है साहब।
0: सभी कामों में?
2: हाँ, ऊन के बनाए गए कपड़ों को वो खुद ही बेचती है साहब।
0: क्या कहा? खुद ही बेचती है?
2: हाँ साहब।
0: कमाल की बात।
2: अच्छा साहब, नमस्ते साहब।
0: अच्छा, नमस्ते नमस्ते।
3: बकरवाल और भोटिया में कुछ बातें

0: आसान है, जैसे भेड़ बकरियां पालना, चरागाह का प्रबंध करना, आने जाने के लिए घोड़े, रक्षा के लिए कुत्ते पालना आदि। ऐसे घुमंतू कबीले हिमालय में कई और भी हैं। भेड़ बकरियों का पालन इनका मुख्य धंधा है। चरागाहों के साथ घर ठिकाना सब बदलता है। गर्मी और सर्दी के ठिकाने अलग अलग होते हैं। भोटिया कबीले के सरदार से बातें करते करते कितनी दूर निकल आए पता ही नहीं चला। अब यमुना की धारा बड़ा रूप धारण कर चुकी है और मुझे लगा यमुना मुझसे कुछ कह रही है, शायद अपनी आप भी थी।
1: मेरा नाम यमुना है, लोग मुझे यमुना के नाम से भी पुकारते हैं। प्राचीन ग्रंथों में मुझे सूर्य की पुत्री सूर्य कन्या, यम की बहन यमी और कालिंदी भी कहते हैं। गंगा की तरह मैं पवित्र नदियों में से एक हूं। मैं उत्तराखंड राज्य के यमुनोत्री हिमनद से निकलती हूं, जो उत्तर काशी के टेहरी जिले में पड़ता है। यहां पीर पंचाल की पहाड़ियों की कुछ चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। इन्हीं चोटियों के बीच यमुनोत्री हिमनद स्थित है। यहां बर्फ का ही साम्राज्य है। चारों ओर दूर दूर तक केवल बर्फ। वही मेरा उद्गम स्थान है। इसकी ऊंचाई कहीं 3000 मीटर तो कहीं 4000 मीटर है। बर्फ के पिघलने से मेरे जीवन की शुरुआत होती है। जमीन की गर्मी मुझे जीवन देती है। पहाड़ों की ढलान मुझे गति प्रदान करती है। कई सरिताएं मिलकर मेरा आकार और पानी की मात्रा बढ़ाती है। लेकिन आज मैं संकट में हूं। हिमनद जलवायु के परिवर्तन से सिकुड़ रहे हैं। इसका असर आप भी महसूस कर रहे होंगे।
0: हम यमुना के साथ जल्दी जल्दी आगे बढ़े। सोचा रुकने का ठिकाना तलाश करें। थोड़ी देर में बस्ती के पास पहुंचे। ये पहली बस्ती थी बरकोट। पहाड़ी की ढलान पर बसा था ये छोटा सा कस्बा, पर साथ में यमुना नदी बह रही थी। सड़क के दोनों ओर घर, नीचे दुकानें, चाय व खाने के ढाबे थे। एक छोटे से होटल में हमने खाना खाया और अपना ठिकाना तलाश कर लिया।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी RJ राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई है डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
2: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
3: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र है।
2: जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
3: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूर होता है उससे। जी
2: डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
3: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
2: जी बिल्कुल। और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर साहब के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
3: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
4: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है, ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
2: जी बताइए डॉक्टर।
3: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
2: जी डॉक्टर साहब की तरफ से, ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
3: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
2: तो दोनों को ही खानी
3: चाहिए। और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
2: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
3: जी
2: और डॉक्टर साहब,
5: क्या फाइलेरिया की पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
3: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
2: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
3: ये जब अभियान चलता है हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें। जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग, उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
2: जी, और डॉक्टर साहब एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
3: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में दस बजे से लेके दो बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
2: अच्छा। जी जी, रात के 10 बजे से 2 बजे तक ज्यादा
3: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
5: जी, और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
2: जी बताइए।
3: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
2: जी
1: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: हूँ से आरजे राकेश,
6: अने हूँ से आरजे कमता डामोर,
1: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी, आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है तमारो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। हूँ से आरजे राकेश, अने रोज नी जेम तमारी वस मा आज फेर कार्यक्रम खेतीवाड़ी लीने हाजिर थायो से। अने किसान भाइयों, हूँ रोज तमारी वस मा खेतीवाड़ी देखा जोड़ायला मुद्दा, खेतीवाड़ी नी समस्याओ अने तिना समाधान नी वातियो लीने रोज इना समय पर हाजिर थाम से। तो किसान भाइयों, आज ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आपड़ो चर्चानो नवो विषय रहेवानो से मछली पालन, एतरे मासला पालवानी वात्यो। बधी वात्यो आपुन वताड़े कृषिता जोड़ायेला विशेषज्ञ अने एवा किसान भाई ज्या मासला पालन करीने घणो असल अने मोटो मुनाफो कमाई रहेशे। तो किसान भाइयों, घणो महत्वपूर्ण कार्यक्रम छे, जाजो मती कहता हमल तारे जो कार्यक्रम खेतीवाड़ी।
7: रविवार का कृषि विशेष हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे देश के दक्षिणी छोर पर बसे राज्य तमिलनाडु से। तमिलनाडु वैसे तो अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति भी अन्य राज्यों से काफी भिन्न है। जहां पूर्वी तट पर ये एक समतल प्रदेश है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें उत्तरी और पश्चिमी भाग की, तो ये पर्वतीय क्षेत्र में विभाजित हो जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु की कोस्ट लाइन भी काफी लंबी है, जो कि 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। और इसके पीछे वजह है, पूर्वी तट पर जहां यहां बंगाल की खाड़ी है, वहीं दक्षिण में यह अरब सागर से घिरा हुआ है। इसीलिए यहां के लोगों के जीवन की बात करें तो उनके जीवन और आजीविका का माध्यम है समंदर। आज हम बात करेंगे कि कैसे तमिलनाडु में मत्स्य पालन को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है और नई तकनीक से कैसे मछुआरों और किसानों के जीवन में बदलाव आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की, जिसमें हम बात करेंगे आय की गारंटी मछली पालन।

आज के समय में बढ़ती आबादी की वजह से कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, जिस कारण कम समय में अधिक उपज ले पाना भी बहुत ही मुश्किल होने लगा है। इस तरह की समस्याओं के लिए कुछ अलग तरह की कृषि का चयन एक बेहतर विकल्प हो सकता है, ताकि कम समय में अधिक पैदावार प्राप्त कर मूल्य भी अच्छा प्राप्त किया जा सके। ऐसा ही एक व्यवसाय है मछली पालन। इस व्यवसाय में मुनाफे वाले सभी गुण मौजूद हैं। ये एक उच्च कोटि खाद्य पदार्थ व्यवसाय है। देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में मत्स्य पालन का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही मछली पालन आर्थिक रूप से पिछड़ी आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए आजीविका का साधन भी है। ये क्षेत्र रोजगार, पोषण सुरक्षा और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी सहायक है। मछली उत्पादन भारत को सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाता है। कारण है यहाँ के दक्षिणी राज्य। भारत में सामान्य तौर पर तीन देशी कतला, रोहू, मृगल और तीन विदेशी सिल्वर कार्प, कॉमन

0: कार्प, ग्रास कार्प मछलियों का पालन किया जाता है। बीते कुछ वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए किसानों की रुचि भी मछली पालन की ओर बढ़ी है। देश के किसान या मछली पालक वैज्ञानिकों की सलाह पर नई तकनीकों के माध्यम से मछली पालन के व्यवसाय को अपना कर उत्पादन में वृद्धि कर पोषक और संतुलित आहार की मात्रा को लोगों तक पहुँचाने में सफल हो रहे हैं और अपनी आय को दुगुना करने में भी प्रयासरत हैं।
1: मछली पालन आय की गारंटी में आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वर्तमान में तमिलनाडु में मछली पालन या फिर कहे मत्स्य पालन क्षेत्र की स्थिति क्या है, इसको लेकर सरकार की तरफ से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।
0: तमिलनाडु के समुद्री राज्य को 1076 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 41,412 किलोमीटर दो महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र के साथ 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर के विशेष आर्थिक जोन का आशीर्वाद प्राप्त है, जो 5.95 लाख टन समुद्री मछली उत्पादन में योगदान देता है। ये 5,830 मशीनीकृत और 45,685 पारंपरिक मछली पकड़ने वाले शिल्पों के माध्यम से 10.48 लाख समुद्री मछुआरों को आजीविका का समर्थन करता है, जो सक्रिय रूप से मछली पालन में लगे हुए हैं। तमिलनाडु के पास 3.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। प्रभावी अंतर्देशीय जल संसाधनों में जलाशय प्रमुख सिंचाई टैंक, लघु सिंचाई टैंक, छोटे मौसमी टैंक, तालाब, नदियाँ, बैक वाटर और परित्यक्त जल निकाय शामिल हैं। अंतर्देशीय मछुआरों की आबादी 2.35 लाख है। 56,000 हेक्टेयर का अनुमानित खारा जल क्षेत्र मत्स्य पालन और 6,115.68 हेक्टेयर क्षेत्र है तटीय जलीय कृषि उत्पादन के अंतर्गत है। मुख्य रूप से झींगा जलीय कृषि, तमिलनाडु समुद्री खारे पानी और अंतर्देशीय मत्स्य संसाधनों से समृद्ध है, जो मत्स्य पालन और संवर्धन के लिए उपयुक्त है। तमिलनाडु सरकार द्वारा मत्स्य संसाधनों के आर्थिक और सामाजिक आयामों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। मत्स्य पालन क्षेत्र बड़ी संख्या में मछुआरों को आजीविका प्रदान करके संबंध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करके देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करें उत्पादकता की तो आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 में देश का कुल मछली उत्पादन 16.24 मिलियन मीट्रिक टन था। भारत दुनिया में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और अंतर्देशीय मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। मत्स्य पालन क्षेत्र देश की जीडीपी में 1% योगदान देता है। देश के कुल समुद्री मछली उत्पादन में तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। तमिलनाडु ने 2021-22 के दौरान 1.14 लाख मीट्रिक टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया और 6,569.64 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की। राज्य की प्रति व्यक्ति मछली की खपत भी 2020-21 के दौरान 9.3 किलोग्राम से बढ़ गई है। केंद्र सरकार मत्स्य उत्पादन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चला रही है। इस योजना को मछली उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता से लेकर प्रौद्योगिकी, कटाई के बाद की बुनियादी ढांचे और विपणन तथा मत्स्य मूल्य श्रृंखला में बेहतरी के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य मूल्य श्रृंखला को आधुनिक बनाना और मजबूत करना है। मत्स्य योजना का मकसद नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कुल अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए है, जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपए है और लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य मछली उत्पादन को साल 2024-25 तक 220 लाख मीट्रिक तक बढ़ाने का है। इस महत्वाकांक्षी योजना से निर्यात आय दूनी होकर 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी और इस योजना
2: योजना के माध्यम से मछली पालन के क्षेत्र में लगभग 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने की संभावना है। इस योजना में कई नई गतिविधियों और क्षेत्रों जैसे जेनेटिक सुधार कार्यक्रम, एक्वा कल्चर स्टार्टअप, मछली की खपत के लिए प्रचार गतिविधियों, तटीय मछली पालन ग्रामों का विकास और अत्याधुनिक थोक मछली बाजार आदि पर ध्यान केंद्रित करना है। सरकार के द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों और नई नई योजनाओं के फलस्वरूप ही हमारे किसान भाई और मछली पालक अपने क्षेत्र में सफल हो पा रहे हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाएं हैं, जिससे मत्स्य पालन के क्षेत्र को अधिक बल मिल रहा है, जिसके कारण हमारे देश के मछली पालक पहले से और भी ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ तरीके से काम कर रहे हैं और अपने कल को संवार रहे हैं।
1: तो आपने जाना कि कैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से हमारे मछुआरों को लाभ हो रहा है और उनकी आजीविका भी सुनिश्चित हो रही है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा कहीं मत जाएगा। इस बार का कृषि विशेष हम आप तक पहुँचा रहे हैं तमिलनाडु के मंडपम से।

0: पारंपरिक तरीके से समुद्र में फिशिंग यहाँ के लोगों की आय का मुख्य साधन रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में मछलियों की संख्या तटीय क्षेत्रों में घटने लगी, जिसकी वजह से मछुआरों की आय पर भी आशंका के बादल मंडराने लगे। आइए अब आपको बताते हैं कि सरकार की तरफ से जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं उससे मछुआरों को किस तरह से लाभ हो रहा है और इसको लेकर वो क्या कहते हैं।
1: खेती हो या फिर मछली पालन का क्षेत्र, सरकार इन्हें मजबूत बनाने के उद्देश्य से नित नई योजनाएं लेकर आती रहती है, जिसके फलस्वरूप किसान और मछुआरे आत्मनिर्भर होकर अपने कार्य में सफल हो रहे हैं।
2: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கேன், திருவான வட்டம் தொண்டி புதுக்குடியில் மீனவராக இருக்கேன். நான் வந்து முன்ன வந்து படகு நாட்டு படகு வச்சுருந்தேன், அது மீனவர் இதிலேருந்து எனக்கு போட்டு தந்திருக்காங்க, பிரதமர் திட்டத்திலேருந்து எனக்கு வந்து போட்டு தந்திருக்காங்க. இப்போ முன்ன வந்து சராசரி ஒரு நாளைக்கு 500 வருமானம் வந்தது, இப்போ வந்து 1000 பரவலமாக வருமானம் வருது. இந்த வசதி பண்ணி தந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.
0: मछली पालन के कई प्रकार हैं और उन्हीं में से एक है आधुनिक तकनीक से मछली पालन यानी केज कल्चर। केज कल्चर की बात करें तो ये पर्यावरण के अनुकूल है और ये खुले समुद्र में ही किया जाता है, जहां पर लहरों की गति कम होती है। इसके अलावा एक और फायदा है केज कल्चर का। जी हाँ, केज कल्चर की मछलियों की कीमत बाजार में अच्छी प्राप्त होती है, यानी इन्हें कभी भी बाजार में बेचा जा सकता है और अच्छी आय अर्जित की जा सकती है।
1: किसी भी व्यवसाय को सफल बनाने में नई और आधुनिक तकनीक बेहद उपयोगी साबित होती है। मछली व्यवसाय के लिए भी नई तकनीकों का अपना ही फायदा है। इस क्षेत्र के लिए नई तकनीक किसी क्रांति से कम नहीं। नई तकनीकों के माध्यम से मछली पालकों को काफी लाभ हो रहा है और उनकी आमदनी में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। अब उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और वैज्ञानिक इसमें मददगार बन रहे हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी बेहद लाभदायक तकनीक है केज कल्चर। ये मछली पालन की नई तकनीक है, जिसमें जलाशयों में निर्धारित जगह पर फ्लोटिंग ब्लॉक बनाए जाते हैं। सभी ब्लॉक इंटरलिंक रहते हैं। जाली में 100-100 ग्राम वजन की मछलियां पालने के लिए छोड़ी जाती हैं। मछलियों को प्रतिदिन आहार दिया जाता है। फ्लोटिंग ब्लॉक का लगभग 3 मीटर हिस्सा पानी में डूबा रहता है और 1 मीटर ऊपर तैरते हुए दिखाई देता है। केज कल्चर में पंगेशिस प्रजाति की मछली का पालन होता है। 100-100 ग्राम की मछलियां 10 महीनों में 1.25 किलो की हो जाती हैं। बीते कुछ वर्षों से मछली पालक इस कल्चर को ज्यादा अपनाने लगे हैं और उन्हें लाभ भी मिल रहा है। मछली पालन के क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं भी देखी जाती हैं। एक तो जमीन और जलीय संसाधन में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा हो गई है और लागत भी काफी बढ़ गई है। इसके अलावा विदेशी प्रजातियां पालन से मूल किस्मों पर बुरा असर पड़ रहा है और बहुत अधिक बीज संवर्धन करने के कारण बीमारियां भी फैल रही हैं। ऐसे में नई तकनीकों को चुनना ही सरल उपाय है, जिसमें से एक है बायोफ्लॉक तकनीक। इस तकनीक के सहारे कम क्षेत्र में मछलियों का अधिक उत्पादन किया जा सकता है। बायोफ्लॉक दरअसल शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ, अनुपयुक्त खाना और मछली मल से बना होता है। इसमें 60-70% कार्बनिक और 30-40% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। बड़े बायोफ्लॉक नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। मछली पालन में बाहर से दिए गए फीड का 20-30% हिस्सा ही मछलियां उपयोग करती हैं, बाकी बचे पानी में ही रह जाते हैं। इन्हीं बचे हुए कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को बायोफ्लॉक विशेष सूक्ष्म जीवों के जरिए फिर से खाने लायक बना देती है। इस तकनीक से लगातार पानी में ऑक्सीजन मिलता रहता है।
0: मत्स्य पालन तकनीक कई प्रकार की होती है और तटीय क्षेत्र में खेती के लिए सबसे आदर्श है, लेकिन इसे और विकसित करने के लिए और नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हैचरी का विकास भी बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि हैचरी के विकास के लिए कौन कौन से नवाचारों को मत्स्य पालन से जोड़ा जा रहा है और इससे कौन से नए आयाम मत्स्य पालन के क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं।
1: मछली पालन करने के साथ ही मछली बीज उत्पादन हैचरी लगाकर भी किसान भाई अच्छी कमाई कर सकते हैं। बढ़ते मछली पालन के कारण आजकल मछली बीज की अच्छी खासी मांग है। ऐसे में मत्स्य बीज उत्पादन स्वरोजगार का अच्छा माध्यम बन सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार अनुदान भी दे रही है। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान मंडपम के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश कुमार ने इसके बारे में जानकारी दी।
3: Here my discipline is veterinary pathology. I am taking care of fish health status in hatchery as well as in the cage system. So fish is totally depending upon the water environment. So at any stages from larviculture to broodstock, nursery and larvae and grow-out stages, at any stages disease will come. So the water, we have to keep it, the water environment very neat and clean. So the feed return, it is play a major role. So we have to take the feed return properly. Otherwise, there will be getting chances of ammonia formation. So in the rearing system, the larviculture and the nursery system, ammonia formation is the main thing, getting chances of mortality. From the larvae to broodstock, many diseases are coming, disease and disorders are coming. Particularly in hatchery system, they are getting chances of parasitic infestation. There is getting chances of ciliates, protozoal, and other crustacean parasites are the parasitic infestation which affecting in the hatchery system. So for that one, water is the main thing. We have to prevent the ammonia formation. So the other water parameters like temperature, dissolved oxygen, ammonia and salinity, that and all for suit, we have to keep it the water in the suitable for the fish culture. So in cage system, once after completion of the nursery phase, we used to stock in the cage system. When it is going to the open system, getting chances of many infections. So we have to give more immunity or more immune boosting supplements to the fishes in larviculture system. For that, we are giving any vibriosis kind of vaccination.
1: नई नई तकनीकों का फायदा अब केवल खेती में नहीं बल्कि आधुनिक तकनीकों का साथ लेकर मछली पालक भी निश्चित ही सफलता हासिल कर सकते हैं, साथ ही अच्छी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं।
0: यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या है CMFRI की भूमिका, कैसे नई तकनीक से हमारे किसान, हमारे मछली पालक मछली पालन को नए आयाम तक ले जा रहे हैं। जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।

0: मत्स्य पालन के क्षेत्र में CMFRI की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि समंदर की कई ऐसी मछलियों की प्रजातियां हैं जो कि विलुप्ति की ओर हैं। ऐसे में CMFRI की तरफ से ऐसे अनुसंधान किए जा रहे हैं और ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इन प्रजातियों को बचाया जा सके और हमारे मछुआरों की इनकम में वृद्धि भी हो सके। आइए जानते हैं कि इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का क्या कहना है।
1: भारत सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन 3 फरवरी 1947 को केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई और बाद में वर्ष 1967 में संस्थान को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिवार से जोड़ दिया गया। स्थापना के बाद लगभग 65 वर्षों के दौरान संस्थान विश्व में ही अग्रणी उष्णकटिबंधीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बन गया। बीते सालों में संस्थान ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। CMFRI की मुख्य उपलब्धि 8000 किलोमीटर से अधिक होने वाली तटरेखा से मत्स्य की पकड़ एवं प्रयास का आकलन करने के लिए विशेष तरीका, जिसे स्ट्रेटिफाइड मल्टी स्टेट रैंडम सैंपलिंग मेथड कहा जाता है, का विकास एवं शोधन है। इस प्रणाली से संस्थान भारत के सभी समुद्रवर्ती राज्यों से पकड़ी गई 1000 से अधिक प्रजातियों से संबंधित 9 मिलियन पकड़ एवं प्रयास के डाटा रिकॉर्डों सहित कई राष्ट्रीय समुद्री मत्स्यिकी आंकड़ा केंद्र का अनुरक्षण कर रहा है। समुद्री संवर्धन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिसमें MFSC और PhD पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। समुद्री संवर्धन में मानव संपदा का भी सफलतापूर्वक विकास किया गया। CMFRI ने नए क्षेत्रों जैसे समुद्री पखमछली पालन, जैव प्रौद्योगिकी और जैव विविधता में अनुसंधान कार्य शुरू किए हैं। मत्स्य पालन के क्षेत्र में केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान मंडपम के निदेशक ने संस्थान की भूमिका और आने वाले सालों में किन किन मुख्य कार्यों पर संस्थान का फोकस रहेगा, इसके बारे में विस्तार से बताया। आइए जानते हैं।
2: The ICAR Central Marine Fisheries Research Institute is one of the premier fisheries research institute of the Indian Council of Agricultural Research. The CMFRI was initially started at Madras in the year 1947 and subsequently it was shifted to Mandapam camp in the year 1949 and then it continued to function as the CMFRI headquarters till 1971, and in 1971 the headquarters was shifted to Kochi in Kerala. In 1967, this institute, CMFRI, came under the aegis of the Indian Council of Agricultural Research. Now, Mandapam Regional Center is one of the oldest and the largest regional center of ICAR, Central Marine Fisheries Research Institute.
1: संस्थान ने तटीय आवास तंत्र और मछुआरों पर बुरा असर डालने वाले जलवायु परिवर्तन मुद्दों का संबोधन किया। समुद्री प्रग्रहण एवं पालन मत्स्यिकी में संस्थान के बहु विषयक पहल से विश्व के किसी भी सुव्यवस्थित समुद्री प्रयोगशाला की तुलना में अग्रणी संस्थान की मान्यता प्राप्त हुई है।
2: The center has achieved significant breakthrough in breeding two very important commercially important food fishes. One is the cobia, Rhachicentron canadum, and the silver pompano, Trachinotus blotchi. So these are the two important fishes which the center has bred. And we continue to work on standardization of captive breeding and seed production of many of the commercially important food fish resources. The center also focuses on the studies on fishery environment and also on marine biodiversity, particularly on the coral reef ecosystem, the mangrove ecosystems, and also on the protected species, the marine protected species. Another important aspect is when we talk about the seaweed farming as well as the captive breeding for seed production of commercially important food fishes, because the grow out of food fishes is mainly done in marine cages, the open sea cages. So along with that, we are trying to integrate the seaweed farming, which is popularly called as the integrated multi-trophic aquaculture, that is rearing fishes in open sea cages. And so in association to that, we are also having the rafts of seaweeds, so that a combination of fish rearing and seaweed farming is done. The focus for the next 1 year would be in the front of capture fisheries. We'll be focusing on the stock assessment and population dynamics of some of the important commercial aviary food fishes and shell fishes which are not attempted so far. And in fishery environment and biodiversity, like we are working on the jellyfish swarming dynamics. We have been working, this particular project has been on for the last 6 years, and we continue to work on the swarming dynamics of jellyfishes.
1: केंद्रीय समुद्री मत्स्यकी अनुसंधान संस्थान मंडबम के निदेशक ने बताया कि यह संस्थान नई तकनीकों पर काम कर रहा है जो कि किसी भी संस्थान को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण है.
0: पारंपरिक तरीके से समुद्र में फिशिंग यहाँ के लोगों की आय का मुख्य साधन रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में मछलियों की संख्या तटीय क्षेत्रों में घटने लगी, जिसकी वजह से मछुआरों की आय पर भी आशंका के बादल मंडराने लगे. आइए अब आपको बताते हैं कि सरकार की तरफ से जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं उससे मछुआरों को किस तरह से लाभ हो रहा है और इसको लेकर वो क्या कहते हैं.
1: इस संस्थान द्वारा विलुप्त हो रही मछलियों को बचाने के उद्देश्य से कई कार्य किए जा रहे हैं. ब्रूडस्टॉक प्रबंधन के माध्यम से यहाँ कार्य कर रहे वैज्ञानिक इन प्रजातियों को सुरक्षा दे रहे हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.
3: फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर कोबिया एंड सिल्वर पंपानो वर डेवलप्ड हियर. And these fishes, they have a very high and fast growth rate, and also it has a very good market. So we produce the seeds and the farmers are taking the seeds from us and they are farming in their cages and the coastal ponds. This is a endemic species of this Gulf of Mannar and Park Bay. We carry out this activity to enhance the stock in the wild. We produce the post larvae and ranch them in the Gulf of Mannar and Park Bay, which is the natural environment for this shrimp, and they grow in their natural environment and they are caught by the fishermen.
1: मत्स्य पालन क्षेत्र 2,80,00,000 लोगों को रोजगार दे रहा है. इसमें समुद्र से मछलियां पकड़ने वाले मछुआरे भी शामिल हैं और तालाबों में मछली पालन कर रहे किसान भी. मछली उत्पादन व्यवसाय दिनों दिन लोकप्रिय होता भी शामिल है और तालाबों में मछली पालन कर रहे किसान भी. मछली उत्पादन व्यवसाय दिनों दिन लोकप्रिय होता जा रहा है. कारण अपार संभावनाएं. दुनिया भर में लगभग 500 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए मत्स्य पालन पर निर्भर हैं. बीते वर्षों में मछली उत्पादन में वार्षिक बढ़ोतरी देखी गई है. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश में मछली व्यवसाय का भविष्य उज्जवल है.
4: हूँ से आरजे राकेश
5: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
4: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर. तो किसान भाइयों हमने आपुई वात हामली मछली पालन एतरे मासला पालवानी वातियो बदी वातियो आपुन कृषि था जोड़ायला विशेषज्ञ अने अनुभवी लोगों ही बताड़ी हाथे हाथ एक एवा किसान भाई तीनों नी स्टोरी आपड़ी वसमा साझा करी के केवी रीते मासला पालवानी खेती करी ने त्या घणो असल अने मोटो मुनाफा कमाई रहा छे. किसान भाइयों जेवी रीते पानी पड़ी गयो से अने नाना नाना बांध मा पण आपू माछलाना बी सोड़ी ने घणो असल अने मोटो मुनाफा कमाई सकी. किसान भाइयों कार्यक्रम ने अगाड़ी बढ़ावी अने हाव हामलवाना से आपू झींगा पालन एतरे माछला पालवानी खाते हाथ आपू घेसा पाली सकी अने इनुथी पण घणो असल अने मोटो मुनाफो नजर आवे से. कार्यक्रम मा बन्या रहेजो जाजोमती कहता हामलता रहेजो रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबवानी आवाज.
6: दोस्तों सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको देश के कोने कोने से ऐसे किसान प्रतिभाओं से मिलवाते हैं जो खेती किसानी में कुछ नया कर रहे हैं. सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें किसान भाइयों की ऐसी कहानियों को हम लेकर आते हैं जिससे किसानों को प्रेरणा मिल सके, आगे आकर वो खेती किसानी में अपार संभावनाओं का फायदा उठाकर कुछ नया स्थापित कर सके और अपनी आय को बढ़ाने के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के किसानों को प्रेरणा भी दे सके. आज हम आपको गुजरात के नवसारी के एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने मछली पालन के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है. जी हाँ, इस किसान ने मछली पालन और झींगा पालन में एक नया विकास कर नया आयाम स्थापित किया है. तो चलिए इस दास्तान को आगे बढ़ाते हैं.
7: गुजरात खेती के साथ मछली पालन के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि राज्य की समुद्र तट की लंबाई करीब 1214.7 किलोमीटर है, जो कुल समुद्र तट का लगभग 23% भाग कवर करता है। और यही तटरेखा यहाँ किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करती है। हालांकि ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहां पर्याप्त पानी ना होने के कारण किसान बारिश के पानी का सही इस्तेमाल कर मछली पालन को सफल बना रहे हैं। हमारे आज के सफल मछली पालक भी ऐसे ही हैं, जो समुद्र के पानी का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो बारिश के पानी का संचय कर उसमें मछली व झींगा पालन करते हैं। रोहित पटेल इस समय करीब 40 एकड़ में मछली व झींगा पालन कर रहे हैं। वो मुख्य रूप से देसी नस्लों की मछलियां, जिनमें रोहू, कतला, मृगल पालते हैं। उनका मानना है कि देसी प्रजाति की मछलियां आसानी से ढलकर विकास कर लेती हैं। इनका वजन तेजी से बढ़ता है, इससे कम समय में बढ़िया मुनाफा मिल जाता है।
8: यहाँ हम 40 एकड़ में मछली पालन कर रहे हैं और यहाँ पानी का थोड़ा दूसरा कोई सोर्स है नहीं बारिश के अलावा। इसके लिए पहले हमको एक साल का ये लिंक बनाना पड़ता है, उसके बाद स्टॉकिंग पॉइंट में हम लोग स्टॉक करते हैं, तो 6-8 महीने में वो एक मार्केटेबल साइज हो जाता है।
6: सफलता की

0: इस दास्तान को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं मछली पालन पर एक खास रिपोर्ट के बारे में।
1: मछली भारत में भोजन, पोषण, रोजगार व आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मछली पालन क्षेत्र संभावनाओं से भरा है। प्राथमिक स्तर पर ये क्षेत्र करीब 2.8 करोड़ से अधिक मछुआरों और मत्स्य पालकों को आजीविका, रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करता है। मछली उत्पादन पिछले 75 वर्षों में 22 गुना की वृद्धि के साथ एक व्यावसायिक उद्यम में बदल गया है। साल 1950 से 51 में मात्र 7.5 लाख टन से शुरू हुआ भारत का कुल मछली उत्पादन 2021 से 22 में रिकॉर्ड 162.48 लाख टन प्रति वर्ष तक पहुंच गया है। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है।
0: कि देश हमारा मछली पालन के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ रहा है, कैसे किसान भाई इस क्षेत्र से जुड़कर भी अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की तरफ वापस रुख करते हैं और जानते हैं रोहित जी की तालाब में मछली पालन के नई तकनीकों के बारे में।
1: रोहित जी करीब 40 एकड़ में मछली पालन कर रहे हैं, जिसमें इनका हर तालाब करीब 1 एकड़ का है। उनके तालाब में मछलियां महज 5 से 6 माह में ही तैयार हो जाती हैं, क्योंकि सही विकास के लिए वो हेचरी से मछलियों का बीज लेते हैं। इसके बाद उन्हें 1 साल तक पॉन्ड में रखते हैं और जब इन मछलियों के वजन करीब 100 ग्राम तक हो जाते हैं तो इन्हें मुख्य तालाब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां से मछलियां 6 माह में 1 से 1.5 किलो वजन ले लेती हैं और यही वो समय होता है जब ये बाजार भेजने के लिए तैयार है। लेकिन इन सारी प्रक्रिया के बीच इनके आहार का खास ख्याल रखा जाता है, साथ ही उन सारे पहलुओं को अपनाया जाता है जिससे मछलियों में बीमारी ना फैले।
2: इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं आता है, आरग्यूएस का कभी कभी प्रॉब्लम, हाई डेंसिटी स्टॉकिंग करते हैं तब आता है प्रॉब्लम, है तो फिशरीज वाला थोड़ा मदद करते हैं, 6-8 महीने में वो एक मार्केटेबल साइज हो जाता है, साइज 1 किलो 1.5 किलो तक हो जाता है और मार्केट 150 रुपये केजी पर लेके जाते हैं।
0: दोस्तों, सफल किसान के इस कार्यक्रम में अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे झींगा पालन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप बने रहें कार्यक्रम सफल किसान।

0: vas.
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि झींगा पालन को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मछली पालकों को ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे उनका उत्पादन भी बढ़ेगा और उनकी आय भी बढ़ेगी।
2: रोहित जी मछली पालन के साथ साथ झींगा पालन भी करते हैं। हालांकि झींगों के लिए उन्होंने अलग से तालाब बनवाए हैं। करीब 5 हेक्टेयर के एरिया में झींगे पल रहे हैं, जिसमें एक एक हेक्टेयर का एक तालाब है। वो बताते हैं कि झींगा पालन के लिए उन्होंने जमीन लीज पर ली है, क्योंकि जिन तालाब में मछली पालन किया जा रहा है वहाँ झींगे नहीं पाले जा रहे। रोहित इसके पीछे रख रखाव के तरीकों में अंतर को वजह बताते हैं। उनके तालाब में टाइगर प्रजाति की झींगों को पाला जा रहा है, जिनकी बाजार में अच्छी मांग है।
3: जिला कलेक्टर 5 हेक्टर मेरे को जमीन लीज पे दिया हुआ है 20 साल के लिए। उसमें हम झींगा उच्छेद की प्रवृत्ति कर रहे हैं।
4: रोहित भाई के फार्म पे झींगा फार्मिंग चलता है। इधर टाइगर झींगा है, उसका प्रोसेसिंग 4 महीने जितना है, 4 महीने में पाकर तैयार हो जाता है, बाद में हार्वेस्टिंग होता है। इधर में 10 तालाब है। एक तालाब 100 मीटर बाय 100 मीटर का है। एक तालाब में कम से कम 6 एरेटर लगा हुआ है। वो पूरा पानी का सर्कुलेशन करता है, बाद में खुराक डालने का पहले सेंटर में जो कचरा जमा होता है उसको पंप से निकाल देते हैं, बाद में खुराक डालते हैं। ऐसा करके 4 महीने का प्रोसेस है झींगा फार्मिंग का। तो युवा लोग के लिए बहुत अच्छा है, इनकम के लिए ये सारा ये बिजनेस बहुत अच्छा है झींगा फार्मिंग का।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और झींगा पालन को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में जान लेते हैं।
2: हमारे देश में इसे शुरू करने के लिए स्थान का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। हालांकि हमारे देश में तटीय इलाकों और तालाबों में इनका पालन आसानी से किया जा सकता है, लेकिन तकनीकों की सहायता से अब किसान इसे खेतों में भी कर सकते हैं। विशेषज्ञ की माने तो एक बार के पालन में 3 से 4 लाख प्रति हेक्टेयर का मुनाफा कमाया जा सकता है। झींगों को भोजन के रूप में 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी भोजन देना फायदेमंद होता है।
3: झींगा कल्चर में उसको 4 टाइम खाना देना पड़ता है और 4 टाइम उसका चैप्टर देखना पड़ता है। और फार्म में कोई एंटर करेगा तो उसको KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से बात लेना पड़ता है।
2: इसे छोटे पैमाने पर शुरू करने के लिए सबसे पहले तालाब की नर्सरी तैयार करनी होती है। इसके लिए तालाब का पूरा पानी निकालकर उसको अच्छी तरह से सुखा लें। इसके बाद एक जुताई कर तालाब में 1 मीटर की गहराई तक पानी भरें। इसके बाद नर्सरी में लगभग

0: 20,000 बीज डाले। हालांकि इनका संचयन मुख्य रूप से अप्रैल जुलाई माह में ठीक रहता है। साथ ही इस समय भोजन के रूप में सूजी, मैदा व अंडा को एक साथ मिलाकर दें। इस तरह बीज से निकलने वाले लार्वों को करीब 45 दिनों तक रहने दें। इस दौरान ये लार्वा शिशु झींगों में बदल जाते हैं और इस समय इनका वजन करीब 3 से 4 ग्राम तक का हो जाता है। बस यही वो समय होता है जब इन शिशु झींगों को मुख्य तालाब में छोड़ा जा सकता है। इस दौरान किसान या पशुपालक चाहे तो झींगों के साथ देसी मछली पालन भी कर सकते हैं।
1: एक हेक्टर बनाने के लिए 1.5 लाख तक वो बनाने का खर्चा हो जाता है। उसके बाद आउटलेट, इनलेट और एरेटर का ऐसा 3-3.5 लाख तक का एक तालाब बनाने में खर्चा लग जाता है। और हम लोग, हमारा खाड़ी खलाई क्रीक पड़ता है, उधर सिचुएशन के हिसाब से हमको फरवरी में स्टॉक करना पड़ता है और बारिश आएगा उसके बाद हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो 4 महीने का हार्वेस्टिंग कल्चर है, उसमें एरेटर, लेबर और फीड सीड का ये सब खर्चा मिलके 20% तक मिल जाता है।
2: दोस्तों, मछली पालन हो या झींगा पालन हो, तालाब में ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं रोहित जी से कि मछली पालन के और झींगा पालन के इस क्षेत्र में उन्होंने अपने तालाबों में ऑक्सीजन का लेवल कैसे मेंटेन किया है और बाकी किसानों के लिए वो क्या कुछ सलाह दे रहे हैं। अगर आप भी मछली पालन करना चाहते हैं तो इस चीज पर आपको बहुत बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है।
0: स्थित इन तालाबों के किनारे आप जो मशीनें देख रहे हैं, इन्हें एरिएटर कहते हैं। ये तालाब में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। आमतौर पर एरिएटर को समय समय पर चलाते रहना चाहिए, लेकिन अगर आसमान में बादल छाने पर तालाब में जाकर देखें कि मछलियां पानी से बाहर मुंह तो नहीं निकाल रही, अगर ऐसा है तो ये पानी में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण हैं। ऐसे में तालाब में ऊंचाई से पानी गिराएं या ऑक्सीजन एरिएटर दिन में 2 से 3 बार चलाएं। इसका एक और फायदा है कि अगर तालाब में गंदगी एकत्रित हो गई है तो एरिएटर की सहायता से उसे आसानी से निकाला जा सकता है। इसके साथ ही मछली पालकों को चाहिए कि तालाब में जल स्तर को बनाए रखें, जिससे मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके।
1: ट्रैक्टर देखने के बाद हम लोग एरेटर चलाते हैं, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने के लिए एरेटर चलाते हैं। 4 टाइम फीड डालते हैं और उसके बाद वो कितना कंज्यूम हो गया वो देखने के बाद फिर एरेटर चलाते हैं। एरेटर घूमता है तो उसका स्लज सेंटर एरिया में जमा हो जाता है, वो हम स्लज पंप से फिर बाहर निकालते हैं।
2: दोस्तों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कैसे एक सफल मछली पालक मछली पालन क्षेत्र से जुड़कर कितना मुनाफा कमा सकता है और रोहित जी सालाना कितना मुनाफा कमा रहे हैं। आप बने रहें।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मछली पालन में अपार संभावनाएं हैं, अच्छा खासा मुनाफा किसान भाई से कमा सकते हैं। आइए अब जानते हैं रोहित जी के सालाना मुनाफे के गणित के बारे में।

0: इतने बड़े पैमाने पर मछली व झींगा पालन करने के लिए रोहित जी ने कई लोगों को काम पर रखा है, जो तालाब में आहार डालने से लेकर इन्हें बाजार भेजने तक की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। रोहित बताते हैं कि उनके यहाँ तैयार मछलियाँ बाजार में करीब 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची जाती हैं। एक तालाब से उन्हें 2 से 2.5 क्विंटल तक उत्पादन मिल जाते हैं। इसके अलावा झींगा पालन से भी बढ़िया आय हो जाती है। सालाना आय को देखा जाए तो रोहित जी की आय करीब 1.5 करोड़ जाती है। माल बेचने के लिए भी रोहित को मशक्कत नहीं करनी पड़ती। उनका माल सप्लायर के माध्यम से एक्सपोर्ट किया जाता है।
1: मार्केट तो एक्सपोर्ट क्वालिटी है, इसलिए एक्सपोर्ट तो को ही देना पड़ता है। हम लोग फार्मर है, इसलिए कल्चर करके उसको सप्लायर को देते हैं, सप्लायर फिर एक्सपोर्टर को देते हैं। गत साल हम लोग हार्वेस्टिंग किया था, उस टाइम 460 का रेट मिला था। हाँ, उसमें थोड़ा प्रॉफिट 50% तक रहता है, और 1 पाउंड में 3 टन तक, 3-4 टन ऐसा प्रोडक्शन निकलता है, और 150 रेट पर केजी मिलता है। और दूसरा हमारा फार्म है फ्रेश वाटर का, यहाँ हम फिश का कल्चर करते हैं, और उसके लिए जो छोटा बच्चा है वो हम हेचरी से लेके आते हैं, और उसको पहले 1 साल तक 1 पाउंड में रखता है, और 100 ग्राम का हो जाएगा उसके बाद उसको कल्चर पॉन्ड में ट्रांसफर करते हैं। वहाँ 6 महीना तक उसको फीडिंग कराना पड़ता है और पानी का लेवल मेंटेन करना पड़ता है, तो 6 महीने में वो 1 किलो तक हो जाता है। हमारे पास अभी 40 पॉन्ड है, लेकिन 20 पॉन्ड में ही हम लोग कल्चर कर पाते हैं, क्योंकि पूरा साल हमारे पास पानी का दूसरा कोई सोर्स नहीं है, कैनाल वाटर का फैसिलिटी नहीं है, बोर में थोड़ा सलाइन वाटर है, इसलिए बारिश का पानी से ही हम लोग फ्रेश वाटर फिशरी मछली पालन कर रहे हैं। और बनाने का तो खर्चा 1.5 लाख तक हो जाता है 1 पॉन्ड बनाने में, और उसमें इनलेट आउटलेट और फीस का सीड और फीड लेबर सब मिला के इतना 50% तक रह जाता है, तो 1 तालाब में 3-3.5 लाख 4 लाख तक का प्रोडक्शन होता है।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है साहित्य और संगीत की दुनिया का बहुरंगी रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी संवेदनशील रचनाकार मौजूद हैं जिन्होंने जीवन की साधारण भूमिकाओं को अपनी असाधारण ताकत बनाया है। एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ और एक गृहिणी, इन्हीं अनुभवों की मिट्टी से जन्मी एक सशक्त कवित्री और लेखिका अनिजय वर्गी जी। इनकी लेखनी में रिश्तों की गर्माहट है, प्रेम की अनुभूतियां हैं और जीवन के अनगिनत रंग हैं। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच में अपने लिए समय निकालकर इन्होंने लिखना शुरू किया और धीरे धीरे साहित्य की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इनकी कविताएं सदा संकलनों, शब्द शब्द कस्तूरी, नारी आदि में प्रकाशित हो चुकी हैं। महिला काव्य मंच, राष्ट्रीय शब्द और राग समूह, प्रहरी मंच और परसाई मंच जैसे साहित्यिक मंचों से जुड़कर इन्होंने मुंबई की साहित्यिक दुनिया में अपनी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। इनकी आगामी पुस्तक करची से कलम तक केवल एक शीर्षक नहीं बल्कि एक स्त्री की खूबसूरत रचनात्मक यात्रा की कहानी है। कविता के साथ साथ कथक और मधुबनी कला में भी इनकी गहरी रुचि है। तो आइए आज मिलते हैं उस संवेदनशील कलम से जो जीवन के हर भाव को शब्दों में पिरोना जानती है। हम स्वागत करते हैं कवित्री और लेखिका अनिता विजय वर्गी जी का। अनिता जी का आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आलोक जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत अभिभूत हूँ आज रेडियो पर आकर, लगता है बहुत ही मजा आने वाला है।
1: बिल्कुल बिल्कुल अनिता जी, आपने हमारे दिल की बात कह दी, बिल्कुल मजा आने वाला है। आपकी आवाज सुन के ही हमको बहुत अच्छा लग गया है। तो चलिए शुरुआत फिर शुरुआत से करते हैं, और शुरुआत आपके बचपन से ही कर लेते हैं। तो बताइए अनिता जी, कैसा आपका बचपन, पारिवारिक परिवेश कैसा था, कुछ अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में श्रोताओं को बताइए, कहाँ बड़ी कहाँ पली बड़ी हैं आप।
2: जी जी, बचपन का नाम आते ही ये दो पंक्तियां मेरे दिल में आती हैं कि निर्भय, निश्चल, बेफिक्रा, प्यारा सा भोला बचपन, खो जाता यादों में इसकी, मेरे मेरा बावरा सा ये मन। तो बचपन तो किसी का भी हो, आपका, मेरा, हम सब का, हम बचपन की गलियों में ऐसे खो से जाते हैं। तो बचपन की जो आपने बात कही है, तो बचपन मेरा राजस्थान के अलग अलग शहरों में बीता, और बहुत ही कभी बड़ा शहर था, कभी हम छोटे शहर में गए, गांव में गए, तो कभी हमने खेत खलिहान देखे, तो कभी हमने शहर देखे, तो इस तरह से हमारा बचपन बीता।
1: तो अनिता जी, अब ये बताइए कि आपने बचपन के बारे में बताया, आपकी जगह जगह शिक्षा हुई, तो क्या बचपन से ही साहित्य, कविता या कला या लिटरेचर की ओर आपका झुकाव था, या रुचि ये बाद में विकसित हुई, कुछ इसके बारे में बताइए, कैसे आपका शुरुआत।
2: जी, बचपन में तो साहित्य की तरफ इतना रुझान नहीं था, और मतलब घर में भी कोई ऐसा विशेष साहित्यिक माहौल नहीं था। हाँ, मेरा नृत्य और पेंटिंग इस तरफ काफी, कला की तरफ इस तरह की काफी झुकाव रहा, लेकिन साहित्य के प्रति रुचि बाद में विकसित हुई।
1: जी, तो अब ये बताइए, आप कई तरह के रोल निभा रही हैं, आप एक बेटी भी थी शुरू में, पत्नी माँ गृहिणी के रूप में। तो ये कैसे आपको अनुभव रहे इस सारे दौर में, और इसके साथ में आपकी साहित्यिक यात्रा भी शुरू होती रही, और फिर
2: जी
1: आपने
2: जी
1: बंबई की यात्रा आपकी कैसे शुरू, इसके बारे में बताइए, तो थोड़ा सा हम आगे चलें।
2: मैं ये कहूंगी कि स्त्री का ये नैसर्गिक स्वभाव ही है कि वो अलग अलग रूपों में ढल जाती है, कभी बेटी, कभी बहू, कभी पत्नी, कभी बहन, कभी गृहिणी, हर रूप में ढल जाना उसकी प्रकृति होती है। और उसके हृदय की मरुधरा पे हर नया रिश्ता अंकुरित होता है, जिसको वो अपने प्रेम से सींचती रहती है जीवन भर। लेकिन ये जो उसका जीवन पूरा इसी तरह से व्यतीत होता है, जब जीवन के उत्तरोत्तर समय में जब वो एक थेरेपी आती है 40+ 50 पर मिडिल एज में, तब जाके वो मुड़ के देखते हैं तो उसे एहसास होता है कि उसने किन किन रूपों को इस तरह से जिया है। और वो ये सारे एहसास उसको बाद में होते हैं, पहले तो वो सब रोल निभाती रहती है, उसे खुद को नहीं पता होता है कि वो क्या निभा रही है, लेकिन उसके उत्तरोत्तर जीवन में जब देखती है तब उसे समझ आता है। तो मैंने जो ये मिडिल एज्ड वुमेन होती हैं, उन्हीं को मैंने सांझ सी औरतें नाम दिया है। वो जीवन के सांझ की तरह होती हैं, तो सांझ सी औरतें, तो उन्हीं के ऊपर आपका जो प्रश्न है ना, उसका जवाब इस कविता में आपको जरूर मिलेगा। तो मैं
1: हाँ,
2: आपके
1: स्वागत।
2: सामने पढ़ना चाहूंगी। अक्सर चलते चलते यूं रुक सी जाती हैं, मुड़कर ठहरना नहीं जानती, ये सांझ सी औरतें ढलना नहीं जानती। एक ही जीवन में कई जन्मों के रंग समेटे, बिखरना नहीं जानती, ये सांझ सी औरतें क्या क्या नहीं जानती। टूटती हैं, बिखरती हैं, फिर जन्म लेती हैं और सवर जाती हैं हर जन्म के साथ। उम्र के उत्कर्ष में हर पड़ाव पर लेती हैं नया जन्म, बार बार हर बार निसार होना जानती हैं ये सांझ सी औरतें, बीमार होना नहीं जानती। पहला जन्म हूं जब माँ ने छुआ, और दूसरा जब स्वयं माँ बनी, न जाने इस दौरान वह खुद कितनी बार जन्मी, बाबुल के आंगन से पिया की दहलीज तक न जाने कितने किस्सों की साक्षी बनी, और हर बार निखर आई नए रंगों में। ससुराल में धीरे धीरे सबके मन को छुआ, अनगिनत रिवाजों में दबी छुपी आवाजों में हजार बार गिरी और संभली, हर तजुर्बे का रंग अपने चेहरे पर ओढ़े दरिया की धार सी औरतें अधिकार नहीं जानती। हर ऊंच नीच से वाकिफ, दर्द को अपने आंचल में समेटे इनकार नहीं जानती ये सांझ सी औरतें क्या क्या नहीं जानती। जी
1: भाई मजा आ गया। आपने तो एक तरह का पूरा शब्द चित्र खींच दिया हमारे सामने भारतीय महिलाओं का, और जिस तरह की ये सांझ का से जो आपने इसको कंपेयर किया है और बताया है, बहुत बहुत सुंदर। और मैं तो कहूंगा कि जो हमारी भारतीय महिलाओं का जीवन है किस तरह से, और जो ये नैसर्गिक शब्द आपने यूज किया है ना, कि उनकी एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है, एक नैसर्गिक एबिलिटी होती है, कि आपने इन सारे रोल्स में वो इतना स्मूथली ट्रांसफॉर्म कर जाती हैं एक रोल से दूसरी और की तरफ। तो ये बात सुन के और इस कविता में जिस तरह से आपने इसको पिरोया है, बहुत मजा आ गया। बस
2: धन्यवाद।
1: तो मैं आपसे एक गाने के लिए एक हम रुकना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए आप कि बम्बई आप कैसे पहुंच गई राजस्थान से।
2: ये तो मुंबई तक तो या तो लोग हीरो हीरोइन बनने पहुंचते हैं और मैं इसलिए
1: आप भी
2: पहुंची।
1: ऐसे ही पहुंची थी क्या? आपका क्या
2: जी
1: प्लान था वहां
2: जी नहीं नहीं नहीं
1: जाके?
2: जी नहीं, ऐसा नहीं। वो बोलते हैं ना कि बस जहाँ पिया का घर होता है वही अपना घर होता है, तो मेरे
1: चलिए
2: पति
1: चलिए
2: यहाँ पर काम कर रहे थे तो शादी के बाद मैं मुंबई आ गई। जी
1: चलिए चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो चलिए, तो आपने पिया के घर की बात करती है, मेरे ख्याल में तो ये जया भादुड़ी की कोई पिक्चर थी, तो क्यों नहीं आज
2: बिल्कुल
1: उसी का गाना सुन लेते हैं, आपका पिया का घर का ही गाना
2: बिल्कुल
1: सुन लेते हैं ना। तो हम
2: बिल्कुल
1: थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर आगे का सवाल में लेके आता हूँ।

0: हाँ, वेलकम बैक अनीता जी। अब
1: जी
0: शुरुआत करते हैं, थोड़ी आपकी कविता और लेखन की बातचीतें करते हैं। तो अब ये बताइए अनीता जी, की कविता से आपका रिश्ता कब और कैसे शुरू हुआ, और यह वो कौन सा ऐसा क्षण था जिसने आपको कलम उठाने के लिए प्रेरित किया? मतलब कभी कभी ट्रिगर होता है लाइफ में कि भाई इसकी वजह
1: जी
0: से मैं लेखन में मेरा जुड़ा हुआ। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, घटना भी हो
1: जी
0: सकती है, कोई अपना
1: जी
0: भी हो सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए।
1: जी हाँ, ये ना आलोक जी, ये बहुत ही रोचक एक संस्मरण है, एक
0: जी
1: घटना है, जो कि कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है।
0: जी
1: तो हुआ यूं कि मेरी जो बेटी है उसके स्कूल में हिंदी विषय का एक प्रोजेक्ट दिया गया बच्चों को,
0: ओके
1: और उसमें उनको डाकिया पर सब कुछ करना था। उन्हें डाक टिकट चिपकानी थी, उन्हें डाकिया की फोटो मतलब लगानी थी, और एक कविता उन्हें हिंदी में डाकिये पे लिखनी थी।
0: ओके
1: तो
0: अच्छा
1: और चूंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और मुंबई में हिंदी जो है,
0: हाँ,
1: आप जानते हैं मुंबई में बच्चों को कितनी
0: मैं बेवकूफा,
1: हिंदी
0: हिंदी का,
1: पढ़ाई
0: हिंदी में हाथ
1: जाती है।
0: तंग है थोड़ा, बिल्कुल
1: हाँ,
0: सही
1: तो
0: बात।
1: वो लाजमी था कि मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प करती।
0: हाँ
1: तो उस वजह से वो जो कविता लिखनी थी उस तब मैंने कलम उठाई और मैंने वो कविता लिखी, और उस कविता की चार पंक्तियां मुझे आज भी याद हैं।
0: सुनाइए।
1: हाँ बिल्कुल, तो ये कविता थी डाकिये को समर्पित। सूनी पगडंडी पर थी उनकी नजर, सूनी पगडंडी पर थी उनकी नजर, शायद कोई आए इस डगर। तभी साइकिल की घंटी बजाता डाकिया आया, लगता है आज सरहद पार से फौजी ने संदेशा भिजवाया। फौजियों के
0: अच्छा
1: साथ साथ डाकिये को भी सलाम, जो करते हैं दिलों को जोड़ने का काम। तो ये छोटी सी कविता मैंने डाकियों उनके लिए, पोस्टमैन के लिए लिखी थी, और मतलब लिखनी पड़ी थी क्योंकि वो प्रोजेक्ट में देनी थी। तो इस तरह से कलम हाथ में आई, और जब उसके फ्रेंड्स वगैरह ने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो आपने बहुत अच्छा लिखा है, आप लिख सकती हो, मतलब आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप और अच्छा लिख सकते हो, तो आप लिखा करो। तो वो भी यात्रा वहां शुरू नहीं हुई क्योंकि तब बच्चे छोटे थे और बड़े भी परिवार में थे, तो उनकी जिम्मेदारियों के बीच में वो लेखन को कहीं पंख मिले नहीं। फिर बाद में जब थोड़े बच्चे बड़े हुए उसके बाद मैंने लिखना वापस से शुरू किया।
0: वाह, बहुत सुंदर। ये बात तो बहुत सही है, लेकिन आपने जो करेक्टर पहला लिया था डाकिया, अब तो वो बिल्कुल विलुप्त प्राय सा ही हो गया है। ना
1: जी
0: डाकिया रह
1: जी
0: गया है, ना लेटर बॉक्स रह गए। लेटर बॉक्स भी नहीं
1: जी
0: दिखते अब तो कहीं भी,
1: हाँ, अब
0: जबकि
1: तो
0: वो किसी
1: हाँ
0: जमाने में तो डाकिया आया करता था। अब जब से कोरियर
1: भाई,
0: आने शुरू हो गए तब तो बात ही खत्म हो गई।
1: हाँ, तो वो जो कहते हैं ना खतों की महक एक अलग ही हुआ करती थी उस जमाने में।
0: बिल्कुल सही बात है। तो आप ये बताइए कि जब आपने कविताएं लिखना शुरू की, तो आपने जब अपनी पहली रचना कभी किसी को सुनाई होगी, तब कैसे प्रतिक्रिया मिली? मतलब जब आपने और लिख
1: जी
0: दिया, ये
1: जी
0: मान लिया पहली कविता तो ये डाकिया पे हो गई, इसके
1: हाँ
0: अलावा
1: हाँ
0: जब आपने और, तो आपने विषय का चुनाव कैसे किया कि भाई मैं ये विषय लूंगी, ये लूंगी, कुछ बताइए
1: तो
0: इसके बारे में।
1: नहीं, ये तो मतलब ऐसे होता है ना कि जब बच्चा चलना शुरू करता है तो हमें याद भी नहीं होता कि उसने कब चलना शुरू कर दिया। तो वैसे ही ये जो है कविताओं की यात्रा है कि हम मतलब प्लान नहीं किया होता है कि हम पहली कविता का क्या विषय लेंगे, या ये सब स्वतः ही होता चला गया। तो ये जो सबसे पहली बार हुआ वो क्योंकि मुझे करना पड़ा इसलिए मुझे याद था, उसके बाद जो आगे क्या विषय होगा कैसे होगा वो अपने आप ही होता चला गया।
0: चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपके इस डाकिए पे रुक के हम एक अच्छा सा डाकिए वाला गाना सुन लेते हैं और फिर आगे इस बातचीत को जारी
1: जी
0: करते
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: वेलकम बैक अनिता जी।
1: जी जी
0: अभी थोड़ा आते हैं आपके मुंबई के साहित्यिक जगत के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, कोई छोटा शहर होता है, वहां अपनी पहचान बनाना फिर भी रिलेटिवली इजी होता है, लेकिन मुंबई जैसे साहित्य जगत में आपने इतने मंचों पर काव्य पाठ भी किया है, इतनी संकलन में आपका प्रकाशन भी हुआ है, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें कि वहां किस तरह से आपने अपनी पहुंच बनाई, किस तरह से पहली बार वहां गई, आपको कौन लेके गया, कुछ ऐसी बातें बताइए हमें।
1: जी जी तो जैसे जब भी आप किसी चीज से जुड़ते हैं ना, तो रास्ते अपने आप ही खुलते चले जाते हैं। तो वही यहाँ मुंबई में भी वैसा ही हुआ। और मुंबई में भी जब तक मैं साहित्य से मेरा कोई जुड़ाव नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर इतना सब कुछ, मतलब हिंदी साहित्य भी इतना समृद्ध है। तो हाँ, तो धीरे धीरे, मतलब जैसे ओपन माइक्स में आप परफॉर्म करते हो, वहां पर आप जाते हो, वहां पर आपसे लोग जुड़ते हैं, फिर वो किसी और जगह पर आपको बुलाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके एक चेन बन जाती है और आप नए लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो महिला काव्य मंच के अध्यक्ष हैं, अलका अग्रवाल जी सिकदिया, वो व्यंगकार हैं काफी नामी, तो उन्होंने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा और उसके बाद काफी चीजों से हम जुड़ते चले गए।
0: तो इस महिला काव्य मंच, राष्ट्रीय शब्द और राग समूह जैसे मंचों से आप जुड़ी, तो यहाँ क्या क्या फॉर्मेट क्या होता है, जैसे आप सब लोग अपनी अपनी कविताएं पढ़ते हैं या क्या,
1: तरह
0: किस तरह से सब लोग, क्या सिस्टम होता है?
1: से जी, जैसे महिला काव्य मंच और ये जितने भी मंच हैं, वो एक्चुअली कोविड के बाद में काफी सक्रिय हो गए, क्योंकि कोविड के बाद लोगों को लगा कि हमें अपने फुर्सत के क्षणों में किस तरह से, मतलब लोगों से कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तो ऑनलाइन ही गोष्ठियां होने लगी और ऑनलाइन ही काफी कुछ एक्टिविटीज होने लगी। तो ये जितने भी इस तरह के ग्रुप्स हैं, वो काफी एक्टिव हो गए। तो उनका फॉर्मेट यही होता है कि महिला काव्य मंच में तो महिलाएं हैं, चाहे वो 4 साल की हो, चाहे वो 80 साल की हो, उन्हें महत्व दिया जाता है और वो अपनी भावनाएं किसी भी रूप में वहां आके कविताओं के रूप में प्रस्तुत कर सकती हैं। और फिर हमारे एनुअल डेज भी होते हैं, और
0: अच्छा।
1: भी जब पॉसिबल होता है तो फिजिकल मीटिंग भी होती है, और इस तरह से अच्छे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं।
0: तो वहां इस मंचों पर आपने आपकी कौन सी प्रस्तुति या काव्य पाठ ऐसा आपने किया जो आपके बहुत करीब है और हमें सुना सके, तो एक कविता भी सुना दीजिए उसी
1: अच्छा
0: वही
1: अच्छा
0: में से पढ़।
1: एक्चुअली काफी सारी कविताएं हैं जो हम पढ़ते रहते हैं और जो कहते हैं दिल के करीब है। तो उस जैसे एक कविता, खत खत नुमा कविता एक मैंने लिखी थी, मेरे बेटे के लिए लिखी थी जब वो मिलिट्री में जा रहा था।
0: अरे वाह, अच्छा,
1: हाँ
0: आपका बेटा मिलिट्री में, आर्मी में, ओके, वंडरफुल।
1: जी। तो देखिए, ये जो जीवन की कड़ियां कैसे जुड़ती हैं, जो पहली कविता मैंने लिखी थी वो ये थी कि सरहद पे फौजी और पोस्टमैन, उसका रिलेशन, और वो जो माँ बाप हैं वो इंतजार कर रहे हैं। तो वो बाद में जाके मेरे जीवन की कहानी बन गई, क्योंकि बेटा वहां पर सरहद है और हम यहाँ पर हैं। तो ये सारी, तो मैंने जब जिस समय वो तैयारी कर रहा था, वो जैसे कहते हैं ना, वो मेरे जो दिल के उद्गार थे, वो कविता मुझे बहुत प्यारी, वो काफी लंबी है, तो मैं सोचती हूँ कि हम कभी उसको और सुनाएंगे। और बाकी वो कविता मेरे दिल के बहुत करीब है जी।
0: ओके, नहीं उसमें से अगर कुछ पंक्तियां सुनाना चाहें तो सुना दीजिए या कोई और अन्य सुना दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं।
1: एक कविता मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। काश
0: जी
1: तुम समझ पाते, काश तुम समझ पाते, महक जाता है मन मोगरे के गजरों से, हीरों के हार किंचित चुभते हैं शूल की तरह। काश तुम समझ पाते। चांद तारे नहीं, ख्वाबों की जमी और तेरी बाहों का बिछौना, बस यही तो सामा है मेरी चाहत का, काश तुम समझ पाते। बुलंदियों के उरूस पर जो हासिल हुआ वो वक्त हमारा नहीं, जो तुम चुरा लाते चंद लम्हे प्रेम के वक्त से छीन कर, बस उन्हीं लम्हों को बांध कर रख लेती मैं प्रेम के आंचल की कोर में छुट्टे सिक्कों की तरह, और जीवन की थाप पर हर बार वो खनक सुन पाते, तुम भी मैं भी काश तुम समझ पाते।
0: अरे वंडरफुल, बहुत बहुत सुंदर, और शब्दों का चयन और बहुत अच्छा, और आपने एक इसमें शब्द यूज किया उरूज, जो उर्दू का शब्द है, और हिंदी वाले बहुत कम उस शब्द को यूज करते हैं। मेरा थोड़ा सा उर्दू से लगाव है और मैं बोलता भी हूँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा सुन के कि आपने एक हिंदी की कवित्री ने इतना अच्छा और बड़ा उसका बड़ा अच्छा यूज किया आपने, और आपकी जो भावनाएं ये तो बहुत अच्छी है। मैं तो थोड़ा सा इस पे और बात करना चाहेंगे, तो अच्छा ये बता दीजिए आप शॉर्ट में कि कोई प्रसिद्ध साहित्यकार, कलाकार या सेलिब्रिटी ने भी आपका काम को अप्रिशिएट किया है, कुछ उनके बारे में बताइए, अनुभव है इसके साथ।
1: देखिए सेलिब्रिटीज का जहां तक सवाल है, मुंबई में आप जानते हैं कि काफी प्रोग्राम्स होते हैं और हम लोग काफी लोगों को देखते भी हैं, उनसे कुछ सीखते भी हैं, अच्छा लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी कविता पाठ के समय वो है या नहीं है, ऐसा भी हो जाता है खैर, लेकिन हाँ इच्छा है कि किन्हीं सेलिब्रिटी तक हमारी बात पहुंचे और वो उसको सराहे तो उसकी खुशी अलग ही होती है। पर मुझे मेरी एक कविता है उसके जो उन्होंने एक पत्रिका आती है उसमें उन्होंने उसकी काफी अच्छी समीक्षा की, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। जी, और उसका मतलब मुझे हमेशा दिल दिमाग में उनकी प्रतिक्रिया जो उन्होंने दी वो छपी हुई रहती है कि अगर प्रतिक्रिया अगर कोई दे तो ऐसी दे। जी
0: नहीं तो नाम तो बताइए उनका जिनने आपको समीक्षा।
1: उनका नाम मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग से, हाँ सर उनका नाम है जितेंद्र जी जीतांशु, हाँ जी वो सदीनामा पत्रिका चलाते हैं, तो उन्होंने इस तरह से जी।
0: चलिए तो जितेंद्र जी के नाम से और उनकी साहित्यिक यात्रा के नाम पर रुककर हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर इस बातचीत को जारी रखते हैं
1: जी।

0: तुम समझ पाते, ये जो कविता आपने सुनाई इसी को
1: जी
0: सुन के मेरे दिमाग में, जहन में ये सवाल आ रहा है कि आपकी कविताओं में स्त्री प्रेम और जीवन के भाव बहुत गहराई से दिखाई देते हैं, तो
1: जी
0: इन विषयों से आपका ऐसा इमोशनल कनेक्ट कैसे बन गया, भावनात्मक जुड़ाव कैसे बना, इसके बारे में बताइए।
1: जी जी तो इसके बारे में तो आलोक जी ये कहना चाहूंगी कि एक नारी के रूप में जन्म लिया है तो उसके भाव होना तो स्वाभाविक है, और प्रेम तो ऐसा है कि अगर प्रेम नहीं तो जीवन नहीं, तो ये एक ऐसा त्रिकोण बन जाता है जो किसी भी नारी या पुरुष भी उनके जीवन में बहुत अहम स्थान रखता है। तो इसीलिए ये भावनात्मक जुड़ाव जो है मैं इन सभी विषयों से महसूस करती हूँ, क्योंकि जीवन से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं और प्रेम के बारे में भी हम, मतलब प्रेम करते करते भी हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ पाते हैं कि हाँ हमने यहाँ पर ये कमी रह गई तो उसको कैसे सुधारा जाए। तो ये इस तरह से एक बहुत ही स्वाभाविक सा जो एक त्रिकोण है वो हमारे जीवन में बन जाता है।
0: चलिए ये बात तो मैं आपकी समझ गया। अब मैं थोड़ा और आपके साथ ये जो प्रश्नों की हमारी भूमि है इस पे आगे चलना चाहता हूँ। कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी याद या कोई ऐसी फीलिंग है जो आपको कभी भीतर तक छू गई हो और आपकी कलम चल पड़ी हो, या आपको अभी तक याद रहती है, भले ही आपने उसको शब्दों में नहीं उतारा हो लेकिन
1: जी
0: आपको
1: जी
0: हमेशा याद रहती है, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई
1: जी
0: शायद
1: जी
0: बात,
1: तो
0: क्योंकि
1: ये
0: हमारे हमारे रेडियो स्टेशन पे सब बहुत ही इस पर बातें करते हैं बहुत सहज भाव से। आप बताइए, बिल्कुल अच्छा लगेगा लोगों को
1: हाँ
0: सुनकर।
1: नहीं, फीलिंग्स तो देखिए, जब हम संवेदना के स्तर पर अगर कोई चीज को महसूस करते हैं तब वो जो भाव होते हैं ना, वो मुझे लगता है हमेशा हमें याद रह जाते हैं और हम उनको लिखना चाहते हैं, या ना भी लिखें तो वो हमारी स्मृतियों में कहीं बने रहते हैं।
0: जी
1: तो ऐसी, मतलब आज वो कविता अभी मेरे सामने नहीं है, बट ऐसे कोविड टाइम्स में जब हुआ था कि सब तरफ आपको पता ही है किस तरह से समय एकदम बदल गया था, लोगों को
0: सही
1: बिल्कुल
0: बात
1: पैसा
0: है।
1: हाथ में ही नहीं था, तो जो हमारे घर में काम करने वाली जो मेड्स होती हैं उनके लिए बहुत ही एकदम संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि वो काम पे भी नहीं आ सकती, पैसा भी नहीं मिल रहा है।
0: बिल्कुल
1: तब
0: सही बात।
1: फिर उनको जहन में रख के फिर मैंने, मुझे एक कविता ऐसे उपजी थी तो वो मैंने लिखी थी, तो
0: अच्छा,
1: वो मेरे को अभी भी याद आती है कई बार। जी जी
0: ये बताइए जैसे ये लेखन की जो पूरी प्रक्रिया है इसके लिए अलग-अलग लेखकों के अलग-अलग विचार होते हैं, आपके
1: जी
0: लिए क्या है ये, आत्म अभिव्यक्ति है, आत्मचिंतन है, यह समाज से संवाद कायम करने का कोई माध्यम, क्या क्या इसको क्या विचार सोचती हैं आप?
1: जी लेखन, जैसे लेखन आत्म अभिव्यक्ति तो ऑब्वियसली होता ही है कि जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको हम लिख देते हैं, और आत्म विकास भी होता है इससे, क्योंकि जैसे जैसे हम लिखते हैं तो जीवन के रहस्यों की कई परतें खुलती हैं, मतलब आपकी कलम चलती है तो आप जीवन को और गहराई से जान पाते हैं, तो ये भी होता है उसमें। और संवाद का भी माध्यम है, क्योंकि अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो संवाद के तौर पे तो वो जरूर लोगों तक पहुंचता है और आप अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये तीनों ही चीजें साथ में
0: बिल्कुल
1: चलती।
0: सही, बिल्कुल सही बात। तो चलिए इसी बात पे रुक के, हम आपने इतनी अच्छी बात बताई कि और आत्म चिकित्सा भी है, एक तरह से सेल्फ हीलिंग भी है, जब
1: यस
0: आप
1: यस
0: लिखते हैं तो आपको बिल्कुल अपने आप एक तरह का सेल्फ हीलिंग भी है, जब आप लेखन प्रक्रिया से गुजरते हैं तो अपने आप जो अंदर
1: हाँ
0: टूट फूट होती है वो भी ठीक हो जाती है। बिल्कुल
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल सेल्फ
0: बिल्कुल
1: हीलिंग है, क्योंकि अगर आप देखें तो हीलिंग मेथड्स में आपको

0: यही कहा जाता है कि आप जितने दिल में है वो पन्ने पे उतार दीजिए,
1: पन्ने पे
0: एटलीस्ट आप
1: उतार,
0: हल्के हो जाएंगे।
1: बिल्कुल
0: तो लेखन आत्म चिकित्सा भी करता है, बिल्कुल सही।
1: बिल्कुल सही। तो चलिए इसी बात पे रुक के हम एक अच्छा सा गाना सुनते हैं और फिर इस बातचीत को जारी रखते हैं।
0: जी।

0: हाँ, तो वेलकम बैक अनिता जी। अब
1: जी
0: आप रह रही हैं मुंबई जैसे बड़े मेट्रो के अंदर, तो ये जो महानगर का जीवन आप इतने वर्षों से गुजार रही हैं, इसको आप किस नजर से देखती हैं? और क्या आपको यहाँ के रिश्तों में, यहाँ के वातावरण में और यहाँ के जीवन में कुछ अलग दिखाई देता है बाकी जो आम शहर है उनसे? क्या क्या विचार है, इतने साल रहने के बाद आप
1: जी
0: कैसे देखती
1: जी बाकी महानगरों में तो मैं रही नहीं, मुंबई
0: हैं?
1: के अलावा तो मैं मुंबई की ही बात करूंगी।
0: जी
1: तो मुंबई महानगर, एक्चुअली मुंबई स्वयं में एक व्यक्तित्व है। मुंबई जो महानगर है वो बहुत, मतलब यहाँ के लोग बहुत जाबाज हैं। अगर डे टू डे लाइफ में हम लोगों बातचीत नहीं कर पाते हैं क्योंकि सब व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब भी जरूरत होती है सब एक दूसरे के काम आते हैं। और वो 26 जुलाई का जो

0: फ्लड हुआ था उसमें मुंबई की जो दिलेरी की कहानियां, तो वो तो आप सभी को मालूम है
1: बिल्कुल
0: किस
1: सर,
0: तरह से मुंबई, इसके अलावा जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे सीरीज वाले ट्रेन में, तब भी उसके अगले दिन भी सुबह मुंबई की जो ये जो स्पिरिट है उसके अगले दिन भी चल रहने की, मुंबई खुला था, पूरे पूरे स्कूलें खुली थी, सब कुछ खुला था, कुछ बंद नहीं हुआ था। तो ये मुंबई की जो स्पिरिट है वो अपने आप में बहुत मतलब आपको प्रेरणा देती है।
1: ये बहुत सही
0: जी
1: बात कह रही है। मुझे याद है कि वो फ्लड की जो बात मुझे भी याद आ गई, 2005 में एक फ्लड आया था, मुझे याद है, बहुत बहुत बहुत बड़ा फ्लड था। तब भी लोग एकदम दूसरे दिन तैयार हो गए थे, काम पे आने लग गए थे, बहुत बड़ी बात। तो अब ये बताइए, जैसे आजकल के रिश्तों के अंदर जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ब्रेकअप्स भी बहुत हो रहे हैं, टूटते विवाह भी हो रहे हैं, तो ये क्या है? ये मजबूरी है या भावनाओं की कमी है? इस विषय में आप, आपका लेखन, लेखक मन क्या सोचता है, किस तरह देखती है आप इस सब को?
0: ये आजकल के रिश्तों में जो बिखराव है उसका मेन जो कारण मुझे समझ में आता है वो ये है कि एडजस्टमेंट नहीं है। लोग बाग एक दूसरे के लिए जो कहते हैं ना, पहले हम लोग थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी करते थे, एडजस्ट भी करते थे, अंडरस्टैंडिंग भी होती थी। अभी क्योंकि अभी दोनों वर्किंग है, मेल फीमेल, और दोनों के वर्कलोड भी है, तो एक वो होता है कि महानगरीय जीवन है, आपको दोनों को काम करना पड़ेगा, तो वो भी एक प्रेशर रहता है उसमें। फिर वो प्रेशर आपके घर तक पहुंचता है, वर्कलोड इतना होता है कि वो बहुत सारी चीजें अब सामान्य होने लगी है, वो भी है। तो अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों को मिलजुल के ही गृहस्थी भी संभालनी पड़ेगी, बाहर भी संभालना पड़ेगा, तभी रिश्ते जो हैं वो सुधरे हुए रहेंगे।
1: हाँ,
0: इस तरह से मैं तो जैसे अब
1: नहीं, सही बात है, सही बात है।
0: नहीं लेखक तो जी
1: तो आप,
0: जी
1: हाँ जी, तो अब जैसे महिलाओं का जो रोल है वो भी बहुत बदल गया है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ गई है, फाइनेंशियल अर्निंग भी करने लग गई है, और ये जो लिबर्टी महिलाओं को जो स्वतंत्रता मिल रही है, इसको आप कैसे सोचती है? क्या ये एक परिवार के लिए ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या क्या विचार है आपके?
0: तो एक्चुअली आलोक जी, ये जो टॉपिक है ना वो बहुत ही मतलब क्या
1: विषद
0: इस तरह का
1: है,
0: टॉपिक है।
1: विषद है, विषद है
0: हाँ, और
1: बहुत।
0: देखिए जिसको हम स्त्री की स्वतंत्रता कहते हैं, मैं एक्चुअली उसको स्वतंत्रता नहीं मानती हूँ, मैं स्त्री की मौलिकता की पक्षधर हूँ कि स्त्री अपने मौलिक स्वभाव में रह के कुछ कर रही है ना, वो उसकी स्वतंत्रता है, ना कि वो पुरुषों की तरह जो कर रही है वो उसकी स्वतंत्रता है।
1: बहुत
0: तो
1: बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया।
0: हाँ, तो ये चीज इसलिए मुझे जब हम कहते हैं कि हमने स्त्री को स्वतंत्र बना दिया, तो मुझे लगता है नहीं, हमने उसे स्वतंत्र नहीं बना दिया, हमने उसको एक और ढांचे में उसको फिट कर दिया। मैं मानती हूँ कि आज के जमाने में ये मजबूरी है कि आपको दोनों को वर्किंग होना पड़ेगा, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो करियर के पीछे परिवार छोड़ देना, ये और बहुत सारी चीजें हैं वो, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूंगी। और दूसरा, मेरी जैसी महिलाएं जो कि अभी तक परिवार को देख रही थी, अब जो समय मिला है तो उनको मैं एक ऐसी टर्म के नाम से संबोधित करती हूँ, एंडेंजर्ड वुमेन, जो कि
1: अच्छा
0: विलुप्त
1: अच्छा
0: तो हो रही है अब,
1: ओके
0: क्योंकि गृहिणी नाम जो है लुप्त तो होता जा रहा है, क्योंकि अब
1: ओके
0: यहाँ पर कोई गृहिणी रही नहीं है, धीरे धीरे सब वर्किंग होते जा रहे हैं, तो ये इस तरह की बातें
1: ये
0: हैं।
1: सही बात है, सही बात है।
0: जी
1: तो चलिए, ये जो महिलाओं का बदलता रूप है, इस पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं। बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं इसके बारे में, तो
0: जी
1: फिर आगे बातचीत को, आप अपनी आखिरी पायदान पर आ गए हैं, बस एक दो सवाल और फिर हमें बहुत ही मजा आ रहा है आपके साथ बात करते में। तो तो श्रोताओं देखिए कितनी अच्छी बातें बता रही हैं। एक गृहिणी के एंगल से अनिता जी एक स्त्री के रोल को कितनी अच्छी तरह से डिफाइन कर रही हैं। तो आप ये बताइए, कथक और मधुबनी कला जैसे रुचियां आपकी कविताओं को किस प्रकार एनरिच करती हैं या समृद्ध करती हैं, इसके बारे में कुछ बताइए।
0: जी जी, तो आलोक जी, मैं मतलब ये मानती हूँ कि कोई भी कला हो वो आपको समृद्ध करती है। अगर आप एक कलाकार हैं तो आप सृजन करेंगे, आप अगर लेखक हैं तो नई कविताओं को सृजन करेंगे तो वो आपको समृद्ध करेगा। अगर आप एक डांसर हैं तो आप कुछ नया उसमें मतलब नए आप क्रिएशन करेंगे, या आप एक पेंटर हैं तो ये जितनी भी कलाएं हैं जीवन में वो आपको समृद्ध बनाती हैं। और कविताओं को समृद्ध करने से मैं इसको इस तरह से समझती हूँ कि जैसे कथक है या लेखन है या पेंटिंग है, ये सब आप एक तरह मेडिटेशन है। अगर आपका ध्यान बटेगा तो आपका काम बिगड़ जाएगा। अगर आप लिखते हैं तो वो आपको एक माहौल चाहिए अच्छे से लिखने के लिए। अगर आप कथक करें, एक भी स्टेप आपने गलत किया तो आपका पूरा गलत हो जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये आपके कंसंट्रेशन को, आपके मेडिटेशन को इसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसलिए मैं इन सबको आपस में इस तरह से मैं जोड़ लेती हूँ ताकि वो मेरे पर्सनल उसमें विकास में भागीदारी दें।
1: ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। म्यूजिक है या डांस है, कोई भी आर्ट फॉर्म है, पेंटिंग भी अगर आप कर दें तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है उस पर। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही अनिता जी आपने कि कोई भी आर्ट फॉर्म है उसमें आप जब तक बिल्कुल फोकस नहीं करोगे तब तक वो आपका आपकी वो कृति अच्छी बनेगी नहीं। बहुत बढ़िया बात कही आप।
0: और तो इसके भी सॉरी मैं आपको मतलब कलाकार में एक जो है ना एक प्यास होती है और वो हर बार नया कुछ करना चाहता है और ये प्यास ही जो है वो उसका जीवन आगे चलाती है। तो मतलब हम अध्यात्म से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं कला को, क्योंकि ईश्वर स्वयं कलाकार है, वो खुद दुनिया का सृजन करते हैं। तो हम भी अगर कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन तक हम उनके और नजदीक जा पा रहे हैं, तो यही मेरा उद्देश्य है।
1: बिल्कुल। तो अब बताइए, जीवन के इस फेज में, इस पड़ाव पे कोई अधूरा सपना, कोई आगे आने वाले सपने, क्या सोचती हैं, क्या करना अभी जीवन में बाकी है, क्या सोच रही हैं आप?
0: तो अधूरे सपने तो नहीं कहूंगी मैं, मेरे पास एक बकेट है, एक लिस्ट है, तो उसमें कुछ कुछ मैं इजाफा करती रहती हूँ, जितना पॉसिबल होता है मैं सीखती रहती हूँ और इसी तरह से आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मैं चार लाइंस आपको सुनाना चाहूंगी।
1: सुनाइए प्लीज।
0: उम्र दराज हो चली है हसरतें, उम्र दराज हो चली है हसरतें, अब इन्हें किताब की मानिंद पढ़ती हूँ। जिंदगी एक फलसफा मोहब्बत का, कभी रजती हूँ कभी संवरती हूँ।
1: तो बहुत बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उम्र दराज हो चुकी है हसरतें, क्या आपने बहुत बढ़िया लिखा। तो अंत में उन महिलाओं के लिए क्या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो आपने तो अपनी राह तलाश ली, जो अभी भी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच अपने सपने को कहीं दबा देते हैं, कुछ इनके जी, लिए जी, कुछ कहना चाहेंगी?
0: जी जी बिल्कुल, मैं उन महिलाओं को यही कहना चाहूंगी, जैसे मेरी बहुत सारी मेरे जो घर में आसपास फ्रेंड्स बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें भी ये करना है, हमें ये पसंद है, ये करना है, पर क्या करें हम कुछ कर ही नहीं पाते, हम तो मतलब घर में ये वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रहती ही है। तो ये मदन मोहन दानिश साहब की ये दो पंक्तियां हैं वो मुझे याद आ रही है कि दुनिया तुम्हें फूल तो नहीं देगी, दुनिया तुम्हें फूल तो नहीं देगी, मिले हैं कांटे तो कांटों को ही गुलाब करो, जुगनुओं को समेट लो मुट्ठियों में और रात आए तो आफताब करो। तो मतलब
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो रात को मतलब, जगमगा दो सर, बहुत सुन।
0: जी जी, तो इस तरह से मतलब आपको उन्हीं में से कुछ करके निकलना पड़ेगा, तभी आप अपना कुछ अपने लिए वक्त निकाल पाएंगी और अपना ध्यान रख पाएंगी। और ये वक्त की मांग भी है, क्योंकि अभी सब परिवार आप देख रहे हैं कि बच्चे दूसरे शहरों में हैं, महिलाएं अकेली घर में रह गई हैं, और अब इतना शारीरिक श्रम नहीं उन्हें करना पड़ता कि वो पूरे दिन गृहस्थी में लगी रहे, तो वो बचे हुए समय का क्या करेंगी? अच्छे किसी चीज से जुड़ी रहें तो उन्हीं के लिए बेहतर है।
1: तो श्रोताओं, आज की इस आत्मीय बातचीत में हमने जाना कि किस तरह जीवन की जिम्मेदारियों के बीच में भी सपनों को जिया जा सकता है, और कैसे संवेदनाएं जब शब्दों का रूप लेती हैं तो कविता बन जाती है। अनिता विजयवर्गीय जी ने यह साबित किया कि पहचान केवल मंचों और पुरस्कारों से नहीं बनती, बल्कि अनुभवों, संवेदनाओं और सच्चे भावों से बनती है। उनकी यात्रा हर उस स्त्री को प्रेरणा देती है जो अपने भीतर किसी अधूरे सपने को अब भी संजोए बैठी है। अनिता जी, हमारे साथ अपने जीवन के इतने सुंदर अनुभव साझा करने के लिए आपका धन्यवाद, और आपने जी इतनी अच्छी कविताएं सुनाई उनके लिए भी हमारी तरफ से विशेष धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि आपकी कलम यूं ही जीवन के रंगों को शब्द देती रहे और आपकी आगामी पुस्तक करछी से कलम तक पाठकों के दिल तक पहुंचे। धन्यवाद।
0: धन्यवाद आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरी बकेट लिस्ट में एक ये ख्वाब रखा था कि मुझे रेडियो पर अपनी आवाज सुननी है, और आज आपने उस ख्वाब को पूरा कर दिया। तो मैं आपका बहुत बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और श्रोताओं को भी बहुत बहुत मेरा हार्दिक नमस्कार और प्रेम पहुंचे। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सुनते रहिए जिंदगी के रंग, गीतों के संग। मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। दुनिया में ज्यादातर इंसान मन हारे बैठे रहते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं तो छोटा आदमी हूं, क्या काम कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्या कर लूंगा। कई बार तो धनी और ज्ञानी लोग भी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता जैसे मुहावरों के पीछे छिप जाते हैं। ये सुंदर युवती भी बस यही सोचती थी। दुनिया जब द्वितीय युद्ध लड़ने जा रही थी तब वो क्या कर सकती थी। उसके देश पोलैंड पर जर्मनी और रूस का कब्जा हो चुका था। वो युवती कभी नर्स का काम करती तो कभी नौकरानी। जुल्म के दिन थे, यहूदियों पर तो कहर टूट रहा था, हिटलर की हैवानियत चरम पर थी। ये युवती ईसाई थी पर अपने देश की आजादी की पक्षधर भी थी, तो उसे भी तरह तरह से सताया जाता था। वो बिचारी अपने परिवार से बिछड़ गई, चुपचाप नजरें झुकाए मुंह छिपाए घर से निकला करती थी कि पता नहीं कब कौन सी नई मुसीबत टूट पड़े। सामान्य कद की दुबली पतली मृदुभाषी नीली आंखें और घने सुनहरे बालों वाली यह युवती तमाम झमेलों से बचने के लिए इधर उधर फिरती थी। वो सोचती रहती थी कि ये सोचकर भी वो क्या कर लेगी, किसे बचा लेगी। अक्सर वो आंखें मूंद लेती जैसे ज्यादातर लोग करते हैं, पर एक दिन तो हद ही हो गई। अप्रैल का महीना था, साल 1942। बाजार में कोहराम मचा था, नाजी दरिंदे लोगों को मार रहे थे, एक छोटे से बच्चे को भी उन्होंने उसकी मां से छीन लिया। छीनते ही एक नाजी अफसर ने उसे हवा में उछाल दिया और जमीन पर गिरने से पहले ही गोली मार दी। हैवानियत के बेरहम मंजर में नाजी पागल जानवरों से भी ज्यादा खूंखार नजर आ रहे थे। उनकी रगों में सिर्फ नफरत का सैलाब था जिसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था। ये नाजी भी कभी बेबस शिशु रहे होंगे, उन्हें किसी ने मां की गोद से नहीं छीना होगा ना, उन्हें किसी ने हवा में नहीं फेंका होगा ना, उनके सीने को कोई गोली न पार कर गई होगी। न शिशु से मोह और न ममता की परवाह, न मानवता का लिहाज। क्या नफरत ही दुनिया का मूल स्वभाव है और बाकी धर्मपंथ उसके पीछे पीछे बस घिसटे जा रहे हैं? क्या ईश्वर भी धर्म देखकर बचाव के लिए आगे आता है कभी? क्या ईश्वर भी विधर्मियों को मौत का तमाशा दिखाता है? उस युवती का ईश्वर से यकीन उठने लगा। शायद कोई ईश्वर होता ही नहीं, खुद अपनी मदद के लिए इंसान को सजग रहना पड़ेगा। तब बहुत आसान था तमाशबीन बनकर रह जाना, पर उस युवती ने यह नहीं सोचा कि वो इन दिनों बेघर बेपरिवार नौकरानी है। उसने कहीं सुना था कि किसी इंसान की जान बचाना संसार को बचाने के बराबर है। काश वो भी किसी की जान बचा पाती। चारों तरफ लोग मर रहे थे, जो सिर्फ तमाशा देखने से तो काम नहीं चलेगा, न नींद आएगी न चैन मिलेगा। उन दिनों उस 19-20 बरस की युवती शहर से कुछ दूर एक बड़े से घर में काम करती थी। उसका मालिक एक नाजी अफसर ही था। एक दिन नौकरानी को पता चला कि पास के कारखाने में बंधुआ मजदूरी कर रहे 12 यहूदियों को किसी भी दिन मार दिया जाएगा, तो वो उन सभी को छपाकर साथ ले आई। सभी यहूदी मुंह पर ताले लगाए रात भर उस बड़े घर के तहखाने में छिपे रहते और तभी ऊपर घर में आते थे जब नाजी अफसर काम पर चला जाता था। दिन के समय सारे यहूदी रसोई से सफाई तक मिलकर घर का पूरा काम करते थे और शाम होने से पहले ही तहखाने में कैद हो जाते थे। महीनों बीत गए पर एक दिन भेद खुल गया। युवती नाजी अफसर के पैरों में गिर गई कि मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं पर किसी की जान मत लो। तब जान बच गई पर कुछ ही दिन बाद सबको लेकर जंगल में छिपना पड़ा। खैर एक दिन युद्ध खत्म हुआ और वो युवती किसी तरह अमेरिका पहुंच गई। वहां
वो संकोची युवती जीवन के नए संघर्ष में खो गई। पर दुनिया में जब यहूदी कुछ संभले, तब उन्होंने अपने मददगारों को याद किया और मददगारों के इतिहास में युवती आइरीन गट ओपडाइक का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। 5 मई को जन्म लेने वाली आइरीन को यहूदियों के देश के सर्वोच्च सम्मान इज़राइल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उनकी करुण दास्तान वाली पुस्तक

माई हैंड्स मेमोरीज ऑफ अ होलोकॉस्ट रेस्क्यूअर की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 30 वर्ष स्कूली बच्चों को अपनी कहानी सुनाते और देशाटन करते हुए बिताए। वो बार बार कहती थी कि राष्ट्रीयता धर्म रंग और पंथ की परवाह किए बिना सबसे लगाव रखिए, हम एक ही परिवार हैं, प्यार करना सीखिए और मौका मिलते ही एक दूसरे की मदद कीजिए, तभी दुनिया रहने लायक होगी। क्या हम कुछ ऐसा सोचते हैं दोस्तों?

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

चलिए दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं भावेश चौधरी जी से, जो एक किसान हैं और एक बिजनेसमैन भी। दोस्तों, हिंदुस्तान नौजवानों का देश है। इसकी 65% से ज्यादा आबादी की उम्र 35 साल से कम है। ऐसे में रोजगार देश का सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए, और यूं देखें तो है भी। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी यानी कि CSDS ने अपने अभी अभी के सर्वे में इस बात को बताया। इस समस्या से जुड़ी हुई एक हकीकत यह भी है कि देखिए, कोई भी सरकार इतनी विशाल युवा आबादी के लिए सरकारी नौकरियां नहीं रख सकती। हालांकि उनकी आजीविका के उपाय करने का दायित्व उन्हीं का है, फिर भी। लेकिन इस समस्या के हल का एक ठोस रास्ता भावेश चौधरी जैसे युवा दिखा रहे हैं, जो न सिर्फ तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक सफल बिजनेसमैन हैं, उद्यमी हैं, बल्कि उन्होंने अपने आसपास के 150 से ज्यादा किसानों की जिंदगी पर भी सकारात्मक असर डाला है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक तहसील है सूरजगढ़। इसी के बरेला आसलवास गांव में आज से करीब 25 साल पहले भावेश पैदा हुए। पिता शेर सिंह चौधरी सीमा सुरक्षा बल में जवान थे और गांव में अपनी खेतीबाड़ी भी थी, इसलिए भावेश का बचपन कभी किसी अभाव में गुजरा नहीं। गांव के तमाम बच्चों की तरह स्थानीय स्कूल में ही पढ़ाई लिखाई हुई, पर स्कूल में कभी उनका दिल लगा नहीं। चार भाई बहनों में दूसरे भावेश यही देखते हुए सयाने हुए कि उनके गांव के लड़के, बल्कि अब तो लड़कियां भी, एक ही लक्ष्य रखते थे, फौज या पुलिस में कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। पिता शेर सिंह कभी कभी बेटे को अपनी पोस्टिंग वाली जगह पर ले जाते थे, जहां उनको तरह तरह के आदेशों का पालन करते देखकर, काफी तनाव में भी ड्यूटी निभाते देखकर भावेश का बालक मन नौकरी से तो हट गया। हालांकि परिवार और खुद पिता की यही इच्छा थी कि वो गांव के दूसरे बच्चों की तरह फौज में जाएं या पुलिस में जाएं, लेकिन भावेश ने कोई लक्ष्य नहीं बनाया। वो बस कक्षाएं पास करते रहे और बढ़ते रहे। 12वीं का इम्तिहान पास करने के बाद पहली बार लक्ष्य संबंधी सवाल ने उन्हें परेशान किया कि अब क्या करोगे। जाहिर है, जब शहरी इलाकों में ही किशोरों की अभिरुचि जांचने परखने और उन्हें उनकी पसंद के क्षेत्र में दक्ष बनाने के सारी कोशिशें बेकार हो रही थीं, तो बरेला आसलवास के युवाओं की भला कौन सुध लेता। आगे पढ़ने की इच्छा बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन परिवार के दबाव में उन्होंने BSc में दाखिला ले लिया। पढ़ाई करते हुए सरकारी नौकरियों की कई परीक्षाएं दी, लेकिन किसी में कामयाबी नहीं मिली। उस दौरान उनके कई दोस्त सरकारी मुलाजिम हो गए। परिजनों और पड़ोसियों के व्यंग का सिलसिला शुरू हो गया, मगर भावेश के दिमाग में ये बात साफ हो चुकी थी कि दूसरों के हुक्म मानने वाली नौकरी उनको नहीं करनी है, और आदेश देने वाली कोई नौकरी उनको मिलने से रही तो उन्होंने कॉलेज के सेकेंड ईयर में ही पढ़ाई छोड़ दी और परिवार को ऐलान कर दिया कि वो अपना कोई काम करेंगे। परिवार वालों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पिता तो खैर नाराज थे ही। भावेश को अब अक्सर सुनना पड़ता, ये किसी काम का नहीं है, इसे जायदाद से बेदखल कर दो, वरना घर जमीन सब बेचकर खा जाएगा, ऐसे निठल्ले को कौन अपनी बेटी देगा। हरियाणा राजस्थान के इस इलाके की एक निर्मम सच्चाई ये भी है कि जिन युवाओं के पास सरकारी या मोटी पगार वाली निजी नौकरी नहीं है, जिनके पास जमा जमाया कारोबार नहीं है, उनकी शादियां ही नहीं होती। पिता के दबाव के आगे घुटने टेकते हुए भावेश ने पड़ोस के शहर लोहारू में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, मगर उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अंग्रेजी माध्यम में थी और भावेश को अब तक पूरी पढ़ाई हिंदी में ही करनी हुई थी। एक महीने में ही उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दिया। सवाल था, अब क्या करें? अब जो कुछ भी करना था अपने भरोसे करना था। भावेश को याद आया कि जब वो हॉस्टल में रहते थे, तब उनके शहरी सहपाठी और कॉलेज शिक्षक उनसे मां के हाथों बना देसी घी लाने की फरमाइश किया करते थे, और जब वो घी लेकर जाते
तो वो सभी स्थानीय भाव के अनुसार उन्हें पैसे दे देते थे। भावेश ने देसी घी का अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला ले लिया। साल 2019 की बात है। अपने दो तीन दोस्तों से उन्होंने कर्ज के तौर पर 30,000 रुपए जुटाए और इस रकम से एक वेबसाइट बनाई, मगर इस पर किस तरह की मार्केटिंग करनी है यह उन्हें आता नहीं था। उनका सारा निवेश बेकार चला गया। भावेश को थोड़ी निराशा हुई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। यूट्यूब पर देसी घी खाने के फायदे के बारे में वीडियोस देखे, उनमें नीचे टिप्पणी करने वालों से उन्होंने बातचीत करनी शुरू की और फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए मां से मिले 3,000 रुपए से नई शुरुआत की। सितंबर 2019 में वो मुबारक दिन आया जब बिहार के भागलपुर से उन्हें पहला ऑर्डर मिला। 1,125 रुपए का ये भुगतान भावेश जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। काम बढ़ा, कमाई बढ़ी, तो अपनों का भरोसा भी आ गया। फिर पिता के सहयोग से गायों की तादाद भी बढ़ा ली, गौशाला का विकास हो गया। फिर उन्होंने आसपास के छोटे छोटे 150 देसी गाय पालकों और दूध उत्पादकों को भी अपने साथ जोड़ लिया। भावेश आज सालाना करीब 8 करोड़ रुपए का देसी घी का कारोबार कर रहे हैं। अपनी सरकारी मुलाजिम दोनों बहनों को वो मजाक में छेड़ते हैं, सरकार तुमको जितनी तनख्वाहें देती है ना, उससे ज्यादा तो हम GST चुकाते हैं। बकौल भावेश, बेरोजगारी का हल सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, ये बात परिवारों को भी समझने की जरूरत है।

रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम आपके झाबुआ की आवाज पर। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: टीचर ने कहा, होमवर्क क्यों नहीं किया?
2: स्टूडेंट, सर लाइट नहीं थी।
1: टीचर ने कहा, तो मोमबत्ती जला लेते।
2: स्टूडेंट, सर माचिस नहीं थी।
1: टीचर ने कहा, अबे माचिस क्यों नहीं थी?
2: स्टूडेंट, पूजा घर में रखी थी।
1: टीचर, तो वहां से ले आते।
2: स्टूडेंट, नहाया हुआ नहीं था ना।
1: टीचर, नहाए हुए क्यों नहीं थे?
2: स्टूडेंट, पानी नहीं था ना सर।
1: टीचर, पानी क्यों नहीं था?
2: स्टूडेंट, सर मोटर नहीं चल रही थी।
1: टीचर, अब मोटर क्यों नहीं चल रही थी?
2: स्टूडेंट, बताया तो सर लाइट नहीं थी ना।
3: वो समय बच्चों को अच्छी अच्छी जगहों पर ले जाने, कुछ नया दिखाने और सिखाने का दौर था। मौका मिलते ही बच्चों को साथ लेकर किसी मॉल में दिखावे का चलन नहीं था। ज्यादातर पिता बच्चों को किसी ऐसी जगह ले जाते थे जहां बच्चों का मन सकारात्मक विकसित हो। तो इसी मकसद से ऑस्ट्रेलिया के वो पिता भी अपने 13 साल के छोटे पुत्र को लेकर सिडनी पहुंचे। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, एक बेहतरीन मैदान, क्रिकेट का अद्भुत सुंदर गढ़। 25 फरवरी का ही दिन था। गुनगुनी धूप में गुलाबी ठंड लिए हवा बार बार सहलाए जा रही थी। प्रसिद्ध एशेज श्रृंखला का 5वां टेस्ट खेला जा रहा था। इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही थी और मैदान में ऑस्ट्रेलियाई टीम के तमाम दिग्गज क्षेत्र रक्षण करते हुए नजर आ रहे थे। वो बच्चा अचंभित था। वहां क्रिकेट के साथ बहुत कुछ था, कहीं ठहाके, कहीं शोर, कहीं अपने प्यारे खिलाड़ियों से सीधे संवाद की कोशिश, कभी नारे, कभी जय जयकार। कोई गेंदबाजों से विकेट गिराने की मांग कर रहा था, तो कोई चौके की तमन्ना लिए बल्लेबाजों को ललकार रहा था। कहीं से संगीत की लहरियां उठ रही थीं, तो कहीं से पकवानों की खुशबुएं। स्थानीय टीम अच्छा खेल रही थी, तो सबके चेहरे खिले हुए थे। पहले विश्व युद्ध के बाद का वो माहौल ऐसा था मानो विशाल महोत्सव चल रहा हो। वैसे उस सजग बच्चे को एहसास था कि ये पूरा मेला मजमा अच्छी क्रिकेट देखने के लिए ही लगा है। अच्छी क्रिकेट मतलब अच्छे खिलाड़ी, जिनका नाम सुनकर लोग दूर दूर से चले आते हैं। दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ, तब उस लड़के के सबसे प्रिय खिलाड़ी जॉन टेलर बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि टेलर ज्यादा नहीं चले, मगर दूसरी छोर पर चार्ल्स मैकार्टनी को रोकना मुश्किल था। अंग्रेज गेंदबाजों की तो खैर नहीं थी। मैकार्टनी ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे कि लोगों को बाकी नजारे देखने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उस लड़के ने महसूस किया कि अच्छा खेलना कितना जरूरी है। जब कोई अच्छा खेलता है तो तमाम लोगों की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। मैकार्टनी ने 50 रन पूरे किए, 100 रन पूरे किए, 150 रन भी पार कर गए। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सबकी जबान पर एक ही नाम था, मैकार्टनी। खैर, जब मैकार्टनी का विकेट गिरा, तब उनके खाते में 170 रन जुड़ चुके थे, जिसमें 20 तो चौके थे। तब छक्कों का जमाना नहीं था। खिलाड़ी बहुत ही अनुशासन के साथ जमीनी खेल में विश्वास रखते थे और मैकार्टनी का खेल इस विश्वास का भरपूर झलक था। उस दिन का खेल जब खत्म हुआ तो उस लड़के का मन ना हुआ लौटने का। पिता खड़े हो गए कि चलो आज घर लौटना है, हम 25 और 26 फरवरी का मैच देखने के लिए ही आए थे, कल 27 को मैच का रेस्ट डे है। पर स्टेडियम से लौटने का मन ही नहीं कर रहा था उसका। पता नहीं फिर कब ऐसा मैदान और शानदार खेल देखने को मिलेगा। फिर मन में आया कि काश ऐसे मैदान में खेलने का मौका मिल जाए, लोग देखने आते, तालियां बजाते। लड़के ने पूरी दृढ़ता के साथ पिता को कहा, पापा एक दिन जरूर मैं इस मैदान में खेलूंगा। हंसमुख पिता मुस्कुरा कर रह गए। वो अपने लड़के को जानते थे, जो अच्छी टेनिस रग्बी खेलता था और कभी कभी क्रिकेट भी। खैर, सिडनी से लौटकर वो बच्चा घर पर एक जगह दीवार के सहारे अकेले घंटों अभ्यास करने लगा। हाथ में बल्ले की जगह विकेट का एक डंडा होता था और टेनिस बॉल सामने दीवार पर टकराकर बार बार कूदती आती थी और तब एक डंडा ही बल्ला बन जाता था। उस दिन मैकार्टनी का खेल देखकर ही मन में ये बात बैठ गई थी कि खेलो तो ऐसा तेज खेलो कि लोग लगातार निहारते सहारते ही रह जाएं। लड़के ने अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगा दिया कि एक दिन सिडनी के मैदान पर खेलना है। बस 6 साल लग गए और वो राष्ट्रीय टीम में शामिल कर लिया गया। बस एक पहला मैच अच्छा नहीं बीता, पर उसके बाद तो दुनिया जान गई कि डॉन ब्रैडमैन नाम के एक बल्लेबाज ने दुनिया के तमाम गेंदबाजों के लिए काल की तरह अवतार लिया है। ब्रैडमैन 1908 से 2001 तक अपने बल्लों से रनों के जो पहाड़ बनाते गए, उनमें से कुछ पर पता नहीं कोई चढ़ पाएगा या नहीं। वो 25 फरवरी को ही दुनिया से विदा हुए थे। वो बार बार प्रेरित करते थे कि जब ठान लो तो करके दिखाओ, लगन और मेहनत से सब संभव है। वो कहते थे कि मैं कभी भी प्रशिक्षित नहीं हुआ हूं और ना ही मुझे कभी बताया गया कि बल्ला कैसे थामा जाता है। तो दोस्तों, ये हुई प्रतिभा डॉन ब्रैडमैन की।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क

आधुनिक व्यवस्था में यानी कि मॉडर्न सोसाइटी में ये कहा जाता है कि बच्चों का ध्यान बड़ी आराम से बड़ी सरलता से थक जाता है और उन्हें एक ही विषय को लंबे समय तक पढ़ने के लिए नहीं कहना चाहिए।

विषय बदलते रहने से उनके दिमाग को आराम मिलता है, ऐसा माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मॉडर्न सोसाइटी या आधुनिक युग, इसके बच्चे पुराने लोगों से अलग हो चले हैं क्या? और यदि ऐसा हो गया है तो लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखने के लिए हमने ही शायद उन्हें निराश कर दिया है। क्यों? हम बच्चों के पाठों को, उनके सब्जेक्ट्स को, उनके लेसन्स को बहुत बोरिंग, बहुत नीरस बना देते हैं, और जब बच्चा उनसे भागता है तो जबरदस्ती उसे पढ़ाने बैठा देते हैं और फिर कहते हैं कि जी ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसकी शिकायतें करने लगते हैं। कदम ब कदम उसे आगे बढ़ाते चलना और जैसे जैसे अगला कदम आए उसमें उसकी रुचि उत्पन्न करना और उसे कॉन्फिडेंस देना, उसे आत्मविश्वास देना, जब तक कि अपने विषय में उसे दक्षता हासिल ना हो जाए, यही तो तरीका है ना शिक्षा देने का। यूं देखा जाए तो मातृभाषा ही शिक्षा का सबसे उचित माध्यम है। मातृभाषा मतलब जिसमें हम बोलते हैं, इसलिए बच्चे को प्राथमिक शक्तियां इसी माध्यम में पूरी दक्षता पाने की ओर लगानी चाहिए। अक्सर हर बच्चे में एक कल्पना होती है, शब्दों के लिए, वाक्यों के लिए, बातचीत के लिए एक सहज व्यवहार होता है, एक नाटकीय क्षमता, विचार व तरंग की एक संपत्ति होती है। नीरस हिज्जे और किताबों के पठन पाठन के बजाय उसका परिचय अपने साहित्य और उसके आसपास और पीछे के जीवन के सबसे रोचक अंशों से हमें कराना चाहिए और उन्हें इस ढंग से उसके सामने रखना चाहिए जिससे कि वो उन गुणों के लिए आकर्षित हो, प्रभावित हो, उसे पता चले कि ऐसा होता क्यों है। इस अवधि में बाकी सारी पढ़ाइयां, शिक्षाएं मानसिक क्रियाओं और नैतिक चरित्र की पूर्णता प्रदान करने वाली होनी चाहिए। इसी समय इतिहास, विज्ञान, दर्शन और कला के अध्ययन की नींव भी डालनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं और औपचारिक तरीके से नहीं। यहां एक विचार मेरे मन में आ रहा है, आजकल ज्यादा से ज्यादा बच्चे कंप्यूटर साइंसेज और टेक्निकल पढ़ाइयों में ही लगे हैं, जैसे सारा विश्व बस इन्हीं से चलता है, इन्हीं से चलने वाला है। जब कंप्यूटर साइंसेज और इस तरह की टेक्निकल शिक्षाओं के चलते लोग अपने आप से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से आपस में मिलना जुलना ही बंद कर देंगे, तो ऐसे संसार का करेंगे क्या? मेरा सुझाव है, मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी टेक्निकल पढ़ाइयों के साथ साथ एक विषय, एक सब्जेक्ट ऐसा भी होना चाहिए जो आपस में एक दूसरे के प्रति संभाव को भी सिखाए। एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे के प्रति मानवीय व्यवहार सिखाए। कोई भी एक सब्जेक्ट, इतिहास, कला, दर्शन से संबंधित हर कोर्स में जरूरी होना चाहिए, सिर्फ पास करने के लिए नहीं, सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए नहीं, बल्कि सचमुच पढ़ने के लिए। तब मेरा मानना है कि बच्चे का या किसी भी विद्यार्थी का पूरा विकास तभी होगा।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है अनिल कपूर। बेहद ही हंसमुख और हमेशा ही जवान दिखने वाले अनिल कपूर बेहद पॉपुलर एक्टर हैं बॉलीवुड के। तो लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अनिल कपूर जी एक पंजाबी हिंदू फैमिली में 24 दिसंबर 1956 को जन्मे थे और तब से लेकर आज तक बस हम सभी का मनोरंजन करते ही जा रहे हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: डार्लिंग, तुम हर वीक गाड़ी चेंज करता, क्या गाड़ी के साथ साथ लड़के भी बदलता?
1: ऐसा न कर।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: यार तुम्हारा कुत्ता तो टाइगर जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो तुम इसको? बंदा ने कहा, अरे भाई ये टाइगर ही है, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है।
2: उन्नीस सौ अस्सी के दशक में ढेर सारी फिल्में की अनिल कपूर ने और हम सभी का भरपूर मनोरंजन किया अपने चुलबुले अंदाज में। लीजिए हो जाए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर, आप मेरे साथ है ना। अनिल कपूर जी ने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की, जिसमें बधाई हो बधाई, माई वाइफ्स मर्डर, गांधी, माई फादर जैसी फिल्में आती हैं।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। एक बार एक सब्जी वाला सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था, छिड़कता जा रहा था। काफी देर हो गई तो ग्राहक ने गुस्से से बोला, सुनो अब अगर भिंडी होश में आ गई हो तो 1 किलो तौल दो।

अनिल कपूर जी थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, जैसे उनकी बॉलीवुड कॉमेडी चमेली की शादी में उन्होंने थोड़ा सा गाया भी था। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उनकी ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आज के कलाकार अनिल कपूर जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ।
1: दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: कमजोर होते हैं। आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: 1992 से लेकर 1993 यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: नमस्कार, आदाब, तस्लीम और बेहद खास सलाम मेरे अजीज दोस्तों। 90.8 FM की मखमली तरंगों पर SN रेडियोस और रेडियो टांटिया भील के इस खूबसूरत आंगन में मैं हूं आप सभी की अपनी दोस्त आरती रॉय। लो आ गई हूं मैं एक बार फिर से जज्बातों की एक नई सुरीली महफिल और गुजरे हुए जमाने की हसीन यादों का एक मुकम्मल कारवां समेट कर आप सभी के चहेते प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक में। दोस्तों, जिंदगी की इस आपाधापी में जब कभी दिल सुकून की तलाश करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुरीले नगमों और रूहानी लफ्जों की पनाह में ही मिलता है। आज की हमारी ये मुलाकात भी कुछ ऐसी ही होने वाली है जहां हर लफ्ज सीधे आपके दिल को छुएगा और हर सुर आपकी रूह में उतर जाएगा। बस अपने ख्यालों को खुला छोड़ दीजिए, गुजरे हुए खूबसूरत लम्हों को जहन में ताजा कर लीजिए और पूरी शिद्दत से तैयार हो जाइए सुरों के इस बेहद अछूते और भीगे हुए सफर में मेरे साथ चलने के लिए। तो बिना देर किए आइए आगाज करते हैं आज की इस हसीन बज़्म का एक खूबसूरत शेर के साथ। मसरूफ रहने का अंदाज, पेश खिदमत है, मसरूफ रहने का अंदाज तुम्हें तन्हा न कर देगा गालिब, रिश्ते फुर्सत के नहीं, रिश्ते फुर्सत के नहीं, तवज्जो के मोहताज होते हैं। दोस्तों, आज के इस नए कारवां की पहली कड़ी का आगाज हम सरहद पार की एक ऐसी अजीम फनकारा से कर रहे हैं जिनकी आवाज में पंजाब की मिट्टी का सौंधापन भी है और शास्त्रीय संगीत के कमाल की महारत भी। जी दोस्तों, ये बेहद नामवर और हर दिल अजीज मोहतरमा हैं तसव्वुर खानम जी। 70 और 80 की दहाई में जब उन्होंने रेडियो और टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा तो उनकी मखमली और पुरकशिश गायकी ने हर दिल को अपना असीर यानी कैदी बना लिया। वो सिर्फ गजलें नहीं गाती थी बल्कि उनके गाए हुए गीत और तराने आज भी उतने ही तरोताजा लगते हैं। आज मैं आपके लिए उनकी एक ऐसी नायाब पेशकश लेकर आई हूँ जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि ये असल में साल 1974 की एक मशहूर पाकिस्तानी फिल्म ईमानदार के लिए रिकॉर्ड की गई थी। इस शाहकार

दोस्तों, वफा के इस समंदर से आगे बढ़ते हुए अब हमारी सुरीली महफिल एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है कि जब मोहब्बत में सामने वाले की बेरुखी और उसकी जबां का ये सन्नाटा रूह को तकलीफ देने लगे तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। ऐसी ही एक दाखली यानी इंटरनल कश्मकश को सुरों में पिरोया है हमारे संगे बुनियाद यानी गजल गायक हरिहरन साहब ने। साल 2001 में उनकी शाहकार एल्बम काश का एक ऐसा नगमा जो आशिकी के उस मकाम को बयां करता है जहां तन्हाई सर चढ़ कर बोलने लगती है। मशहूर शायर इब्राहिम साहब के लिखे इन लफ्जों को जब हरिहरन साहब ने अपने मखमली और गमक से भरी शास्त्रीय गायकी से सरोबार किया तो ये खामोशी भी साज बन गई। इस नज्म के बीच की ये सतरें जब सीधे आपके कानों से टकराएंगी तो आप भी इस शिद्दत को महसूस किए बिना रह नहीं पाएंगे। तो आइए अपने दिल को थोड़ा थाम लीजिए और हरिहरन साहब की जुबानी सुनिए ये बेहद पुरअसर और रुमानी गजल। कभी तो तोड़ ये बेजान सन्नाटा, कोई शिकवा कोई नफरत कोई शिकायत कर। गौर फरमाइए, कह रहे हैं कभी तो तोड़ ये बेजान सन्नाटा, कोई शिकवा कोई नफरत कोई शिकायत कर। तेरी चुप्पी कहीं पागल न कर दे, तेरी चुप्पी कहीं पागल न कर दे, तू मुझसे बात कर या फिर कयामत कर। दोस्तों, हरिहरन साहब की आवाज में बहुत खूबसूरत कला आपकी नजर।

दोस्त, खता और माफी के उस दौर से आगे बढ़कर अब हमारा सफर उस मकाम तक आ पहुंचा है जहां इंसान खुद अपनी परछाई के सामने खड़ा हो जाता है। जब जिंदगी में इंसान बहुत आगे निकल जाता है तो एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो पीछे मुड़कर अपनी असल पहचान ढूंढता है। कई साल पुरानी 1999 मींस 1989 की मशहूर फिल्म डैडी की एक ऐसी नायाब पेशकश जो वक्त के बेरहम थपेड़ों और इंसान के अंदर की टूट फूट को बयां करती है। इस दिलकश नज्म को अपनी मखमली आवाज से नवाजा है मोहतरम तलत अजीज साहब ने। शायर थे सूरज सनीम और इन अजीम लफ्जों को जब राजेश रोशन साहब की सुरीली धुनों का साथ मिला तो ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर की दास्तान बनकर रह गया। गजल का मिसरा पेश खिदमत है। शायर कहता है, मेरी शोहरत मेरी दीवानगी की नजर हुई, पी गई मैं की बोतल मेरे गीतों की किताब, आज लौटा हूं तो हंसने की अदा भूल गया, ये शहर भूला मुझे मैं भी इसे भूल गया, मैं भटकता ही रहा दर्द के वीराने में, वक्त लिखता रहा चेहरे पे हर पल का हिसाब। तो आइए सुनते हैं बेबसी की कैफियत तलत अजीज की खूबसूरत आवाज में। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे आपकी नजर।

दोस्तों, वक्त के उस हिसाब किताब के बाद हमारा सुरीला कारवां आज के सफर की अगली पायदान पर आ पहुंचा है। जब साल साल के लंबे इंतजार के बाद कोई अचानक आपके सामने आकर खड़ा हो तो दिल की हालत को लफ्जों में बयां करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। ऐसी ही एक जज्बाती मुलाकात को सुरों का जामा पहनाया है मोहतरम गुलाम अली साहब ने। उनकी मशहूर एल्बम गोल्डन कलेक्शन की एक ऐसी लाजवाब पेशकश है जो बिछड़ने और फिर से मिलने की उस मीठी सी कशिश को बयां करती है। शायर मोहसिन नकवी की लिखी इस नज्म को जब गुलाम अली जी ने अपनी खास हरकतों, मुर्गियों और मखमली गायकी से सरोबार किया तो ये सिर्फ गजल नहीं रही बल्कि दो रूहों के मिलन की दास्तां बन गई। इस गजल का मिसरा कुछ यूं बयां किया गया है। कौन सी बात है तुम में ऐसी, इतने अच्छे क्यों लगते हो, पीछे मुड़कर क्यों देखा था, पत्थर बनकर क्या तकते हो, जाओ जीत का जश्न मनाओ, मैं झूठा हूं तुम सच्चे हो, अपने शहर के सब लोगों से मेरी खातिर क्यों उलझे हो। मोहसिन फिर मक्ता पेश है, मोहसिन तुम बदनाम बहुत हो, मोहसिन तुम बदनाम बहुत हो, जैसे हो फिर भी अच्छे हो। लीजिए गजल शौक फरमाइए गुलाम अली साहब की आवाज में, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम बैठे हो।

दोस्तों मुलाकातों के उस हसीन दौर से गुजरकर अब हमारा सुरीला कारवां आज के सफर की आखिरी चौखट तक पहुंच गया है, जब दुनिया की तमाम तकलीफें इंसान को चारों तरफ से घेर लेती हैं, तब दिल सिर्फ अपने उस अजीज शख्स की पनाह ढूंढता है जो उसकी रूह का हमराज हो। सुरों की मलिका मोहतरमा नैरा नूर साहिबा की आवाज में सजी ये एक ऐसी नायाब और तारीखी पेशकश है जो सिर्फ एक नगमा नहीं बल्कि वफा की आखिरी पुकार जैसी लगती है। शायर सिद्दीकी साहब के लिखे इन अजीम लफ्जों में छिपी वो तड़प जब उनकी पाक और रेशमी आवाज से मिलती है तो महफिल का रंग ही बदल जाता है। तो आइए इस आखिरी नगमे के साथ बिरहा के समंदर में उतरते हैं, नैरा नूर साहिबा के इस बेहद जादुई अंदाज में। मिसरा पेश करती हूं। ना है फरियाद होंठों पर, ना है फरियाद होंठों पर, ना आंखों में कोई आंसू, जमाने से मिला जो गम उसे गीतों में ढाला है। फिर शायर कहता है, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है। और ये कि ना जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई, ना जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई, हमसे तुम्हें देखा तुम्हें चाहा, कसूर इसके सिवा क्या है। महसूस कीजिए इन बोलों को दोस्तों, कहां हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। नैरा नूर की पुरसुकून आवाज आपकी नजर, प्रोग्राम की आखिरी गजल।

वाह, जमाने से मिले उस गम को गीतों में ढालने की जो ये कलाकारी है, यही तो मौसीकी की असली ताकत है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, घड़ी की सुइयों की ये रफ्तार हमें बिन बोले इशारा कर रही है कि अब वक्त हो चला है आज की इस खूबसूरत बज़्म को यहीं विराम देने का। लफ्जों की चौखट से शुरू हुआ हमारा ये नया कारवां आप सभी की बदौलत सीधे रूह के एहसास तक उतरा है। आपके इसी बेइंतहा मोहब्बत और साथ के लिए मैं दिल से आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है आज की ये शाम के चुनिंदा नगमे आपके ख्यालों की डायरी में एक महकती हुई याद बनकर हमेशा जिंदा रहेंगे। अब आपकी दोस्त आरती रॉय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इसी मुकाम पर इसी वक्त, नए तराने छेड़ेंगे। तब तक सुकून से रहिए, आराम कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान साथी कैसे हैं, हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और तैयारी में जुट गए होंगे। लेकिन साथियों कुछ बातें याद रखें, जो विषय विशेषज्ञ बताते हैं कि जब तक 100 मिलीमीटर बरसात ना हो तब तक हमें अपने खेतों में बुवाई नहीं करना चाहिए। आज का अगर मौसम को जाए, खासतौर पर झाबुआ जिले के मौसम को देखा जाए तो अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और बरसात तो होना ही नहीं है। और 1 जून से अभी तक कुल बरसात जो हुई है वो 27.3 मिलीमीटर हुई है। तो कुछ खास बातें हैं, यानी कि अभी से हमें इंतजार करना होगा, कुछ हमें तैयारी इसके पूर्व जो होती हैं, बुवाई के पूर्व जो होती हैं उसकी हमें तैयारी करना चाहिए, मेड़ बंधान करना चाहिए, पानी को रोकने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, आसपास जो तालाब सूखे पड़े हैं उनका फिर से द्वारा रिचार्ज कराना चाहिए, यानी खुदाई करना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए, कुओं की साफ सफाई करना चाहिए। चूंकि पथरीला इलाका है जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जमीन है, वहाँ पर एक सी जमीन हमें करवा लेनी चाहिए। तो ये खास बातें हैं, जब तक हमें बोनी का सही समय नहीं आता है, जब तक बरसात अच्छी नहीं होती है तब तक हमें इन खास बातों पर, इन पर अपने खेत पर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। खासतौर पर यदि देखा जाए झाबुआ जिले में तो सोयाबीन, मक्का, इस तरीके की खेती अधिकतर हमारे किसान साथी करते हैं। अगर आपको बता दें कि लगभग भारत में 3.6 मिलियन हेक्टेयर से 3.1 मिलियन टन उत्पादन है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में सोयाबीन पैदावार करने वाले प्रमुख प्रांत हैं ये। अकेले मध्य प्रदेश में 80% से अधिक क्षेत्रफल है जहां पर सोयाबीन उगाया जाता है, लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सोयाबीन केवल 20 से 25 हजार हेक्टेयर पर ही उगाया जाता है। प्रजातियों की बात करें तो उसमें PK 472 जो 120 से 125 दिनों में पक्के तैयार हो जाती है। इस पर उपज जो रहती है 30 से 35 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से रहती है। दूसरा बीज जो रहता है वो PS 564 रहता है, इसकी अवधि रहती है 115 से 120 दिन। इसमें उपज प्रति हेक्टर देखा जाए तो इसमें 25 से 30 क्विंटल रहती है। तीसरी जो उपज रहती है वो PK प्रजाति जो रहती है PK 416 रहती है, जो कि 115 से 120 दिन में आ जाती है। प्रति क्विंटल उपज की बात करें तो ये भी 30 से 35 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से पैदावार होती है इसकी। PK 327 जो अवधि रहती है 100 से 110 दिन की रहती है। इसमें उपज की अगर बात करें तो इसमें उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। पूसा 16 110 से 115 दिन में तैयार होती है, 25 से 35 क्विंटल प्रति क्विंटल जो रहती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज होती है। PS 1042 120 से 125 दिन में आती है ये फसल और 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज होती है। JS 335 जो 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है, इसकी उपज 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। JS 7244 गौरव के नाम से जाना जाता है, 106 से 110 दिन में तैयार होती है, 20 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज होती है। PK 262 120 से 135 दिनों में तैयार होती है और 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये उत्पादन होता है। बुवाई का समय आपको पता है कि मैदानी क्षेत्रों में 20 जून से 10 जुलाई तक रहता है, पर्वतीय क्षेत्र में 25 मई से 15 जून तक रहता है। चूंकि बारिश अभी ज्यादा नहीं हुई है तो हमें इंतजार करना है। बीज दर की हिसाब की बात करें तो 75 से 80% अंकुरण वाला लगभग 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर में बोना चाहिए। पंक्ति दर पंक्ति पौधे की दूरी जो रहती है 45 गुणा 5 सेंटीमीटर रखें, बीज 4 सेंटीमीटर गहरा ना बोएं। बीज उपचार अरहर में देखिए, तो बीज उपचार करके ही अपने बीज को देखना है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी साथियों, हमें जो कार्यक्रम के माध्यम से बतानी थी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक रिपोर्ट सुनते हैं और जानते हैं, खासतौर पर देखा गया है कि जलवायु परिवर्तन से, मौसम के परिवर्तन से हमारी कृषि पर कितना असर पड़ा है, इस पर एक रिपोर्ट हम सुनते हैं। लेकिन विराम के बाद बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान भाइयों बहनों, जलवायु परिवर्तन अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। हमें जीवन को बनाए रखना है तो अब धरती को सुरक्षित करना होगा, और अगर हम अभी भी नहीं चेते तो परिणाम काफी दुख भरे हो सकते हैं। तो आइए इसी के संदर्भ में आपको जानकारी देते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में।
2: इस भीषण गर्मी में आसमान को तकती हमारी निकाहे अमृत तुल्य बारिश का इंतजार कर रही है, जिसमें गर्मी से राहत मिल सके। पिछले कुछ सालों में लगातार तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। इस साल यानी 2022 में पिछले 12 सालों के मुकाबले ज्यादा गर्म हवाएं चली, जिसमें 54% हीट वेव केवल 5 राज्यों में चली है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है। इसके पीछे कई कारण है और सबसे बड़ी वजह है तेजी से वन क्षेत्रों का कम होना। आंकड़ों की माने तो पिछले 5 सालों में 0.5% ही हरियाली में इजाफा हुआ है, जिसमें हमें तेजी लाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा प्लास्टिक एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है, जो मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित कर रहा है। हालांकि

0: प्लास्टिक प्रबंधन पर काफी जोर दे रहे हैं, लेकिन तकरीबन 12% प्लास्टिक ही रिसाइकिल हो पा रहा है। इन सारी वजहों से तापमान में जो इजाफा हो रहा है उसका सीधा असर फसलों पर पड़ रहा है। इस साल बड़े तापमान के कारण गेहूं के उत्पादन में कमी आई है। इस कमी को देखते हुए सरकार ने गेहूं निर्यात पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार अहम कदम उठा रही है। किसानों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वो खेती में नुकसान की आशंकाओं को कम कैसे करें।
1: देखिए, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव स्वास्थ्य के अलावा, केवल मानव स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि धरती पर, खेती पर, खेती से जुड़े जितने भी देश हैं, जिनकी इकोनॉमी है वो कृषि से संबंधित है, कृषि पर निर्भर है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वो कृषि से ही अपना जीवन पालन कर रही है, उन पर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है और बहुत अधिक रूप से पड़ने लगा है। पिछले 4-5 साल से हम किसानों को इस बारे में जो है प्रशिक्षित कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों से बचने के लिए किस तरह के उपाय करना शुरू कर दें। उसके लिए मिट्टी को बचाना जरूरी है, मिट्टी की बायोडायवर्सिटी को, जैव विविधता को बचाना बहुत आवश्यक है, और इसमें रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, पुनर्योजी कृषि, प्राकृतिक खेती, ऐसे जितने भी तमाम विविध तरीके हैं खेती के जिससे कि मिट्टी का स्वास्थ्य बनाया जा सके, वो तरीके किसानों को इस्तेमाल करने होंगे, नहीं तो इसका जो है बहुत अधिक प्रभाव जो है वो इकोनॉमी पे पड़ने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उससे कहीं ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण फूड हो गया है, भोजन सबके लिए आवश्यक है।
0: हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक अब इन प्रयासों में लगे हुए हैं कि किस तरह से भविष्य में इन समस्याओं से निपटा जाए। हालांकि कुछ हद तक प्राकृतिक खेती अपनाकर भी परेशानियों से बचा जा सकता है।
1: इस बार जो गर्मी पड़ी है और तापमान में जो अंतर आया है थोड़े समय के लिए, उसी से जो है गेहूं में जो पिछले 3 साल पहले जो वैज्ञानिकों ने अपना वो दिया था कि मॉडलिंग के बेसिस पे कि गेहूं में लगभग 5-10% उसमें यील्ड की कमी होगी, उपज की कमी होगी प्रति एकड़, अगर जो है तापमान में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी जो है वो बढ़ोतरी हुई तो। किंतु इस बार उदाहरण हमारे सामने है, हमारे हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के तमाम लाखों किसान, जो कि खासतौर पर और मध्य प्रदेश के किसान, जहां गेहूं जो है वो मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में बोया जाता है, वहां जहां 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर जहां पे उपज होती थी अच्छी वैरायटीज की, उनकी उपज जो है वो 17 से 18 क्विंटल तक पहुंच गई। तो इससे न केवल सरकार को जो है वो गेहूं पे जो एक्सपोर्ट निर्यात का जो निर्णय लिया गया था तुरंत बैन लगाना पड़ा।
0: दुनिया भर के बुद्धिजीवी इस समस्या के समाधान में लगे हुए हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बढ़ता प्रदूषण न केवल लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रहा है, बल्कि खेतों में पैदा हो रही फसलें भी इनसे प्रभावित हो रही है। सामान्यतः तापमान के हर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर भारत में 6000 किलो गेहूं का उत्पादन कम हो सकता है। इसीलिए इसके समाधान की शुरुआत हमें आज और अभी से शुरू करनी होगी, ताकि हमारा कल सुरक्षित हो सके।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
3: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अभी डॉक्टर और विशेषज्ञ द्वारा कितनी महत्वपूर्ण सलाह दी गई है कि जो उपज आज हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है, उसका कारण है ये जलवायु परिवर्तन। यदि हम इसको नहीं रोक पाए तो आने वाले समय में बहुत भयानक परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हमारा विशेषज्ञ द्वारा मानना है। खासतौर पर उन्होंने सलाह दी है कि हमें अपने वृक्षों को लगाना चाहिए और अपने प्राकृतिक खेती की ओर हमें रुख करना चाहिए, तभी हम इस जलवायु जैसी भयानक समस्या से निपट सकते हैं। कार्यक्रम में और भी चर्चा होगी, लेकिन साथियों इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। गीत के बाद पशुधन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, खासतौर पर पर्यावरण को सुधारने में बहुत अहम जिम्मेदारी निभाता है, तो उसकी देखभाल में इस मौसम में, चूंकि बरसात का मौसम आने वाला है, कैसे कर सकते हैं, एक रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे, लेकिन इस विराम के बाद।

0: पशुपालन अपने आप में काफी संजीदा व्यवसाय है। इसमें पशु को हर मौसम में सुरक्षा तो देनी ही होती है, साथ ही मौसम के हिसाब से उनके आहार में भी परिवर्तन करना होता है। ये छोटे छोटे प्रयास पशु को सेहतमंद बनाए रखने में मदद करते हैं। इस समय गर्मी का मौसम खत्म होने को है और बारिश का मौसम दस्तक देने वाला है। ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि वो बरसात शुरू होने से पहले पशुओं को बाह्य परजीवियों जैसे किल्ली, जू, चीचड़ी से सुरक्षा दें। इसके लिए क्या कदम उठाएं? जानते हैं
1: भाइयों, आप जानते हो कि अभी बरसात का मौसम आने वाला है, तो इसमें सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है किसानों को चिचड़ियों की। और चिचड़ियों का इलाज जो है वो एक चिचड़ियाँ जो मानी जाती है मैनेजमेंटल डिजीज है, और चिचड़ियों का इलाज जब किसान भाइयों को करना होता है तो उसमें किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना है कि ये चिचड़ियों का जो एक लाइफ साइकिल होता है वो 4 हफ्ते का होता है, तो 4 हफ्ते में ही उसका इलाज ज़रूरी है। क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे आज चिचड़ी आई है तो उस समय वो उसका इलाज करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, दवाई लेने के बाद वो भूल जाते हैं। तो क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही 1 हफ्ते में आप दवाई लेंगे तो उस टाइम पे जो अडल्ट चिचड़ियां हैं जो बड़ी हैं वो मर जाएंगी, लेकिन जो उनके जो अंडे हैं वो रह जाएंगे। तो उससे क्या होगा, वो अगले हफ्ते में फिर से वो हैच होकर वो नई चिचड़ियों का रूप लेंगे। और ये जो साइकिल है, कम से कम किसान भाइयों को जो चिचड़ी का टीका है या दवाई है वो उनको 1 हफ्ते के बाद रिपीट करनी होती है, और टोटल 4 हफ्ते का एक साइकिल जो है वो कंप्लीट करना है। तो इसीलिए आपने किसान भाइयों हमेशा ध्यान रखना है कि चिचड़ियों के जो इलाज है उसका इलाज के लिए आपको पूरा 1 महीने का जो इसमें 1-1 हफ्ते का अंतराल है उसमें इलाज करवाना है। और ना कि सिर्फ इतना ही, आप जैसे कि मैंने कहा ये एक मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है, तो इसमें आपने क्या करना है कि जब आप चिचड़ियों का इलाज कर रहे हैं उस समय पे जो आपने हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका शेड है उसका जो फर्श है उसकी सतह पे कोई कहीं सुराख वराख ना हो, ताकि जो अंडे हैं और चिचड़ियाँ अगर गिरेंगी तो वो वहाँ उन सुराखों के बीच में ना घुस जाए उस समय। और फर्श को आप पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट का घोल बना के पानी में उसे आप साफ कर सकते हैं। और आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब मौसम में नमी ज़्यादा रहेगी तो उस समय में आपने अपने शेड में कुछ जैसे कूलर या इस चीज़ का इस्तेमाल करना है, और वेंटिलेशन को आपने प्रॉपर रखना है ताकि चिचड़ियाँ जो हैं वो पनप ना पाएँ। और जो मल मूत्र का रिसाव है उसको आपने ध्यान से रखना है, और मल मूत्र का निकास जो है वो पूरी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ताकि चिचड़ियाँ जो हैं वो पनप ना पाएँ। और बरसात में आपने सबसे ज़्यादा अपने शेड को साफ सुथरा रखना है, और हो सके तो आप डेली अपने शेड की सफाई करें, क्योंकि सफाई से बहुत सारी बीमारियों को हम रोकथाम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम बरसात में दूसरी बीमारी की, थनेला।
0: बरसात की मौसम में दुधारू पशुओं को थनेला रोग होने की आशंका भी बनी रहती है। जैसा कि इसका नाम है, इसका सीधा संबंध पशु के थन से है। थनेला रोग एक संक्रामक रोग है और एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। इस रोग के फैलने का प्रमुख कारण है साफ सफाई का अच्छी तरह से नहीं होना। इसके लिए अनियमित तौर पर दूध दोहने और गंदे हाथों से दूध दोहने की वजह से भी पशुओं में थनेला रोग हो जाता है। किसी संक्रमित पशु के संपर्क में आने से भी ये रोग होने की आशंका रहती है। इस रोग से बचाव के लिए क्या करें पशुपालक, जान लेते हैं विशेषज्ञ की सलाह।
1: थनेला में हम अक्सर देखते हैं कि किसान जो है वो पहचान नहीं पाता। सबसे पहले किसान को देखना होता है कि उसके जो पल्ला है, जो थन है, वो हल्का हल्का जब दूध निकाल रहा होता है उस समय हल्का हल्का गर्म रहता है, तो उसे हमें पता लगता है कि थनेला की शुरुआत जो है वो हो रही है। क्योंकि ये एक इन्वायरमेंटल और मैनेजमेंटल डिजीज है, तो इसमें भी आपको रख रखाव जो है वो आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। साफ सफाई जो है वो शेड की आपने बहुत अच्छे से करनी है ताकि थनेला जैसे रोग ना हो। और आपने ध्यान रखना है कि जब आप गाय का दूध निकाल रहे हैं तो उससे पहले चारा ना खिलाएं ताकि उसके बाद चारा खिलाएं। इससे क्या होगा कि पशु जो है वो खड़ा रहेगा और थन जो है, थन की जो नली है वो जमीन के कांटेक्ट में नहीं आएगी, जिससे जीवाणु जो है वो थन की नली में घुस नहीं पाएंगे और आगे इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। जाएगा। और आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना, थनेला को रोकने के लिए हमेशा लाल दवाई का यूज़ करें जिसे पोटाशियम परमैंगनेट कहते हैं, और पोटाशियम परमैंगनेट का घोल बना के आप दूध निकालने से पहले आप थनों को धो लें, और फिर दूध निकालने के बाद भी आप उसे एक डिप कर सकते हैं। तो किसान भाई क्या करें कि जब आप लाल दवाई का यूज़ करें तो एक मग में आप उसे घोल बना लें और एक लीटर पानी में, और थन को आप डिप कर सकते हैं उस लाल दवाई के घोल में, और ये प्रक्रिया जो है आपने दूध निकालने से पहले और दूध निकालने के बाद करनी है। और ना कि सिर्फ इतना ही, आपने जब दूध निकालना है उस समय भी आपने अपने हाथ धोने हैं, और जब दूध निकालने से पहले और दूध निकालने के बाद दोनों समय पे आपके हाथ धोने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ बीमारियां दूध से फैलती हैं तो वो आप तक भी नहीं आ पाएंगे।
0: मानसून के आने से पहले पशुओं के लिए डीवॉर्मिंग कितनी जरूरी है, साथ ही इस समय किन बीमारियों से बचाव के टीके लगवाएं, जान लेते हैं।
1: किसान भाइयों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ही बरसात आ रही हो उस समय जानवर की डीवॉर्मिंग, जो कीटनाशक दवाइयां हैं, वो बहुत जरूरी हैं। डीवॉर्मिंग मानसून से पहले और मानसून के बाद अनिवार्य है, और इसीलिए इससे आप ना चूके, आप हमेशा टाइमली अपने जानवरों की डीवॉर्मिंग करें, ताकि इसे जानवर के जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, और अब बाकी कई अन्य रोगों से जानवर को मुक्ति मिल जाती है। और आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब बरसात आ रही हो उससे पहले आप FMD का टीका करवा लें, गलगोटू का टीका करवा लें, BKO ब्लैक वाटर का टीका करवा लें। ये टीकाकरण आप ज़रूर करवाएं मानसून से पहले, क्योंकि बरसात में हम देखते हैं कि नमी होती है, तो नमी के कारण बहुत से जीवाणु के पनपने का एक ज़्यादा बहुत से जीवाणु जो हैं वो पैदा होने लग पड़ते हैं, तो इसलिए आपने उन चीज़ों में इन मौसम में आपने खासकर से ध्यान रखना है कि अपने जो शेड है उसकी साफ सफाई हो, वेंटिलेशन प्रॉपरली हो, हवादार हो।
2: आइए अब आपको दिखाते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर, ताकि आप उसके अनुसार सही तरह से प्रबंधन कर सके, अपने पशुओं की सही तरह से देखभाल कर सके।
3: HS और BQ टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य ना किया हो तो इस माह कर लें।
2: हमारे देश में गाय को माता कहा जाता है, और कहें भी क्यों ना, डॉक्टर्स भी तो बच्चे को गाय का दूध पिलाने की ही सलाह देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि गाय के संरक्षण के लिए कार्य किए जाएं, और ऐसा ही कुछ कर रहे हैं आज के हमारे युवा उद्यमी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं।

भारत की युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा लेने के बाद नौकरी की तलाश में नहीं भटक रही, बल्कि ऐसे कदम उठा रही है जिससे और युवाओं को अपने कारवां में शामिल कर सके। युवाओं की आधुनिक सोच अब नया भारत गढ़ रहा है, जिसमें उनके छोटे छोटे प्रयास देश को और सशक्त बना रहे हैं। हमारे आज के युवा उद्यमी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। गाजियाबाद के रहने वाले असीम सिंह रावत ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर करीब 15 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद

0: की भी सेवा कर रहे हैं।
1: बाय एजुकेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लगभग 15 साल का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद मैंने हेता स्टार्ट करी, दो गायों से, दो लोगों से ये जर्नी स्टार्ट हुई, और अब 80 हेड स्ट्रॉन्ग हैं, 3 लोकेशन से ऑपरेट करते हैं, 1000 के आसपास भारतीय गौवंश है, और लगभग 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम लोग इस समय बना रहे हैं, देसी गाय के दूध से, गौमूत्र से, गोबर से। संस्था का मिशन ये है कि 1000 गौवंश, जिसमें बूढ़ी गाय भी हैं, बछड़े भी हैं, मिल्किंग काउस भी हैं, ये सभी को हम अच्छे से पाल सकें एंड टू एंड विदाउट एनी डोनेशंस। और उसका तरीका सिर्फ यही है कि आप प्रोडक्ट्स बनाइए और उनको वर्ल्ड वाइड सेल करिए। प्रोडक्ट्स में हम लोग बेसिकली दूध से बने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो दूध एक मेन चीज़ है, उसमें खोया हो गया, पनीर हो गया, आपके लड्डू हो गए, घी हो गया, आपका मक्खन हो गया, फिर गौमूत्र पे आ जाते हैं। तो गौमूत्र से बहुत सारे प्रोडक्ट संस्था बनाती है, इसमें बहुत तरह के अर्क हो गए। ये ध्यान रखना है कि गौमूत्र से जब भी आप प्रोडक्ट्स बनाएं तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, तभी आप उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि एक मेडिसिन है और मेडिसिन को मेडिसिन के तरह ही यूज़ किया जाना चाहिए। अर्क के अलावा पंचगव्य बहुत सारी मेडिसिन बनाती हैं, जैसे हेयर ऑयल हो गया, सोप्स हो गए, शैम्पूज हो गए, ये भी आयुर्वेद से डिराइव्ड हैं, पंचगव्य से डिराइव्ड हैं, जो भी काउ रिलेटेड चीज़ें हैं वो संस्था बनाती है। गोबर से भी लगभग 10 से 15 उत्पाद संस्था बनाती है, जैसे मूर्तियाँ हो गई, उपले हो गए, जीवामृत हो गया। गौधारित कृषि भी हम लोग करते हैं, हेता नंदीशाला बुलंदशहर में, वहाँ पर 5-6 तरह के मिलेट्स उगा लेते हैं, राइस है, वीट है, लकड़ी बना लेते हैं, गोबर की उपले बना लेते हैं। और हेता उत्तराखंड में हम लोग बद्री गायों पे काम करते हैं, वहाँ पर भी पंचगव्य कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं और बद्री गाय का घी, छाछ आदि भी वहाँ पर मैन्युफैक्चर होती हैं। तो ओवरऑल 3 लोकेशंस हैं संस्था की इस समय, जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ आपको 2022 में, हेता गाजियाबाद है, हेता उत्तराखंड है, हेता बुलंदशहर है।
0: मात्र 2 लोगों से शुरू की गई उनकी ये कंपनी आज 80 लोगों के पार तक पहुंच गई है। वो बताते हैं कि गायों को लेकर लोगों में जो भ्रांतियां थी वो उन्हें तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि भारत की गाय इतनी निर्बल नहीं हो सकती है जो पशुपालक को मुनाफा ना दिला सके, बल्कि भारतीय गौवंश अपने साथ पशुपालक के पूरे परिवार का पोषण करने में सक्षम होती है। इसी मिथक को तोड़ने के लिए असीम ने अपना हेता डेयरी फार्म शुरू किया, जिसमें ज्यादातर वे गायें हैं जो दूध देने में सक्षम नहीं है, लेकिन असीम मुनाफे के लिए गौ पालन नहीं करते बल्कि गौवंश की रक्षा के लिए ये कदम उठा रहे हैं। उनके यहाँ दूध, गोबर व गौमूत्र से करीब 100 तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। उनके प्लांट में बनने वाले उत्पाद पर्यावरण के हिसाब से भी बेहतर है और हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से भी। इस समय वो अलग अलग नस्ल की गाय का दूध, नस्ल के हिसाब से कई तरह का घी, पनीर, खोया, मक्खन, च्यवनप्राश, शहद, दलिया, आटा, बासमती चावल, पंचगव्य से बनी दवाएं, हेयर ऑयल, गोबर से बने कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं। उनके ये उत्पाद ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। इसके लिए असीम सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। असीम के स्टार्टअप की एक और अच्छी बात है और वो ये है कि वो फार्म में पल रही नंदियों पर भी खास ध्यान देते हैं, जिनके लिए असीम ने हेता नंदीशाला खोल रखी है। असीम अपने पशुओं को देने वाला चारा भी खुद ही उगाते हैं, जिसमें मोटे अनाज भी शामिल है। असीम के ये प्रयास उन युवाओं के लिए बेहतर उदाहरण है जो कृषि और पशुपालन को कम आंकते हैं और शहरों का रुख करते हैं।
2: जीमेल का
3: रेडियो टांडिया भी 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मुख्य बातों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जान रहे हैं। खासतौर पर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, खासतौर पर असर हमें हमारे किसान साथियों को झेलने को मिल रहा है और हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके की यहाँ पर जंगल हुआ करते थे और उसको किस तरीके से उसको काटा जा रहा है, उससे जो आज हम देख रहे हैं, परिणाम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आज जो विशेषक बताते हैं, पहले जो फसल उत्पादन प्रति हेक्टर ज्यादा होती थी, आज वो दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसमें हमें रोकने के लिए, उनको बचाने के लिए हमें प्रयास करना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। साथ साथ में चूंकि बरसात का मौसम आने वाला है और इस बरसात के मौसम में पशुपालन का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं और हम कार्यक्रम में

चूंकि युवा हमारे देश का भविष्य होते हैं और युवा पीढ़ी ही अगर कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो अपनी जॉब को छोड़कर बीटेक बी करने के बाद वो कृषि के क्षेत्र में उतर रहे हैं, बहुत सारी संभावनाएं। आइए सुनते हैं इस स्टार्टअप इंडिया को किस तरीके से युवा आगे बढ़ रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, लेकिन विराम के बाद बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आप लोग रेडियो अपनी बात है।

0: दुनिया की जय जोहार जय जोहार जय जोहार।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: शुरुआत करते हैं और जैसा कि हमारा पहला विषय है बरसात के मौसम में सब्जियों की खेती, तो आइए जानते हैं कि ऐसे में जबकि गर्मियां अब जारी है, कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश भी शुरू हो गई है, जो किसान हैं हमें बताएं डॉक्टर राकेश कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जो इस मौसम में ली जा सकती है।
1: जैसा कि मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अभी खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसको हम बरसात की मौसम भी बोलते हैं
0: जी।
1: और इस मौसम में जो मुख्य रूप से सब्जियां लगाई जाती है वो खासकर बेल वाली सब्जियां, घिया, तोरी, करेला, खीरा, पेठा, ऐसी सब्जियां लगाई जाती हैं। साथ ही साथ है, इसके अलावा जो टमाटर वर्गीय सब्जियां हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्च और हम लोबिया, इसके अलावा हम ओकरा का भी इस समय खेती करते हैं। हम पत्तेदार सब्जियों की बात करते हैं तो पत्तेदार सब्जियों में लाल चौलाई और हरी चौलाई की हम इस समय खेती करते हैं मुख्य रूप से
0: जी।
1: और इसके अलावा अन्य सब्जियां जैसे हम राउंड द ईयर में पालक और धनिया, इनकी भी खेती हम इस समय कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो बहुत सारी वैरायटीज है, कई सब्जियां हैं जिनकी खेती आप इस समय कर सकते हैं, लेकिन खेती के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अच्छी उपज हासिल कर सके, इसके बारे में विस्तार से आज हम जानकारी लेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
2: बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या हो सकती है, यही वजह है कि वैज्ञानिक अच्छी जल निकास वाली जगहों पर ही सब्जियां बोने की सलाह देते हैं। इसके अलावा मेड़ बनाकर खेती करना भी जल जमाव से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बरसात के दौरान बेल वाली सब्जियों में खीरा, तोरी और करेले की खेती की जा सकती है। इन सब्जियों को सीधे जमीन पर ना लें, क्योंकि बारिश का पानी सब्जियों को दागदार बना देता है, जिससे बाजार भाव पर असर पड़ता है। इसलिए इन्हें बोने के बाद बांस और रस्सियों की मदद से मचान बना लें। बरसात में भिंडी, बैंगन, फूलगोभी, लोबिया, बीन्स और चौलाई जैसी फसलों में खरपतवार की समस्या काफी ज्यादा रहती है। इससे फसल की बीमारी भी ज्यादा लगती है और कीट भी। इसीलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। अलग अलग फसलों की बात करें तो भिंडी को लगभग सभी तरह की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसकी उन्नत किस्मों में पूसा ग्रीन भिंडी 5, पूसा A4, पूसा सावनी, पूसा मखमली, वर्षा उपहार, परभनी क्रांति, आजाद भिंडी और अरका नामिका के नाम लिए जा सकते हैं। लोबिया की खेती के लिए गर्म और नमी युक्त जलवायु सही मानी जाती है। पूसा कोमल, पूसा सुकोमल, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, अरका, गरिमा, काशी गौरी और काशी कंचन लोबिया की बेहतर किस्में हैं। प्याज के लिए ऐसी जलवायु की जरूरत होती है जो ना बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडी। आमतौर पर सभी तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जाती है, लेकिन उपजाऊ दोमट मिट्टी सबसे बेहतर है। इसकी N53, पूसा रेड, पूसा रतनार, एग्रीफाउंड लाइट रेड, एग्रीफाउंड रोज, पूसा व्हाइट राउंड, पूसा व्हाइट फ्लैट और भीमा डार्क रेड इस मौसम की अच्छी किस्में हैं। मैदानी हिस्सों में जून जुलाई के दौरान खरीफ मिर्च बोई जा सकती है। इसके लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। मिर्च की रोपाई जरूर कर लें। वहीं बैंगन को लंबे गर्म और बरसाती मौसम की जरूरत होती है, इसे भी सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है।
0: तो इस रिपोर्ट में आपने जाना कि इस समय कौन कौन सी फसलें ली जा सकती है, कौन कौन सी किस्में अच्छी रहती है, साथ ही फसल प्रबंधन के बारे में विस्तार से आगे जानेंगे। लेकिन आइए हमारे दूसरे विषय का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पीके जैन आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि शिक्षा व स्वरोजगार, जैसा कि आज का हमारा विषय है, इसके बारे में हमें पहले समझाएं कि इसकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सदियों से हमारे जो अन्नदाता किसान है वो खेती किसानी करते आए हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें जानकारी है कि वो किस तरह से खेती करे, लेकिन ऐसे में अगर किसी तरह से शिक्षा, कृषि शिक्षा हासिल कर ली जाए तो वो किस तरह से इनके लिए उपयोगी हो सकती है?
3: देखिए, कृषि क्षेत्र की जब बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में काफी परिवर्तन आ गया है। आज की कृषि, 20 साल पहले जो कृषि थी उसमें आज में काफी परिवर्तन आ गया है। आज की कृषि की हम बात करते हैं तो एक प्रतिस्पर्धी कृषि हो गई है। प्रतिस्पर्धी से मतलब है कि किसान के पास जो संसाधन है उनको किस तरह से उच्चतम उपयोग किया करके ज्यादा से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। किसान ये भी बात आजकल चाहता है कि कैसे से अधिक तुम उसको आय प्राप्त हो, ये उसका मुख्य उद्देश्य हो गया। साथ ही हम देखेंगे कि जो बाजार की जो कंडीशन है जहां उससे मूल्य मिलते हैं उसकी भी काफी परिवर्तन आ गया है, वो एक प्रतिस्पर्धी हो गई है कौन से बाजार में बेचना है, उसके लिए एक स्किल एक जानकारी की जरूरत होती है, इसलिए कृषि क्षेत्र में काफी चेंजेज आ गया है। हम देखेंगे जब हम कृषि क्षेत्र की बात करें कि कृषि में किस तरह के लोग इसमें काम करते हैं, हम देखते हैं कि अभी भी कृषि में ज्यादातर कम शिक्षित लोग हैं और ये अशिक्षित लोग हैं जो कृषि के व्यवसाय में काम करते हैं, वो अपने खेत पे उनका प्रबंधन खेत का प्रबंधन करते हैं, तो इसलिए काफी और क्योंकि हमने अधिक से अधिकतम आय प्राप्त करनी है, अधिक से अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, तो इसलिए कृषि को एक इनोवेटिव कृषि बनानी है, उनमें से कृषि बनानी, इसके लिए हमें कृषि के जो जो इन्वॉल्व लोग हैं, कृषि में जो शामिल लोग हैं, उनको एक तरह से हमें कहें कि उनका उत्थान करना है, उनको मानव संसाधन कृषि क्षेत्र में निर्माण करना, इसके लिए कृषि की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरत है।
0: बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि किस तरह से साल दर साल जो कृषि है उसके तौर तरीकों में बदलाव आ रहा है और अब तो कई तरह की नई तकनीकी भी आने लगी है और ऐसे में इन चीजों के बारे में किसानों के लिए जानना बेहद जरूरी है। कृषि में जहां अल्पशिक्षित लोग भी जुड़े हुए हैं तो वहीं आज हम देख रहे हैं कि आज के दौर में उच्च शिक्षा हासिल करके भी युवा इस क्षेत्र में आ रहे हैं और जो कृषि है उसे उद्यमिता की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे में कृषि शिक्षा उनके लिए किस तरह से कारगर साबित हो सकती है, विस्तार से आज हम बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
4: कृषि में उच्च शिक्षा और स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आज कृषि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की दक्षता और क्षमता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कृषि शिक्षा को लेकर विद्यार्थी स्वरोजगार के लिए भी खुद को तैयार कर सकते हैं। देश के युवा अपना खुद का रोजगार कर सके, इसके लिए सरकार और देश में मौजूद कृषि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा देने और इसे आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। देश में 1877 में पहली बार कृषि शिक्षा की जरूरत महसूस की गई और इस तरह सईदापेट में पहले कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई। देश के दूसरे कुछ हिस्सों में कृषि शिक्षा को इंजीनियरिंग विद्यालयों से शुरू किया गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बड़े अनुसंधान संस्थान की शुरुआत महसूस की गई। 1905 में ये सपना भी पूरा हो गया और पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इस समय देश में करीब 99 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 66 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनसे शिक्षा लेकर युवा खुद को स्वरोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। कृषि शिक्षा पाकर युवा अनाज फल सब्जियों दूध से बने उत्पादों नकदी फसलों मछली पालन मुर्गी पालन और मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। कृषि शिक्षा का ही नतीजा है कि अब खेती सिर्फ आजीविका का साधन मात्र नहीं है बल्कि देश के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही है।
0: जहाँ तो रिपोर्ट में देखा आपने कि किस तरह से जो कृषि शिक्षा है उसका विस्तार लगातार होता जा रहा है। डॉक्टर जैन, आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे में जो किसान इससे जुड़ना चाहते हैं और इसे एक रोजगार के अवसर के तौर पर देख रहे हैं, उनके लिए किस तरह की संभावनाएं हैं?
3: कृषि क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा संभावना है। कृषि क्षेत्र की हम बात करें और रोजगार की हम बात करें तो एक हम जॉब भी हम दूसरी कंपनियों में या पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में हम जॉब प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मुख्य जो संभावनाएं हैं कृषि क्षेत्र की हम बात करते हैं तो उद्यमी बनने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं कृषि क्षेत्र में, तो उसके लिए जो हमारे ग्रामीण युवा है तो उनको हमें कृषि क्षेत्र में बनाए रखने के लिए और उनको सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होगा कि उनको कृषि क्षेत्र को एक ल्यूक्रेटिव सेक्टर बनाना है, उसको आर्थिक रूप से एक आकर्षित एक क्षेत्र बनाना है और उसके लिए हमें जरूरत है कि कृषि क्षेत्र में कृषि शिक्षा का प्रसार करके उनको उद्यमी बनने की शिक्षा हम दे।
0: बिल्कुल डॉक्टर जैन, इसके बारे में विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जिनसे जुड़ सकते हैं आज के युवा और स्वरोजगार के जो अवसर है वो उन्हें मिल सकते हैं।
5: इसी के साथ साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 9425416603। इसी के साथ साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
6: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपनी बातें।
7: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपनी बातें।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्रोग्राम खेती किसानी पर। किसान साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जैविक खेती के ऊपर। जैसा कि किसान साथियों ने अपनी समस्याओं को साझा किया है और साथ ही किस तरीके से उन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है, इन सब जानकारियों को लेकर रेडियो टांटिया भील 90.8 FM ने आप लोगों के सामने आज के इस कार्यक्रम को कुछ एक्सपर्ट की मदद से उन महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके लिए एकत्रित करके रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके लिए लेकर आया है। साथ ही हम चर्चा करेंगे उन्नत बीज की फसलों के ऊपर। किसान भाइयों के फोन आते रहे हमारे पास, किस तरीके से उनकी जमीन में जो बदलाव आ रहे हैं इससे कैसे निजात पाया जा सकता है। निरंतर हम किसान भाइयों के पास जाकर, उनके खेतों पर जाकर उनसे चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से हमारी जमीन में बदलाव आ रहे हैं और क्या क्या समस्याएं हैं हमारे किसानों की और किस तरीके से हम अच्छी किस्मों के बीज ला सकते हैं और उन्नत कृषि कैसे कर सकते हैं, नई तकनीकी से हम कैसे कृषि कर सकते हैं। अन्य जानकारियों को रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आप तक ये सारी जानकारियां पहुंचाता रहा है। आइए इन जानकारियों को जानने से पहले सुनते हैं एक सुंदर से भीली गीत को।

0: इस सुंदर से गीत के बाद आइए बढ़ाते हैं हम अपनी खेती किसानी की चर्चा को।
1: पंडित जी, खेती करने की जो हमारी जैविक खेती है वो ऐसी पद्धति है जिसके अंदर हम किसी भी जो हमारे रासायनिक खाद है उनका इस्तेमाल नहीं करते। हमारे जो है जीवाणुनाशी हैं या कवकनाशी हैं या हमारे जो हर्बिसाइड हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम एक इस तरीके से खेती करते हैं जिसमें जो है पोषक तत्व का प्रबंधन ऑर्गेनिक सोर्सेज के माध्यम से करते हैं, जैसे गोबर की गली सड़ी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, या हम रॉक्स एंड मिनरल्स को भी डालते हैं ग्राउंड करके, या रॉक फॉस्फेट को भी डाल सकते हैं। तो ऐसी पद्धति के द्वारा जो हम खेती करते हैं जहाँ पे पोषक तत्व का प्रबंधन ऑर्गेनिक सोर्सेज के माध्यम से किया जाता है, क्रॉप रोटेशन के माध्यम से किया जाता है, और खरपतवारों का नियंत्रण जो है वो हम यांत्रिक विधि से करते हैं, इंटरकल्चर ऑपरेशन से करते हैं। तो ऐसी पद्धति को हम जैविक खेती कहते हैं। और इसका जो है आजकल क्योंकि समय की मांग है, बाजार में जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, और उसके साथ साथ जैसे हमने बहुत ज्यादा रासायनिक खादों का या हमारे बहुत से केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आई है और वातावरण में भी प्रदूषित हुआ है। तो उसको दूर करने के लिए जैविक खेती जो है एक अच्छा हमारा पर्याय हो सकता है, प्रयास हो सकता है।
0: किसान साथियों, जैसे कि हमने सुना कि किस तरीके से हमारी भूमि में जो बदलाव आए हैं उससे निजात पाने के लिए हम किस तरीके से जैविक खेती कर सकते हैं, आइए बढ़ाते हैं अपनी इस चर्चा को थोड़ा और आगे।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
3: हरित क्रांति के दौरान देश की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। ज्यादा उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल शुरू हुआ। फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए भी रासायनिक दवाएं छिड़की जाने लगी। इन रसायनों ने पैदावार तो बढ़ाई लेकिन मिट्टी को कमजोर और फसलों को जहरीला बना दिया है। इतना ही नहीं, ये कीटनाशक पर्यावरण को भी दूषित करने लगे। इन दुष्परिणामों का असर इंसान ही नहीं पशुओं की सेहत पर भी पड़ रहा है। आज जब देश उत्पादन के मामले में नित्य नए रिकॉर्ड बना रहा है, तब खेती में रसायनों का इस्तेमाल कम करने की बात की जाने लगी है। जैविक खेती इसी सिद्धांत पर आधारित है। भारत सरकार इस तरह की खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है। जैविक खेती एक ऐसी विधि है जिसमें रसायनों की जगह गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु कल्चर और जैविक खाद के उपयोग पर जोर दिया जाता है। इससे न सिर्फ जमीन की उपजाऊ शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। साथ ही कृषि लागत घटने और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ने से किसान को ज्यादा मुनाफा होता है। सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर निर्भर इलाकों में जैविक खेती और भी ज्यादा फायदेमंद है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मानकों पर जैविक उत्पाद ज्यादा खरे उतरते हैं। दुनिया भर में जितने भी शोध हुए हैं उनमें से ये बात निकलकर सामने आई है कि जैविक खेती से मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार होता है, लेकिन इसमें कमी भी है। जब आप जैविक खेती की शुरुआत करते हैं तो कम से कम 3 साल तक पैदावार कम होती है। यही वजह है कि इसी कमी को दूर करने के लिए हमारे वैज्ञानिक रासायनिक और जैविक दोनों विधियों को मिलाकर खेती करने की सलाह देते हैं।
0: आइए जानेंगे किस तरीके से हम जैविक खेती कर सकते हैं। उससे पहले सुनते हैं एक सुंदर से भीली गीत को।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जैविक खेती का सबसे मुख्य फायदा ये है, जो भी हमें कृषि उत्पाद मिलता है जैविक विधि से उगाए गए, चाहे हमारे फल हैं, सब्जियां हैं, चाहे दूध है, चाहे मछली है, चाहे अंडा है, और जो हमारा कोई भी फसल का उत्पाद है, उत्पाद में जैसे हमारा ऑयल सीड भी है या पल्सिस दाल भी है हमारी, या गेहूँ है, चावल है, कॉफी है, चाय है, ये सारे उत्पाद जो है बिना किसी रसायन के उगाए जाते हैं। तो इनमें कोई भी रासायनिक का जो अवशेष होता है वो नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत से जो केमिकल डालते हैं हम, उनका कुछ अवशेष हमारे इन उत्पाद में रह जाता है, और जब इनको कंज्यूम करते हैं, चाहे हम खाएं चाहे जो पशु खाएं, तो कहीं ना कहीं वो उनके स्वास्थ्य को खराब करते हैं।
2: किसान भाइयों, अभी आप लोगों ने जाना कि किस तरीके से रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करने से वह किस तरीके से हमारी फसलों में रह जाता है और किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य पर और पशुओं के स्वास्थ्य पर दोनों पर एक बुरा प्रभाव डालता है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, उससे पहले लेते हैं हम एक छोटा सा विराम।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों, आइए जानते हैं जैविक कृषि करने से हमारी भूमि में किस तरीके से उन भूमि में बदलाव देखे जा सकते हैं।
1: तो एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी उत्पाद होता है जैविक विधि से उगाए गए उत्पाद में कोई भी जो हमारा रेजिड्यू होता है किसी भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का, वो नहीं होता है। और साथ साथ जो है हमारी मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है।
3: अच्छा।
1: मिट्टी की गुणवत्ता कई तरीके से बढ़ती है, भौतिक संरचना में सुधार होता है जिससे पानी को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है और उसकी बल्क डेंसिटी जो है कम हो जाती है। और इसके साथ साथ जो है मैं ये भी बताना चाहूंगा कि केमिकल तो हमारे गुण हैं जिनको हम रासायनिक गुण भी कहते हैं मिट्टी के, विशेषकर जैसे न्यूट्रिएंट की उपलब्धता है या पीएच मान है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इनके में भी काफी सुधार होता है। और ऐसा देखा गया है यदि हम लगातार जैविक खेती करते हैं तो हमारा जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है मिट्टी में वो बढ़ जाता है, काफी बढ़ जाता है। और हम भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पिछले करीब 15-16 साल से, लगातार बासमती धान गेहूं का फसल चक्र अपना के हमने देखा कि हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जिसको हम आत्मा मानते हैं मिट्टी का, तो वो जो है मतलब काफी बढ़ गया है। और मिट्टी जो है हमारी पहले भुरभुरी थी, अब काली मिट्टी हो गई है। और इसके साथ साथ जो है हमारी जो हमारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, यानी कि जीवाणु है मिट्टी के अंदर, चाहे हमारे माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिन, ये सारे बढ़ जाते हैं, अर्थवर्म जो हम केंचुआ कहते हैं।
3: किसान साथियों, जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना किस तरीके से जैविक खेती करने से हमारी मिट्टी में भिन्न भिन्न बदलाव देखे जा सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी मिट्टी को पुनः उपजाऊ मिट्टी बना सकते हैं, कार्यक्रम को जारी रखेंगे। उससे पहले सुनते हैं एक सुंदर से भीली गीत को।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
1: हाँ देखिए, फल जो आम के लिए जो कीड़े लगते हैं उसके बारे में तो मैं इतना विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप नीम का जो ऑयल आता है उसका 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो काफी हद तक जो है आपके कीड़े रुक जाएंगे। आम के लिए ऑर्गेनिक यदि आम उगा रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक आम की काफी डिमांड बढ़ रही है, हमारे देश में ही नहीं जैसा सुपर मार्केट है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, लेकिन साथ साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आम की जो जैविक विधि से उगाए गए आम है उनकी काफी डिमांड बढ़ रही है। सो नीम का जो है आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं या नीम की पत्तियों को उबाल के उसका जो है हमारा अर्क बनता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कीड़ों को रोकने के लिए आम के अंदर।
2: जैविक पद्धति से उपजाए हुए फलों की मांग भी काफी है और इसके भाव भी काफी अच्छे मिलते हैं। हम चर्चा कर रहे थे जैविक कृषि के माध्यम से हम अपनी मिट्टी में किस तरीके से सुधार ला सकते हैं। आइए थोड़ा और इस बारे में और थोड़ा और जानकारी लेते हैं।
1: कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की गली सड़ी खाद डालते हैं तो क्योंकि इससे जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट यानी कि हमारा जीवांश पदार्थ जो मिट्टी के अंदर बढ़ जाता है तो वो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी भुरभुरी होने के कारण जो है मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है और पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, इसके साथ साथ हमारे जो जीवाणु है वो भी एक्टिव हो जाते हैं मिट्टी के अंदर। जैसे हम कुछ भी खा ले अपने पेट के अंदर जो है अच्छा भोजन, लेकिन यदि हमारा पेट का जो है माइक्रोबायोम काम नहीं कर रहा है तो हमारा जो है खाद्य पदार्थ खाया हुआ वेस्ट चला जाता है। इसी तरह मिट्टी के अंदर जो है जीवाणुओं का एक्टिव होना बहुत जरूरी है और जो हम जैविक खेती करते हैं उसमें जो है मिट्टी के अंदर जो भी जीवाणु होते हैं, चाहे हमारे बैक्टीरिया है या फंगस है या हमारे और दूसरे जैसे दूसरे जो भी मित्र कीट है, वो काफी एक्टिव हो जाते हैं और वो जो है इसको डिकम्पोज भी करते हैं। जो हमारे ऑर्गेनिक सोर्सेज न्यूट्रिएंट के होते हैं, चाहे हरी खाद डालें चाहे गोबर की खाद डालें, चाहे हम जो है कोई इस तरीके से और भी हरी खाद भी 2-3 तरीके की होती है, जैसे मिट्टी के अंदर उगा के या मिट्टी के अंदर मिलाते हैं खेत उसी खेत के अंदर, लेकिन कुछ जो है हम हमारे मैंड पे या बंड पे उगाते हैं दूसिनिया वगैरह, तो उसको जो है उसकी पत्तियों को टहनियों को काट कर ला के मिट्टी के अंदर मिलाते हैं, उसको जो हम एक्सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग कहते हैं। तो इस तरीके से जो है मिट्टी की जो ओवरऑल सोयल की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। तो हम मैं ये कह सकता हूँ हमारे परीक्षण के आधार पर जो पिछले हम करीब 15-16 साल से जो है ऑर्गेनिक की खेती कर रहे हैं पूसा संस्थान में बासमती धान गेहूं के अंदर, तो मिट्टी की जो है भौतिक संरचना में और इसके साथ साथ जो हमारे रासायनिक गुण है उन गुण धर्म है मिट्टी के उनमें भी सुधार हुआ है और साथ साथ जो है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज उनमें भी सुधार हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट जो है पहले 0.5 के आसपास था, जो 0.9 और 1% के आसपास ऑर्गेनिक के अंदर आ गया है और जो हमारा जीवांश पदार्थ है यही जो है सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट का रिसोर्स माना जाता है मिट्टी के अंदर। तो इस तरीके से यदि खेती करते हैं किसान भाई तो उसमें 2-3 फायदे और भी हो सकते हैं, पानी कम देने की जरूरत पड़ती है।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
1: और जैविक खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता घटती चली जा रही है, पहला फायदा तो ये है मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है। दूसरा फायदा ये है कि जो भी हम उत्पाद लेते हैं खेती करके जैविक विधि से तो वो उत्पाद जो है उसमें किसी भी तरीके का जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं, पशुओं के स्वास्थ्य को खराब करते हैं, कोई भी ऐसा केमिकल का रेजिड्यू नहीं रहता है। और तीसरी बात यह है वातावरण जो हमारा शुद्ध होता है वातावरण में, क्योंकि जब हम केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो उससे जो है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन होता है या हमारा जो है अमोनिया गैस बहुत रिलीज होती है, क्योंकि एकदम फर्टिलाइजर डाला हमने और हाई टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी भी है और मिट्टी भी इतनी सही नहीं है तो अमोनिया गैस बनकर उड़ जाती है, वो भी जो है हमारा ग्रीन हाउस गैस में एक तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। और तीसरी बात यह है कि हमारा जो वातावरण के साथ साथ सबसे बड़ा आज का जो सवाल है किसानों की आमदनी बढ़ाना, तो आमदनी बढ़ाने के लिए चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा खर्चा शुरू में तो ज्यादा आता है, लेकिन बाद में जब हम 3-4 साल के बाद में करना शुरू करते हैं फिर खर्चा इतना ज्यादा नहीं आता है। तो उस तरीके से जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालने से मिट्टी में जो डालते हैं उससे हमारा उत्पादन लागत बढ़ जाती है और जो हमारा रिटर्न मिलता है वो कम मिलता है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो है डिमांड मार्केट में बढ़ रही है और इसका जो है प्रीमियम प्राइस भी मिलता है, क्योंकि यदि हम सामान्य विधि से कोई भी क्रॉप को उगाते हैं उसका मार्केट में उत्पाद लेकर जाते हैं तो उसका उतनी कीमत नहीं मिलती है जितनी जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मिलती है। और विशेषकर मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो हमारा नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो होता है वो इसमें ही ऑर्गेनिक के अंदर ज्यादा आता है, अर्थात यदि हम 1 रुपया लगाते हैं तो उसमें करीब 2-2.5 रुपया मिल जाता है, जबकि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में इतना नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से किसानों की आय भी बढ़ती है, मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और पर्यावरण भी अच्छा होता है, शुद्ध पर्यावरण रहता है। तो ये सारे फायदे हैं मिट्टी की।
3: डॉक्टर शिव, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कृषि लागत की तुलना की जाए तो रासायनिक खेती की तुलना में जैविक खेती में कितनी लागत आती है?
1: हाँ देखिए, जैविक खेती में लागत इससे शुरू में थोड़ी यूँ ज्यादा आती है, क्योंकि हम ज्यादा जो है FIM डालते हैं, जो गोबर की गली छड़ी खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, वो थोड़ी ज्यादा डालने की जरूरत पड़ती है शुरू में। बाद में थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि बाद में हम क्रॉप रेजिड्यू भी रिसाइकिल करते हैं और फिर इंटरक्रॉपिंग भी अपनाते हैं, जो सह फसली खेती है उसको भी करते हैं, और उसमें ऐसा भी हम प्रोविजन करते हैं कि जो हरी खाद की फसलें हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया जाए और कोई भी हम रेजिड्यू बाहर नहीं लेकर जाते, वहीं रिसाइकिल करते हैं अपने फार्म पे। तो इस तरीके से जो है शुरू में थोड़ी 20 से करीब 25% जो है उत्पादन लागत बढ़ जाती है, लेकिन आगे आने वाले समय में 4-5 साल के बाद में जो है उत्पादन लागत इतनी ज्यादा नहीं रहती, बल्कि उत्पादन लागत घट जाती है। और उसका कारण यही है कि हम हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं और जो कोई भी क्रॉप रेजिड्यू है उसको हम बाहर नहीं लेकर जाते, वहीं पे उसको रिसाइकिल करते हैं। और जो पशु पालते हैं उनका भी जो है हमारा गौमूत्र होता है या हमारा गोबर की खाद होती है उसका रिसाइकिल करते हैं। और हमारी आत्मनिर्भरता जो है वो हमारे जो रिसोर्सेज है उस पर ज्यादा बढ़ती है, न कि हम बाहर से ला के फर्टिलाइजर डालें या इंसेक्टिसाइड डालें या पेस्टिसाइड डालें। और दूसरे हम बीज भी जो है ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट करते हैं अपने घर पे ही उगाते हैं या किसान उगाते हैं उसी का इस्तेमाल करते हैं, हम बाजार से बार बार जो है बीज को लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से शुरू में थोड़ी लागत 20 से 25% ज्यादा आती है, लेकिन 3-4 साल के बाद में 5 साल के बाद में लागत में कोई ज्यादा वो नहीं होता, लेकिन बाद में फिर जो हमारा उत्पाद का कीमत मिलती है बाजार के अंदर वो बहुत अच्छी मिलती है। और आजकल जो है जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर है, सुपर मार्केट है, और जो हमारे बड़े शहर है जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, सब देखिए आप हर एक जगह कहीं भी जाएंगे, कहीं भी डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जो अलग से ही जो जैविक उत्पाद की अलग से ही सेल बनी होती है, और जो कंज्यूमर है जो उपभोक्ता है वो कभी ये नहीं देखता कि इतनी कीमत क्यों है, वो तुरंत लेकर चल देता है, क्योंकि उसको ये एश्योरेंस है कि इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का अवशेष नहीं बचा हुआ है या है नहीं।
3: आजकल सेहत को लेकर जागरूक होने लगे हैं जी, और ऐसे में अगर अच्छी चीज उन्हें कुछ ज्यादा कीमत पर भी मिल रही है तो वो गुरेज नहीं करते हैं लेने में, इसलिए जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी मांग काफी बढ़ने लग गई है।
0: सुबह है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम काफी समय से रसायनों का प्रयोग हमारी भूमि में करते आ रहे हैं और अब एकदम से उसको बदल कर हम जैविक कृषि की ओर अगर हम रुख करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से पोषक तत्व जो हमारी मिट्टी के लिए ज़रूरी होंगे, जैविक खेती के अनुसार कौन कौन से पोषक तत्व हमें उनको देना चाहिए, आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
2: हाँ देखिए, पोषक तत्व प्रबंधन पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो 17 पोषक तत्व हैं और जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर जो हमको द्वितीय पोषक तत्व कहते हैं और कुछ हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिसमें जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, आयरन है। तो इनको प्रबंधन करने के लिए जैविक खेती के अंदर सबसे अच्छा स्रोत जो है हम मानते हैं वो गोबर की गली सड़ी खाद है, वर्मी कम्पोस्ट है, बायो फर्टिलाइजर्स है, क्रॉप का जो शेष बचा हुआ है उसको हम रिसाइकिल करके खेत के अंदर ही या तो हम जो है उसको मिट्टी के अंदर मिला भी सकते हैं और साथ साथ जो है कुछ हम ऐसे फंजाई या बैक्टीरिया डालें जिससे उसका डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाए तो उससे पोषक तत्व का उपलब्धि हो जाती है। और इसके साथ साथ जो हम ये बताते हैं ऑर्गेनिक खेती के अंदर, जैविक खेती के अंदर, कि हम क्रॉप रोटेशन जरूर अपनाएं।
1: किसान साथियों, अभी आपने पोषक प्रबंधन को जाना, अब लेते हैं हम छोटा सा विराम यहाँ पर और इस विराम के बाद हम जानेंगे फसल चक्र से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ, झाबुआ की आवाज़।

0: ಸಾಮುದಾಯಿಕ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೇಡಿಯೋ ಟಾಂಡ್ಯಾ ಭೀಲ್ 90.8 FM. ಆಪ್ಡು ರೇಡಿಯೋ ಆಪ್ಡಿ ಬಾತೇ.
1: ದೇಖಿಯೇ, ಫಸಲ್ ಚಕ್ರ ಕಿ ಬಹುತ್ ಬಡಿ ಅಹಮಿಯತ್ ಹೈ ಜೈವಿಕ ಖೇತೀ ಮೇ. क्योंकि हम इस तरीके से जो है फसलों को उगाते हैं हेर फेर करके, ताकि हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बनी रहे और हमको जो है उससे जो आमदनी भी होती रहे. तो इस तरीके से अपनाए हम, जैसे कि सपोज हम उदाहरण के लिए जो है दाल की फसल कर रहे हैं, तो दाल की फसल का करना बहुत जरूरी है जैविक खेती के अंदर. उसके बाद हम तिलन ले सकते हैं, उसके बाद हम सब्जी ले सकते हैं. तो इस तरीके से फसल चक्र को अपनाएं ताकि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बनी रहे. और यदि हम फसल चक्र आते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं और साथ साथ जो हमारे खरपतवार आते हैं उनकी भी जो है कमी हो जाती है. तो फसल चक्र का जो है जैविक खेती में बहुत बड़ा महत्व है. मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जैविक खेती में, जहां भी आप जैविक खेती कर रहे हैं, वहां पे इस तरीके का फसल चक्र अपनाएं जहां पे जो है हमको दो दाल वाली फसलों को जरूर रखना पड़े. जैसे कि हमारी मूंग बीन है, उड़द बीन है, काउपी है, या इसके साथ साथ जो हमारा चना है, मटर है, मसूर है, अरहर है, ऐसी फसलों को जो है आप अपने जैविक खेती के फसल चक्र में जरूर रखें. तो इसके साथ साथ आप कुछ क्षेत्र में सीरियल भी उगा सकते हैं, धान गेहूं, इस तरीके का फसल चक्र अपना सकते हैं उसके साथ साथ. लेकिन हरी खाद भी आप दो साल के बाद में, तीन साल के बाद में, जैसे ढेंचे की है या हमारी जो सनई की है, इस तरीके की जरूर रखें. और साथ साथ जो हमारा और भी क्रॉप रेजिड्यू होता है तो उसको जो है कहीं बाहर ना लेके जाएं, मिट्टी के अंदर ही मिलाएं.

0: तो फसल चक्र का ये सबसे बड़ा फायदा जो है मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना, और हमको जो है जो हमारे अपने कंजम्पशन के लिए तो है ही है लेकिन आमदनी अच्छी दीवी दे, तो इस तरीके से फसल चक्र को अपनाना चाहिए और मार्केट को पहले देख लें नजदीक कि किस फसल की जो है डिमांड ज्यादा है, कौन सी सब्जी की आपके जहां फसल जैविक खेती करना चाहते हैं, तो इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा अच्छा फायदा होगा। और मैं समझता हूं कि बहुत से किसान जो है फसल चक्र को ध्यान में रख के ही।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने अभी सुना किस तरीके से फसल चक्र का होना बहुत जरूरी है, किस तरीके से ये हमारे लिए फायदेमंद है, हमारी कृषि भूमि के लिए फायदेमंद है और किस तरीके से हम आने वाली फसलों में इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, चर्चा को हम जारी रखेंगे, उससे पहले हम सुनते हैं एक सुंदर से भीली गीत को।

किसान साथियों, खेती किसानी कार्यक्रम में आप लोगों ने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, किस तरीके से हम जैविक खेती कर अनेकों लाभ कमा सकते हैं, साथ ही फसल चक्र के बारे में भी हमने सुना, और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को अपने इस प्रोग्राम के थ्रू आपने जाना है। आइए सुनते हैं एक और प्यारे से भिली गीत को।

0: किसान साथियों, अभी आपने सुना एक सुंदर से भीली गीत को। अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त पर। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ी हैं ममता जी गांधीधाम से, और उनके साथ हैं प्रीतन जी बड़ौदा से और दीपक बड़ौदा से। ये तीनों क्लासमेट्स हैं, जीवन साधना स्कूल में साथ पढ़ते थे, और आइए स्वागत करते हैं तीनों का।
1: थैंक यू।
2: थैंक यू।
0: तो ममता जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, आपका परिचय दीजिए और आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं?
3: मेरा नाम ममता रानी एस चक्रवर्ती है। मैं दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में जॉब करती थी। 30 अप्रैल 2025 को मैं रिटायर हुई और मैं गांधीधाम कच्छ में रहती हूँ।
0: तो दोस्तों, आपने सुन लिया, गांधीधाम कच्छ में रहती हैं ममता जी। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: मेरा दूसरा सवाल आपसे, ममता जी, स्कूल टाइम के दौरान आपका सबसे सुनहरा पल, खुशी का पल कह सकते हैं, वो कौन सा था?
1: वैसे तो स्कूल में हर पल ही खुशी का था, लेकिन हाँ, मेरा एक दोस्त रितिन जो स्कूल के पीछे ही रहता था, स्कूल से छुट्टी होती थी हम वहीं पे जाते थे, उनकी मम्मी हमको प्रसाद फ्रूट खिलाती थी और वहाँ पे एक बरगद का पेड़ था, वहाँ पे आस पास हम लोग पकड़ पड़ी खेलते थे।
0: ओह नाइस, प्रीतम जी कुछ ऐड ऑन करेंगे?
2: हाँ, वो समय बहुत बढ़िया था और हम लोग सब इतने एंजॉय करते थे और साथ में पूरी ग्रुप रहती थी, इसके लिए और एंजॉय होता था। स्कूल छूटने के बाद भी घर पे भी सब लोग इकट्ठे होते थे, तो वो एक अलग ही समय था हमारे लिए।
0: जी दीपक जी,
3: वो तो एकदम अनफॉरगेटेबल बोलते ना टाइम था, और ऐसा होता था स्कूल जरा जल्दी छूटे तो प्रीतम के घर पे जाके मस्ती करे और बाद में घर जाए।
0: तो दोस्तों, सुना आपने, तीनों दोस्त लोग कितने मिलजुल के एंजॉय करते थे लाइफ को, और स्कूल कंपाउंड, स्कूल के बिल्कुल पीछे प्रीतम जी का घर था, वहां पर इकट्ठे होके लोग खेलते थे, मजेदार पल रहा होगा डेफिनेटली। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक खूबसूरत सा नगमा।

0: ममता जी, आपके सबसे फेवरेट शिक्षक वो कौन थे और क्यों?
1: वैसे तो सब टीचर्स ही मेरे फेवरेट थे, बट उसमें से शारदा मैडम मुझे ज्यादा पसंद थी। वो SST पढ़ाती थी और वो बहुत अच्छे गाने गाती थी। गानों का तो मुझे वैसे ही शौक है।
0: तो ले आइए उनको आज के कलाकार प्रोग्राम में हमारे यहाँ।
1: वो शायद US में
0: है। नहीं, US में भी हमारा तो प्रोग्राम सभी जगह जाता है ना, तो कोई इशू नहीं है।
1: कोशिश करूंगी।
0: जरूर से। कोई कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं तो बताइए, प्रीतन जी, दीपक जी।
2: हमारे स्कूलिंग में कैसा था कि दो तीन सर ऐसे थे कि एक पटेल सर थे जो हमारे गुजराती सिखाते थे
0: जी,
2: और जिसने गलती से वो आके क्या करते, पहले एक फुटपट्टी दे दो बोलेगा, किसी को भी एक स्केल देने को बोलेगा, यानी जो गलत आंसर दिया उसको स्केल से मार पड़े। लेकिन सबसे तकलीफ की बात क्या होती, जिसने स्केल दिया उसी को आखिर में मार तो पड़ता था स्केल लौटाने के पहले।
0: और ये स्केल के मार तो मैं भी काफी खाया हुआ हूँ, तो उसका दर्द काफी रहता है। वो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ही।
3: सबको मार का प्रसाद मिला है।
0: सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगला एक खूबसूरत सा नगमा।

हमसे न छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे न छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: क्या है।
1: ममता जी, फर्ज करो कि आपको कोई एक जीन मिल जाए और तीन इच्छाएं आपको पूरी करने के लिए कहेंगे, तो आप क्या, कौन से इच्छाएं आप पूरा करना चाहोगी?
2: सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं हूँ इंक्लूडिंग मी, तो सबको अच्छी सेहत दे। दूसरी इच्छा मेरी ये होगी कि मुझे इतना धन दौलत दे ताकि जरूरतमंद को मैं मदद कर सकूं। और तीसरा है, मेरे करीबी लोग, रिश्तेदार, दोस्त जो भी है, उनके लिए मैं अच्छी दुआ मांगू, उनकी सब इच्छाएं पूरी।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, तीन इच्छाएं आपने पूरी कर दी, बहुत अच्छी बात।
3: उसमें सभी कवर हो गए।
1: हाँ, सब कवर हो गए, सही कह रहे हैं आप।
4: मैं तो बोलूंगा ईश्वर सबको एक ही बुद्धि दे।
1: तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।

0: स्कूली शिक्षा के दौरान आपका मजेदार पल कौन सा था, जो एक बिल्कुल मजेदार, जो आपके आपको हमेशा उसके वो चीज याद आती है तो आपको हमेशा यू फील वेरी हैप्पी अबाउट इट? ममता जी,
1: मजेदार पल वो था कि जब मेरा दोस्त दीपक मजेदार जोक्स और किस्से सुनाता था ताकि पूरे क्लास का माहौल खुशनुमा हो जाता था।
2: वो आज भी ऐसा ही है।
1: हाँ, वैसा ही रहेगा और भगवान करे वैसा ही रहे।
2: हाँ, यस,
3: आप लोग की कृपा है, आप लोग के आशीर्वाद है।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आशीर्वाद बहुत जरूरी होती है।
3: तो और इतना स्नेह है।
0: तो दोस्तों, आपने सुना ये तीनों की मित्रता कितनी स्टेबल है, तो सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।

0: आप अपने स्कूल वालों को कोई भी गीत समर्पित करना चाहेंगी?
1: जरूर। वैसे तो ये दो दोस्तों का सॉन्ग है, लेकिन फिर भी मैं सबके लिए समर्पित करती हूँ।

0: हमारा।
1: वाह क्या बात है, लो गा के सुना दिया उन्होंने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
2: मैग्निफिशेंट ममता
1: यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

0: ममता जी, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए।
1: हाँ जी बोलिए।
0: आपका पसंदीदा गायक?
1: किशोर कुमार।
0: पसंदीदा रंग?
1: स्टैग्ली।
0: पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस?
1: अक्षय कुमार एंड माधुरी दीक्षित।
0: पसंदीदा पुस्तक?
1: Means I used to like comics, Laurel and Hardy, Titan.
2: कौन सा?
0: Laurel and Hardy.
1: Laurel and Hardy.
0: तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा।

0: ममता जी, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है मगर पूछना जरूरी है। अगर कोई दुश्मन आप पर एक किताब लिखना चाहे तो उसका शीर्षक क्या होगा?
1: प्यारा दुश्मन।
0: प्यारा दुश्मन, अरे वाह क्या बात है। तो ये दोनों में से कोई एक तो दुश्मन तो नहीं है ना?
1: नहीं, सब मेरे प्यारे दोस्त हैं।
2: वो तो उसने साइलेंटली बता दिया।
0: प्रीतम जी को कुछ ऐड ऑन करना है?
3: नहीं, ये शीर्षक तो उसने बहुत अच्छा सुन लिया है, प्यारा दुश्मन
0: जी।
3: लेकिन मैं वही बोलता हूँ, हम किसी से कम नहीं, वो धुन तो रहना ही चाहिए हर, चाहे वो कोई भी आए, लेकिन हम किसी से कम नहीं का फॉर्मूला रहने से वी आर ऑलवेज सेफ, हम हमेशा सेफ रहेंगे और कॉशियस रहेंगे लाइफ में।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों सुनते हैं एक खिलखिलाता हुआ गीत।
4: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
5: जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
4: नहीं।
5: थोड़ा भी नहीं?
4: नहीं।
5: झूठा भी नहीं?
4: नहीं नहीं नहीं।

0: चॉकलेट लाइम जूस आइसक्रीम टॉफियां
1: नाइस
0: आगे नहीं आता बट दैट इज माय फेवरेट।
1: ओके भाई आप दोनों को कुछ ऐड ऑन करना है इसमें? आप दोनों चुप है।
2: दीपक जी भाई अभी गांधीधाम का विजिट कर ले तो ये सब खाना पीने का मिलेगा भाई।
3: अभी वो अभी वो चॉकलेट वाला जो अभी बोला ना
2: हाँ
3: तो अभी उसमें कौन सा चॉकलेट आता है वो तू देख।
2: अच्छा तो जाना पड़ेगा भाई गांधीधाम।
3: मैं तो ऐसा सोचा कि वो हमको क्या खिलाने वाली उसकी बात बोल ये तो बोलते मुझे पसंद है यानी अपन को लेके जाने का है समझ गया प्रिंसेस।
2: हाँ अभी बॉल मैदान में आ गया भाई।
3: पर ममता बहुत खुशी है तूने ज्वाइन किया ये बहुत अच्छा बात है बहुत मजा आ गया। हम काफी टाइम से सोच के गए कि ममता ने को ऐड करो ममता को प्रोग्राम में लाओ तो कुछ प्रोग्राम में जान आएगा।
1: जी बिल्कुल
3: अभी अभी तक तो हम लोग वेंटिलेटर पे थे।
1: तो दोस्तों सुनते हैं एक खूबसूरत सा नगमा।

0: ममता जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: श्रोताओं को ये मैसेज देना चाहूंगी, अच्छा काम करो, सबको मदद करो, खुश रहो, दुआएं लो और दुआएं दो, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो।
0: बिल्कुल। और क्लोजिंग स्टेटमेंट्स में आप दोनों कुछ ऐड करना चाहेंगे?
2: मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा हम अपने लिए चाहते हो आपके लिए चाहो।
0: जी प्रीतम जी।
3: और आखिर में कर भला सो भला, आप अच्छा भला करोगे तो रिटर्न भी वही आएगा आपके पास।

0: तो आप तीनों हमारे प्रोग्राम में आए। ममता जी, ये प्रोग्राम आपका था और आपने आपने दोनों फ्रेंड्स को इनवाइट किया ये प्रोग्राम में, और बड़ा मज़ा आया आपसे बात करते हुए, आप तीनों से बात करते हुए बड़ा मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अवर प्रोग्राम, और हमारे इस प्रोग्राम को आप ज़रूर प्रमोट करिए अपने फ्रेंड सर्कल में और रिलेटिव्स में। इसके अलावा हमारे पास दूसरा एक प्रोग्राम है जो आज के कलाकार चल रहा है, जिसमें हम नए सिंगर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर रहेगा हमारे रेडियो चैनल के लिए।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू।
2: थैंक यू
1: नितिन जी। थैंक यू।
0: थैंक यू
2: फॉर इनवाइटिंग मी।
0: थैंक यू। थैंक यू।
1: खूब खूब आभार।

दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

0: आइए दोस्तों, एक और बिल्कुल अनप्लग्ड सा आज के कलाकार का प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं आपके पास। और आज जो मेरे दोस्त टैलेंट प्रतिभा आप सब लोगों के सामने जो मौजूद है वो हैं अर्पित साहू भाई। हम उन्हीं से बात करेंगे। अर्पित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो चलिए, हमारे सारे सुनने वालों को, हमारे सारे श्रोताओं को थोड़ा बताइए ना, भला आप कहाँ हैं, क्या करते हैं, कौन हैं आप?
1: बिल्कुल समीर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड फॉर ऑल योर लिसनर्स अ बिग गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आई एम बेसिकली फ्रॉम बैंगलोर। अच्छा, इज इट ओके इफ आई कीप इट इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज वाइज?
0: मेरी को अर्पित भाई, आप मतलब जैसे आपने बताया था कि अभी आप एमपी से हो, तो हिंदी में ज्यादा मतलब आप समझो ना, 80% हिंदी 20% इंग्लिश चलेगा, मिक्स कर सकते हैं।
1: ओके, ठीक है ठीक है,
0: कोई प्रॉब्लम नहीं।
1: ओके, सो नमस्ते, नमस्कार एवरीवन वंस अगेन एंड थैंक यू मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। एंड अबाउट मी, अपने बारे में कुछ बताऊं तो मेरा नाम अर्पित साहू है। मैं एंटिटी ग्लोबल नेटवर्क्स जो कि एक टेलीकॉम कंपनी है वहां पे काम करता हूं, किंग देयर।
0: ओके,
1: लेकिन एज अ हॉबी आई एम अ पैशनेट म्यूजिशियन, आई लाइक टू सिंग, मुझे बहुत पसंद है गाना गाना। ऑल्सो आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स, ऑल्सो आई लाइक लोगों से, बच्चों से इंटरेक्ट कर। डेली रूटीन आई टेक सम योगा क्लासेस फॉर द किड्स फैमिली, जस्ट टू हैव फन, एंगेज विद देम, हैव सम पॉजिटिव वाइब्स ड्यूरिंग द डे। सो दैट्स ऑल अबाउट मी। आई एम अ फन लविंग पर्सन, एंजॉयज एवरी डे एंड मेक श्योर द स्टार्ट एंड द एंड यू डोंट रिग्रेट, वंस यू हैव एंड ऑफ द डे यू डोंट रिग्रेट फॉर द डे। सो दैट्स ऑल अबाउट मी।
0: दैट इज सो क्यूट, बड़ी खूबसूरत बात है। देखो दोस्तों, इतने प्यार से अर्पित जी ने बताया है और हम सभी को ये बात मालूम है, लेकिन कई बार ना हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में, ज्यादा स्मार्ट बन जाते हैं ना। अब जैसे अर्पित जी ने बताया तो आप लोगों को ये लगेगा कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार, जिंदगी को मस्त तरीके से जीना है वगैरह वगैरह, ये बातें तो आपको पता ही है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछना चाहूंगा, चाहे किसी भी भगवान की आप पूजा करते हो, मंत्र भी तो 20-25-100-200 बार पढ़े जाते हैं तब याद होते हैं ना, कोई भी आयत आयत आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो उसके स्क्रिप्चर्स आप पढ़ते हो बार बार बार बार तब याद होते हैं ना। तो अगर अर्पित जी ये कह रहे हैं एंड ऑफ द डे यू शुड नॉट रिग्रेट अबाउट एनीथिंग, मस्त रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, तो ये भी तो उसी मंत्र की तरह हम दोहरा ही तो रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो अर्पित जी ने कहा है तो ये बेहतर है हम इस मंत्र को एक बार और पढ़ लें, याद हो जाएगा तो मजा आएगा। चलो अर्पित भाई, प्रोग्राम को शुरू करते हैं, तो आप मुझे बताओ कौन सा पहला सॉन्ग और दूसरा सॉन्ग आप हमारे दोस्तों के लिए तैयार करके लाए हो।
1: बिल्कुल, सो जैसा माहौल है उसी माहौल के हिसाब से आई थिंक लेट्स सिंग, आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, दीवाना मैं चला।
0: ओके, किसने गाया, कौन सी फिल्म, थोड़ा सा बताइए ना।
1: सो दीवाना मैं चला, इट्स पिक्चराइज्ड, I need to recall myself, but it's picturized on Salman Khan, where he is fighting for his love.
0: Okay.
1: I think yes, the movie is it's a beautiful movie with Salman Khan and Kajol.
0: Okay.
1: That and it is sung by Udit Narayan.
0: Oh, all right.
1: It's a beautiful song where he's finding his love, where he's following her to reach her.
0: क्या बात है?
1: She is trying to go there.
0: तो बस एक लाइन जरा गुनगुना दीजिए.
1: Sure.

0: ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल अमेजिंगली ब्यूटिफुल। और दूसरा कौन सा गीत हम आपका ही हमारे लिए प्ले करें?
1: So I would like to ask everyone, आपका हाल कैसा है जनाब का? That's one of the beautiful songs. I love hearing that song. It's a beautiful song by Kishore Kumar, sung beautifully. इसकी हरकतें, गाने की जो हरकतें हैं, the interaction between the Kishore Kumar and the female actress is, I think, Madhubala.
0: Madhubala,
1: amazing.
0: Correct.
1: Yes.
0: It's oh amazing. My God, she was so beautiful. अमेजिंग। आज भी तो दिल हिल जाता है यार बॉस उसके बारे में सोच के।

0: लेकिन ये हाल कैसा है जनाब? तो ये तो फीमेल सिंगर ने गाया है ना सर? किसने गाया है?
1: इट्स अ डुएट।
0: अच्छा, इट्स अ डुएट।
1: यस,
0: ओकी डोकी, इट्स अ डुएट। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, तो ये लीजिए ये दोनों प्यारे से गीत जो हमारे लिए अर्पित भाई ने रिकॉर्ड किए हैं, उनको सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत ही सुंदर गायकी, बहुत ही बढ़िया। अर्पित भाई चलिए अपने बारे में थोड़ा और बताइए। वैसे तो आपने काफी कुछ अपने इंट्रोडक्शन में बता ही दिया कि आप बच्चों के लिए योगा भी करते हैं, आप आउटडोर स्पोर्ट्स भी करते हैं। आउटडोर स्पोर्ट्स में कौन सा खेल रहे थे आप?
1: सो मेरा डेली रूटीन इज लाइक आई गो फॉर अ योगा क्लास फॉर द
0: योगा
1: किड्स,
0: क्लास।
1: यस, एंड एज ऑफ नाउ इट्स स्टॉप, बट आई जनरली लाइक टू प्ले बैडमिंटन ऑन अ रेगुलर बेसिस। अ वेरी गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वी हैव, हम लोग मिलके बैडमिंटन खेलते हैं। And yeah, then the daily normal life. Actually, in sports, I played almost all the sports. So I played hockey, I played football, I played cricket, I played lawn tennis, I played horse riding. I did horse riding, even water sports like windsurfing, kayaking and all that. I've done a lot of sports actually. So I love doing any kind of sports, any outdoor, indoor sports. I always love to do so.
0: Beautiful, amazing. So मैं पूछना दरअसल ये चाह रहा था भाई कि आपको थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए, ठीक है? मैं मानता हूँ सिंगिंग आपका maybe, I don't know, you tell me, first love होगा, passionate, passion के नाम पर। उसके बाद स्पोर्ट्स आपके मुंह से सुनाई ही दे रहा है कि कयाकिंग और विंडसर्फिंग, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जॉटिक स्पोर्ट्स जिनका आपने नाम लिया है, बहुत खूब। और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कोई ऐसी चीज अर्पित भाई जो आप कलेक्ट करना पसंद करते हो, जो आपके पास खूब सारी हो? फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। लाइक बहुत सारे लोग घड़ियां इकट्ठे करते हैं, मैं जो हूं मुझे जूते इकट्ठे करने का बड़ा शौक है, कुछ ऐसा।
1: या सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, बट यस आई लाइक टू कलेक्ट स्माइल्स। बहुत अच्छा लगता है कि इफ आई एम डूइंग एनीथिंग फॉर वेयर एवरीवन लुकिंग एट मी और इंटरेक्टिंग विद मी जस्ट गिव्स अ स्माइल, वेदर इट इज म्यूजिक, वेदर इट इज एनी काइंड ऑफ अ बेसिक, इवन सोशल सर्विस इट इज, और एनीथिंग, इवन इफ आई एम टॉकिंग टू समवन, if it gives me a smile, that's the best thing I want back for him. So I really like, if you say really about from the perspective as you made, if I really want to collect, I really want to collect the smiles from everyone.
0: Yeah,
1: that's about me.
0: Dosto, must bahut hi इंटेलिजेंट आंसर है ये। मतलब जैसे वो आप लोग ने बीरबल, अकबर बीरबल की कहानियां सुनी हुई होंगी, है ना? तो अर्पित भाई ने कुछ उसी तरीके का जवाब दिया है, घुमा के बड़े प्यारे ढंग से। मतलब जीत तो वही गए। अब यूं तो उसको कुछ कलेक्ट करने का शौक नहीं था, लेकिन आउट ऑफ द इमीडिएटली, मतलब एट द स्पर ऑफ द मोमेंट जो कहते हैं ना, थिंकिंग ऑन द फीट, उन्होंने फटाक से सोच के कि आई कलेक्ट स्माइल्स। आय हाय हाय हाय, क्या कह दिया, वाह वाह वाह, मजा आ गया बॉस। So, चलो हमें अगले गीत बताइए जो हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
1: श्योर, सो फॉर द ब्यूटिफुल इवनिंग लेट्स सिंग अ सॉन्ग, ये शाम मस्तानी।
0: ओहो,
1: अगेन किशोर कुमार का सॉन्ग विच इज वेरी फेमस, वेरी फॉर द मूवी आराधना आई गेस, जहां ही जहां वो ट्रेन पे, ट्रेन के ट्रैक पे द फीमेल एक्ट्रेस इज गोइंग एंड वो उनके लिए गाना गा रहे हैं।
0: नहीं नहीं, ये वाला
1: राजेश खन्ना जी के ऊपर डिस्प्ले,
0: ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। तो नहीं नहीं, ये ट्रैक पे नहीं है बॉस, ये तो वो लोग पिकनिक मना रहे हैं सब लोग, और राजेश खन्ना जी खड़े हैं आशा पारिक पे लाइन मार रहे हैं, कुछ ऐसा चल रहा था ना। उनको इंप्रेस करने में लगे पड़े थे।
1: आई एंजॉय सॉन्ग्स, आई थिंक दीज आर ऑल सम ऑफ द अर्ली ओल्ड मूवीज,
0: कूल,
1: नॉट सीन मच, बट आई मे बी आई गॉट कंफ्यूज्ड विद दैट,
0: डोंट वरी अबाउट
1: इट, रियली द ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग।
0: दूसरा कौन सा?
1: एंड दूसरा मैं गाना चाहूंगा, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं।
0: ओके ओके, ये तो किसका, अभिजीत का है? नहीं,
1: अभिजीत का सॉन्ग है, यस, इट्स एन अभिजीत, अभिजीत ने गाया है सॉन्ग फॉर शाहरुख खान एंड जूही चावला इन द मूवी।
0: तो जरा सा बस गुनगुना के बोल दीजिए यार अर्पित भाई, जल्दी से।
1: श्योर, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरजू जगाऊं अगर तुम कहो।
0: वाओ, ब्यूटीफुल। चलो दोस्तों, हो जाए फिर ये दो प्यारे प्यारे से गीत सुनते हैं और फिर अर्पित जी के पास वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर, अमेजिंगली ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत मजा आ रहा है यार बॉस आपसे बात करने में। चलो थोड़ा सा अपने बारे में और बताइए। आपने बताया कि आप एमपी से हैं, राइट? तो मतलब आपका नेटिव टाउन भी एमपी में ही है क्या?
1: यस, सो आई वाज बोर्न इन भोपाल, मध्य प्रदेश।
0: भोपाल, करेक्ट।
1: भोपाल मध्य प्रदेश इज द कैपिटल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। सो born and brought up till my 12th I was there.
0: Acha.
1: My father is in the State Bank of India, so he used to travel. So we were there in Delhi for some time and then we again came back to Bhopal for most of my time for my education, and I was in Bhopal. Now once after my education completed, I got selected for National Defense Academy, so I joined Pune National Defense Academy. I served there for almost 3 years. Some unfortunate thing, because of some medical reasons, I could not continue there. So I came out, I looked for an MBA, and since my professional life, so for MBA I did in Pune, and since my professional life I was in Mumbai for almost like 10 years. And after that, for last 3 years, I'm in Bangalore now. So that's about my journey, or my professional and personal journey, what happened. But throughout the years, the music has been, I would say, always been at the corner. However, I didn't get a time to explore myself as a musician, or how I always had this feeling that I can sing well. So school mein bhi kabhi chote mote events hote the. As I said, my father is in State Bank of India, so we had an opportunity to stay in State Bank campuses, colonies. So wahan pe social activities bahut hote hain, so hamesha un social activities mein jab bhi hame mauka mila, jab bhi opportunity mili, we used to sing. So that's how it was always stayed with me. प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद इट वॉज लाइक फुल स्टॉप फॉर द म्यूजिक, फॉर द सिंगिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वॉज नॉट सिंगिंग एनीथिंग. नाउ अगेन बैक टू बैंगलोर, जब मैं बैंगलोर आया तो यहाँ पे वी गॉट अ वेरी गुड एनवायरमेंट, वेरी गुड फ्रेंड्स जिनके साथ मुझे मौका मिला कि आई कैन कंटिन्यू सिंगिंग एंड आई कैन परफॉर्म ऑन सम स्टेज. सो दैट्स वेयर दैट म्यूजिक जर्नी बेसिकली अगेन फ्लरिश्ड. सो दैट्स वॉट ऑल अबाउट
0: me, my interest. Okay, all right. लेकिन मेरी बात सुनो ना अर्पित भाई, मैं तो दरअसल भोपाल के बारे में कुछ जानना चाह रहा था यार, आप पता नहीं मुझे कहाँ ले गए. भोपाल में कोई बढ़िया सी खाने की चीज बताइए ना, मैं कुछ दिनों के बाद भोपाल जाने वाला हूँ, तो आई बीन थिंकिंग समबडी कैन सजेस्ट कुछ बढ़िया चटपटी, कोई मतलब स्ट्रीट फूड टाइप्स, कुछ बताओ ना, कुछ क्या मिलता है भोपाल में?
1: Actually, I'm the wrong person to ask, because after my professional life, it's been very long now. I have almost like 10 years I have not been to Bhopal.
0: अरे तो यार उस
1: वक्त when you talk about हाँ please बताइए बोलिए
0: भाई, जिस वक्त आप after all आपने 12th वहाँ से की है, तो वो तो बहुत ही अल्लड़ उम्र होती है, पूरे शहर में घूमते हो गए आप, कहीं पर चाट पकौड़ी, कहीं पर जलेबी, कुछ तो खाते हो गए यार, कितना बदल गया होगा.
1: करेक्ट. सो भोपाल इज भोपाल एंड अदर इंदौर जो एमपी का वो सेक्शन है, इज वेरी फेमस फॉर पोहा.
0: पोहा, ऑलराइट.
1: यस, सो पोहा इज वन ऑफ द बेस्ट डेलिकेसीज यू विल फाइंड इन ड्यूरिंग इन भोपाल एज वेल एज इन इंदौर.
0: ओके,
1: सो दैट इज माय फेवरेट टू. वी यूज्ड टू एनीवेयर वी यूज्ड टू गो आउट वी यूज्ड टू हैव दैट.
0: तो अभी आपको बेंगलोर में मिल जाता है पोहा?
1: Fortunate enough कि मेरे parents मेरे साथ हैं, तो my mother is a very good cook. She can cook poha for us, but not in Bangalore city.
0: Okay. हाँ, city में नहीं मिलता होगा. हाँ, क्या बात है. तो चलिए साहब, ये तो तय हो गया कि I have written down कि भैया भोपाल जाना है, तो पोहा तो खाना ही खाना है, 2 से 3 बार तो खाऊंगा ही खाऊंगा. Amazing. चलिए मुझे गीत बताओ बॉस, कौन सा सुनवाऊ मैं आपके दोस्तों को?
1: बिल्कुल. सो नेक्स्ट सॉन्ग मैं आपके लिए गाना चाहूंगा, रूप तेरा मस्ताना.
0: रूप तेरा
1: मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए.
0: वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल. मतलब ये भी किशोर का ही गाया हुआ आई थिंक, है ना?
1: यस, रूप तेरा मस्ताना इज आल्सो किशोर कुमार.
0: ऑलराइट सर, चलो. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग.
1: And the next song, again, I would like to go back to Abhijit.
0: Abhijit.
1: It's Suno na.
0: Sun lo na.
1: Hai. Hum safar bujhi ko chun lo na.
0: Suno na. Okay. अमेजिंग। चलो बॉस, तो आइए दोस्तों, लीजिए ना इन दोनों गानों का पहले लुत्फ उठाइए, मजे लीजिए, आंखें बंद कीजिए और डूब जाइए, तब वापस आते हैं हम लोग।
2: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना,